मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में हम समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के

0: सात परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 ग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ले अंगड़ाई देश जागा, आया नया विहान। प्रस्तुत है समूह स्वर में देश वंदना।

इसके पूर्व कि ये मिट्टी की बनी हुई काया मिट्टी में मिल जाए। आइए सदमार्ग पर चलें, अभिमान त्याग कर प्रेम और भाईचारे का संचार करें। सुनते हैं चंद्रकांत गंधर्व के स्वर में ये भजन।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए ईश्वर से विनती करते हैं, सुनते हैं ये भजन। स्वर है राजकुमारी का।

0: वंदना। अभी आप भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख और स्वर है स्वामी आत्मानंद का।
1: हर प्राणी सुख चाहता है, उसकी हर क्रिया सुख पाने के लिए ही हुआ करती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद को उपदेश देते हुए सनत कुमार कहते हैं, यदा वै सुखम लभते अथ करोति, न असुखम लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति। अर्थात जब सुख मिलता है तभी व्यक्ति क्रिया करता है। सुख न मिले तो नहीं करता, सुख मिले तभी करता है। यह जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। हम सुख प्राप्ति के लिए लौकिक क्रियाओं में लगते हैं। रोग का शमन भी हमें सुख की संवेदना पैदा करता है, पर भर्तृहरि ऐसे सुखानुभव को भ्रांति की कोटि में डालते हैं। कहते हैं, तृषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिलम स्वादु सुरभि, क्षुधार्तः संशालीन कवलयति शाकादि बलितान्, प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढ़ तर मालिंगति वधू, प्रतिकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः। अर्थात जब मनुष्य को प्यास रोग सताता है तब मीठे और सुगंधित जल के पान से वह इस रोग को दूर कर लेता है। आनंद तो उसे रोग के दूर होने के कारण आया, पर वह मानता है कि मीठा सुगंधित जल पीने से मुझे बड़ा आनंद आया। यदि बात ऐसी ही हो तो पेट जब भरा हो तब भी वैसा जल पीने से आनंद आना चाहिए, पर वह नहीं आता। इसी प्रकार क्षुधा भी एक रोग है। उसकी निवृत्ति शाकादि पदार्थों से मिश्रित चावल आदि का उपयोग करने से होती है। लोग कहते हैं कि भोजन में बड़ा आनंद आया, पर वस्तुतः आनंद तो भूख रूपी रोग के निवारण से प्राप्त हुआ। यदि किसी विशेष भोजन में आनंद होता तो पेट भरा रहने पर भी उसके भक्षण से आनंद मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता। इसी प्रकार काम का प्रदीप्त होना भी एक रोग है, और उसका शमन पत्नी संबंध के द्वारा होता है। असल में व्याधि के प्रतिकार के कारण हमें सुख मिलता है, पर मनुष्य भ्रांति से क्रियाओं में सुख मान लेता है। यदि सुख क्रियाओं से मिलता होता तो सभी अवस्थाओं में उन क्रियाओं से सुख उत्पन्न होता, पर ऐसा नहीं हुआ करता। तात्पर्य यह है कि सुख रोग के दूर होने से होता है। फ्लू या टाइफाइड के प्रकोप में पड़कर जब चंगा

0: होता हूं तो मुझे सुख होता है, तो क्या इसीलिए मैं यह प्रयत्न करूं कि मुझे फिर से फ्लू या टाइफाइड हो जाए और मैं उससे मुक्त होने की चेष्टा करूं जिससे मुझे सुख हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं यही चाहता हूं कि मैं सदा स्वस्थ बना रहूं। यह जो रोग होना और उससे मुक्त होने से सुख का अनुभव करना है, इस सुख का अंतर्भाव सदैव निरोग रहने के सुख में हो जाता है। कोई यह नहीं चाहता कि मुझे बारंबार रोग होते रहें और उन रोगों को दूर कर मैं सुख का अनुभव करता रहूं। इसी प्रकार कामना के संबंध में समझना चाहिए। हमारे मन में कामना पैदा होती है और उसकी तृप्ति कर हम सुख का अनुभव करते हैं, पर प्रश्न यह है कि क्या यह सुख हमें संतोष प्रदान करता है? इसका उत्तर हमें नहीं में मिलेगा, क्योंकि हर कामना वस्तुतः एक रोग ही तो है और उसकी पूर्ति हमारी लालसा को और भी बढ़ा देती है। यह लालसा तृष्णा को जन्म देती है। इस तृष्णा को महाभारत में प्राणांतक रोग कहा गया है। राजा ययाति अपने जीवन की अनुभूतियों के बल पर कह उठते हैं, या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर यान जीर्यति जीर्यतः योसव प्राणांतिको रोगः ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम। अर्थात दुर्मतियों के लिए जो दुस्त्यज है और शरीर के जीर्ण होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती, ऐसी जो प्राणांतक रोग तृष्णा है, उसे छोड़ने पर ही यथार्थ सुख मिलता है। तृष्णा रोग का शमन ही निष्कामता कहलाती है। मनुष्य को सच्चा और स्थायी सुख इसी निष्कामता से प्राप्त होता है, कामनाओं की पूर्ति के पीछे भागने से नहीं।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख और स्वर था स्वामी आत्मानंद का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है सुरेश वाडकर का। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया। किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का गायन सुन रहे थे। स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि समय की पीड़ा खाड़ा चुकोट।
1: दादेर भैयो वे मीरी कमाई मीरी चिला का एतेर्रा मीरी चिला राबा बेले एते मेंदा एनोड इम पुत्तर की मीरी चिला राबा राबा लाकाट में नाया मीरी गो बारा मासी बाउर रान मसाला पसलाय इने आन इमिन मीरी पसल कमाय था नुवाटीन पोकेमेन जामनले मुन्नी जानूर नेंदिल्लीन इदिन कमाय तानुब दुई मटिया चिलाड मन चंगाट ता नेंदिल रेचा मिंदा ई कमाइन रेचा एनोड उन्नत किस्म उलाय पूसा ज्वाला पूसा सदाबार अरका लोहित अरका सुपल मिर्च 101 पंत C1 फुले ज्योति फुले मुक्ता ज्वार मिर्च 283 NP 46A शंकर किस्म उलाय ARCH 236 उजाला वित्तील हिसाब ईदिन कामयुग एड़े एकड़ हिसाब ती ओकुतले पत्ती 1.5 किलोग्राम वित्तील लागू राव आरु शंकर किसमूल एरोड 500 ग्राम वित्तील कुबेर राव वी तुरान समया मीरी पासलिन कामय ती पंजिल वादेक तक कामयुग गोंचा नेलिंग ले पत्ती बादम नेलिंग तक आरु जेठा वादेक तुग मांग नेलिंग ले पत्ती पागुन नेलिंग तक उद्यूरान काम चार्ज दनाय मानतेर उदुरान ले डेढ़ नेलिंग मुंदेल वित्तिलिन पाला टिंडुक पाडोमो आरु पिट्टेल आ पालेन उदुरानाय डोलिल बनाय ताना पाला नर्सरी डोली ओग मीटर होसार चेंदु मीटर उ लाटी आरु 15 सेंटीमीटर डेंग बनाय तानाय डोली बनाय तान मुंदेल नेंदिलिन पर परा चाजी चाड़पी कात 10 ले 15 किलोग्राम आरु नेंदिलिन उपचारुग 100 ग्राम फोरेट मिलाय तानाय वित्तिलिन गार्बेंडाजिम 3 ग्रामीन ओग किलोग्राम वित्तिलिन इसाबती उपचार चाजी लाइन ती 5 सेंटीमीटर लापित इसाबती उद्यूरानाय पैर एके वित्तिलिन वितुरान पिटेल आडोलिलिन पचेनोट मुई काडरानाय ई तेती पिटकेल ती ओला मेंदा आरु जेटके पांडराव चो पांडोड पचेन गुचास काडरानाय पुड़तील ओग मिलीलीटर और मुंद लीटर नीर आरु इर्डु ग्राम मैंकोजेब चिलाड कार्बनडाइजिम ओग लीटर नीर ती गोरीकुली अलकुरानाय कात मीरीला नेगेत उबेजुग 25 ले 30 टन आधा चामरान चाड़पी कात आरु 260 किलोग्राम यूरिया और 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस आरु 100 ग्राम पोटास लागुरा चाड़पी कात फास्फोरस आरु पोटास जाम्मेनी आरु नेत्रजनिन आदो भागिन उदुरानले मुंदेल वायती मिसायतानाय बाचायतान आदो भाग नेत्रजनिन इर्डु बाटेलती पाइसी 25 ले पत्ती 30 दिनम आरु 45 ले पत्ती 50 दिने पिट्टेल नीलतान फसलती चीरानाय वाया तियार चाजदाना उड़ान वादेक चाड़पी कात्तीन नेंदिलती मिसायतानाय आरु महावा अट्टी वायती सुविधा हिसाबती डोलिल बनायतानाय नेली बनास उद्यूरानाय वित्तिल वीती चेंदुतले 6 हफ्तेत पत्तेल पोर्रा 10 ले 15 सेंटीमीटर ता हेरमो आतेक पोर्रा उद्यूरान लाइक ता हेरमो चोप उद्यूरान काम आंडेक चाजदानाय इदुग लाइन 15 ले 60 सेंटीमीटर लापी इड्रानाय आरु पोर्रेत ले पोर्रा 30 ले 45 सेंटीमीटर इड्रानाय नीर जापायताना उद्यूरान पत्तेल पेर एके नीर जापायतानाय इनातले पिट्टेल पेर मुचिसले किंडिक लाकाट नीर जापायतानाय इनातले पत्तेल नेंदिलिन इसाबती नीर जापायतानाय पंजिल वादेक दस ले बारह दिनेत वित्रांति निर्जा पायता नाय आरु जेटा वादेक हफ्ता पिछी निर्जा पायता नाय काट पे द्राना मीरी पासलिन नेगेत कामानिग इरोट मुपट काट पे दू पड़रा मेराम पोर्रेलिन रासायनिक उवाड़ती चाइतानुग उद्यूरान ले मुंदेल 1.2 लीटर पेंडा मिथालिन अड़े एकड़ता हिसाबती अलकुरानाय उपेज दादेर भाइयोवे ईता हिसाबती कामाय पोड़ इम 90 ले पत्ती 100 कुंटल पाई मीरिल आरु 15 ले पत्ती 20 कुंटल वेतरान मीरिल कामे बेटोड़तोर आरु आगेर ले आगेर पाइसेल बेले कामा कोड़तोर।

हुलहुली में अभी आप भैरम देव पार सुन रहे थे। कलाकार थे मंगलू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभाओं में प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, आज प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। प्रातः 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण में सुनिएगा दीक्षा पांडे से कहानी पाठ और होगी फिल्मी गीतों की मधुरी माँ। प्रातः 9:00 आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आपको सुनाएंगे फिल्म सरफरोश के कुछ गीत। 10:00 गुलशन में आप सुन सकेंगे मेरी पसंद के कुछ गीत। 10:30 पर गुरदुम में आप सुन सकेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगे बाबूलाल और साथी।

11 बजे कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जो आज केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। 11:30 पर रुसरुसा में सुनिएगा लोक गाथा मैनामती रानी, गायिका होंगी कचराबाई और साथी। दिन में 12 बजे आप सुन सकेंगे मोचोमाटी लोक साहित्य पत्रिका, संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। 12:30 पर कार्यक्रम होगा घर द्वार।

1:05 पर कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनर्प्रसारण सुना जा सकेगा। 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम कला आओ कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। शाम 5:10 पर होगी युवा मित्रों की युववाणी। 6:35 पर आप सुन सकेंगे महेश पांडे और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। शाम 7:00 सुनिएगा बस्तर के स्वर। 7:21 पर कार्यक्रम होगा आम चौगांव। 8:00 घलर में आप सुन सकेंगे भतरी लोकगीत, कलाकार होंगे दयो और साथी। 8:30 पर कार्यक्रम होगा पिलामन काजे गोठ हल्बी बोली में। रात्रि 9:15 पर नंजर में आप सुन सकेंगे धनेश्वर दास से बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। 9:30 पर सुन सकेंगे खेल पत्रिका हल्बी बोली में, इसमें सुनिएगा विजय कश्यप से बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। और रात्रि 10:00 होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फोन इन लोकरस।

वाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में संस्कृत और फिर हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति पञ्चदेश यात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्री मोदी यूएई देशं गमिष्यति यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं सतत विकासं प्रवर्धयितुं आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिलेंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति नीट इति आगामी राष्ट्रिय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसाईमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थि सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति उत्तरप्रदेशे विगत षट्त्रिंशत् होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् एकादशोत्तर एकशतं जनाः मृताः द्विशताधिकाः जनाः वृणिताः सन्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान् उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते शतं किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम् अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड

0: पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि आज हम बातें करने जा रहे हैं परिवार के बारे में। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में याद रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। परिवार का महत्व हम सभी जानते हैं। परिवार के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आर्थिक महत्व को समझने के लिए इस दिन विशेष का महत्व है। पहले के समय संयुक्त परिवार की परंपरा चला करती थी। परिवार का वरिष्ठ सदस्य परिवार का मुखिया होता था। हर तरह की जरूरतों को पूरा परिवार साथ मिलकर निर्वहन करता था। पर्व साथ मनाए जाते थे और हर सुख दुख साथ मिलकर बांटकर एक परिवार चलता था। किंतु धीरे धीरे ये परंपरा कम होती गई। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पारिवारिक मूल्यों को भूल चले हैं। आज परिवार की सामाजिक संरचना और मूल्य घटता जा रहा है। परिवार का एकजुट होकर रहना बेहद आवश्यक है। परिवार एकजुट रहकर संस्कार, रिवाज और सामाजिक व्यवहार की नींव रखता है। परिवार को चलाने में शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जरूरतों के साथ साथ भावनात्मक विकास को भी महत्व दिया जाना आवश्यक है। इस दिन का महत्व वैश्विक स्तर पर इसलिए भी है ताकि पारिवारिक मुद्दों को प्रोत्साहन दिया जा सके। साथ रहना, प्यार बांटना और एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही परिवार को संगठित करता है।
1: कदम देखो रम पम पम

0: आगे बढ़ने के पहले आइए सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
7: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
8: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
7: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
9: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
10: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, जीवन में मेहनत का कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। मेहनत की कमाई जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती है, और बिना मेहनत के मिली हुई चीजें जीवन में कोई महत्व नहीं रखती है। आइए आपको सुनवाते हैं कहानी पाठ दीक्षा पांडे से।
11: नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा पांडे आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रही हूँ। एक छोटा सा गांव था जिसमें अर्जुन नाम का एक व्यक्ति उस गांव में रहता था, जहां शाम को बिजली बहुत मुश्किल से आती थी और उस समय इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। अर्जुन के पिता एक किसान थे, घर में गरीबी थी लेकिन दिल में ईमानदारी थी। कोई भी उनके घर आता, बिना उन्हें 2-3 दिन रुकाए अर्जुन के पिता उन्हें जाने नहीं देते, उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखते थे। अर्जुन को बचपन से ही आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर एक अजीब सा लगने लगता था। आसमान में उड़ते हुए जहाजों को देखकर उसके मन में एक अजीब सा रोमांच होता था। वह उड़ते जहाज को देखता और छत पर बैठकर वह आसमान की ओर घंटों निहारता और यह सोचता कि क्या मैं भी उस नीली दुनिया में जा पाऊंगा। एक दिन शाम के अर्जुन अपनी माँ के साथ चाय पीते पीते अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। यह बात माँ ने सुना और कुछ देर अर्जुन को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटा सपने देखो लेकिन सपने देखने के साथ साथ मेहनत भी वैसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर माँ रसोई में खाना पकाने चली गई। अब यह बात अर्जुन के मन में घर कर गई। अर्जुन की पायलट बनने वाली बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग इस बात को सुनकर गांव के लोग अर्जुन पर हंसने लगे। वह आपस में एक दूसरे से बात कहकर कहते थे कि किसान का बेटा है, खेत ही जोतेगा। यह कहकर लोग अर्जुन का मजाक बनाया करते थे। तब अर्जुन चुप रहकर सभी के बातों को सहा करता था। पायलट बन के क्या आसमान में खेती करेगा? लेकिन इन सब बातों को अर्जुन ने कानों में भी न जाने दिया। उसने सोचा लोगों का काम ही है कहना और उस बात को वह वहीं छोड़ अपने सपनों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। अर्जुन ने अपने स्कूल की किताबों के अलावा पुरानी पत्रिकाओं से जहाजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने शुरू कर दी। उसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इसलिए वह रात को लालटेन की मदद से अपनी पढ़ाई करता था। वह दिन रात सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचता व अपनी पढ़ाई को पूरी करता था। अर्जुन के आंखों में नींद होती थी किंतु उसकी नींद उसके सपनों की चमक से ज्यादा नहीं थी। अर्जुन केवल अपने सपनों के बारे में ही सोचता था। उसे उसके सपनों के अलावा और किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। अब अर्जुन ने कक्षा 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने कक्षा 10वीं पास करने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि उसे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा। उसने इस विषय में अपने पिता से बात की और कहा, पिताजी मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। पर पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर अर्जुन के पिता ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से लेते हुए सोचा कि मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा को मैं पढ़ाऊंगा, किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा। यह सोचकर अर्जुन के पिता ने अपने खेत का एक हिस्सा बेचकर अर्जुन को पढ़ाने के लिए शहर भेजा। शहर पहुंचकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। शहर की ऊंची ऊंची इमारत, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियां, शोरगुल आदि, इन सभी का अर्जुन को आदत नहीं थी। अब शहर पहुंचकर अर्जुन ने एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा होने के कारण अर्जुन सोच में पड़ गया। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतने सारे फीस जमा कर सके, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह स्कूल गया और वहां के प्राचार्य से अपनी सारी परेशानी बताई, जिससे पहले स्कूल के प्राचार्य ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया। फिर अर्जुन के बहुत मिन्नतें करने के बाद वह उसके ईमानदारी को देखकर प्राचार्य ने उसे मौका दिया। अब अर्जुन को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, पर अब असली परीक्षा उसकी अब शुरू हुई। वह दिन में ट्रेनिंग लेता और रात में शहर के एक लाइब्रेरी में काम करता ताकि अपना खर्च निकाल सके। कभी कभी उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी वह एक टाइम ही अपना पेट भर पाता था। इस तरह कई कठिनाइयों का सामना कर अपने पढ़ाई के लिए अर्जुन ने अपना जी जान लगा दिया। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन को लाइब्रेरी जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना रहता था। अर्जुन के पास बारिश से बचने के लिए ना ही छाता था और ना ही रेनकोट था। अर्जुन आखिरकार वह भीगते हुए लाइब्रेरी पहुंचा। वह पूरी तरह भीग चुका था। अगले दिन अर्जुन का बारिश में भीगने के वजह से बहुत तेज बुखार आ गया और उसके अगले ही दिन उसकी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जिसमें इतने तेज बुखार होने के कारण भी वह अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं डाली और उसने उस विषय की पढ़ाई की व पेपर देने पहुंचा। अर्जुन के इस हालत को देखकर अर्जुन के दोस्तों ने कहा, अर्जुन छोड़ दे यार, यह सब सपने हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, सपने सच करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? व्यक्ति यही सोचता है कि हम गरीब हैं, हमारे जैसे गरीब के लिए कोई भी चीज नहीं बना है, ना ही हम जैसे के लिए कोई सपने बने हैं, क्योंकि सफलता के लिए अथवा किसी कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले मेहनत लगती है। अर्जुन ने कहा, जो हमारा लक्ष्य है उसे करने की इच्छा, फिर उसे करने का समय, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने का एक निर्धारित समय होता है। अपनी कड़ी मेहनत व दृढ़ निश्चय के कारण हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, और यदि हमारे इतने मेहनत के बाद भी यदि वह कार्य सही समय पर नहीं किया जाए तो वह व्यर्थ है। आपकी मनोदशा यह होनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। अर्जुन ने अपने दोस्त को एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैंने अभी बीज बोया है और दूसरे दिन मैंने देखा कुछ उगा ही नहीं, तो यह उचित नहीं है। आपको बारिश का इंतजार करना होगा, फिर बारिश होगा तो वह उसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अर्जुन अपने दोस्त से कहता है कि प्रयासों का सफल परिणाम समय पर ही मिलेगा। हाँ, मुझे अभी कुछ समय और लग सकता है, किंतु एक दिन मैं पायलट जरूर बनूंगा और अपनी कड़ी मेहनत से मैं यह सपना जरूर पूरा करूंगा। मेरे पिता इतने भरोसे से मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं अपना यह सपना अवश्य पूरा करूंगा। अर्जुन ने कहा कि आज मुझे जितनी परेशानी हो रही है और मैं उस परेशानी को भी अपनी मेहनत के आगे कुछ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयास व मेहनत के परिणाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। यदि आज नहीं तो निश्चित ही उसके परिणाम बाद में मिल ही जाएगा। संपत्ति होने का अर्थ सिर्फ धन व पैसा नहीं है। यदि

आपके पास बुद्धि व कड़ी मेहनत का जुनून है तो आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते। इस प्रकार अनेक कठिनाई के साथ अर्जुन अपने सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा समय लगा दिया। दिन में अपनी पढ़ाई करता व रात में लाइब्रेरी में काम करता। अर्जुन जब काम से अपने घर वापस आता तो रात में लेटे लेटे वह यह सोचता है कि मैंने जो सपने देखे हैं उसे साकार करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करना होगा। मुझे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मुझे अपने सफलता के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। यह सोच सोच कर अर्जुन की आंख लग गई और जैसे ही सुबह हुई वह अपने रोज की कार्य में लग गया। यही प्रक्रिया अर्जुन का रोज का होता। दिन में कॉलेज व रात में लाइब्रेरी में काम। अर्जुन रोज जहाजों को कैसे उड़ाया जाता है, कहाँ ब्रेक लगता है, यह सब अर्जुन बड़े गौर से देखा करता था। फिर आखिरकार एक दिन अर्जुन को पहली बार अकेले विमान उड़ाने का मौका मिला। कोच रोज उसके आँखों में उस विमान को उड़ाने का ललक व जज्बा देखकर अर्जुन को विमान उड़ाने की अनुमति मिल ही गई। लेकिन अर्जुन को पहली बार विमान अकेले उड़ाना था। उसके हाथों में कंपन था लेकिन आँखों में विश्वास था कि यह मैं कर लूंगा। उसने उस विमान को धावक मार्ग पर दौड़ाया और धीरे से उसे हवा में ले गया। आसमान में पहुंचकर उसने नीचे देखा। उसके गांव, उसके पिता, उसकी माँ की आंखों में जो उम्मीद थी वह सब याद कर अर्जुन ने लंबी सांस ली और उसने सोचा कि आज मेरी मेहनत आखिर रंग लाई। कौन कहता है कि गरीब के बच्चे सपने नहीं देख सकते। अर्जुन ने सोचा कि मेरे गांव के लोगों ने मुझ पर हंसने लगे थे। उन्हें लगा कि मैं एक किसान का पुत्र हूँ तो केवल मैं हल चलाऊंगा, किंतु आज मैंने अपनी कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया। आखिर कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उसके पास पर्याप्त धन हो या ना हो, यदि दृढ़ निश्चय व कड़ी मेहनत करे तो गरीबी मेहनत के आगे घुटने टेक ही देती है। अर्जुन आज एक मशहूर पायलट बन चुका। अर्जुन के पायलट बनने से उसके घर में सभी बहुत खुश हुए। अर्जुन के पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज अर्जुन के सम्मान में वे लोग भी शामिल हो गए जो एक समय में अर्जुन की पायलट बनने वाली बातों को सुनकर मजाक बनाया था। अर्जुन के पिता ने अर्जुन को पायलट के रूप में देखकर उसके आंखों से आंसू मानो रुकने को तैयार ही नहीं थे। अर्जुन के पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे द्वारा आधे जमीन के हिस्से बेचना व्यर्थ नहीं गया। मेरे बेटे ने जो सपना देखा था वे उसे पूरा किया। अर्जुन जब भी अपने गांव जाता और अपने छत पर बैठता था वह केवल छत पर बैठकर केवल अब हवा

0: एक जहाज नहीं देखा करता बल्कि वह उन्हें उड़ाता भी था। अर्जुन ने शब को दिखा दिया कि सपने छोटे से शुरू होते हैं पर मेहनत से बड़े बन जाते हैं, और यदि मनुष्य ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, और यदि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी।
1: अभी आप दीक्षा पांडे से कहानी पाठ सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रस्तुत है आज की मधुरिमा।

कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चलते रहें सदा, कभी भी खत्म अपना ये सफर ना हो।

होंठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, क्योंकि फिर लौट के बचपन के ये जमाने नहीं आते।

फिल्म खाकी, हम साथ साथ हैं, वांटेड और द ट्रेन के गीतों के साथ ये थी आज की मधुरिमा। और इसी के साथ आज नमस्कार जगदलपुर का सफर यहीं तक।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुंबई से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा

0: कीमत 90 रूपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रूपये 68 पैसे और डीजल 93 रूपये 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रूपये 74 पैसे और डीजल 95 रूपये 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रूपये 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रूपये 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ

0: सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गो में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw in wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
7: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
4: Brazilian Foreign Minister mauled petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each amid spike in global energy prices.

0: इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की बुनियादी जरूरत शिक्षा होती है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के अनेक राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जहां तक साक्षरता और शिक्षा की बात है, हमारे प्रदेश ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में देश के अन्य राज्यों की तरह अपना एक स्थान बनाया है। अगर अतीत की बात करें तो हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षरता और शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन आज विभिन्न प्रयासों के साथ इस रेस में हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में साक्षरता और शिक्षा की क्या स्थिति है, और इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे को। इस कार्यक्रम में प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म रायपुर में हुआ है, और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में मेरे पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर जहां जहां होता था वहां वहां हम रहे। जैसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी बस्तर में हुई, रायपुर जिले में हुई, फिर बालोद जो अब अलग जिला बन गया, पहले विभाजित दुर्ग जिला हुआ करता था, वहां पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई।
0: उसके बाद फिर उच्च शिक्षा आपकी कहाँ की रही?
1: उच्च शिक्षा भी हमारी ज्यादातर शुरुआत जो है वो रायपुर की रही, और उसके बाद फिर बालोद में ही हमारी उच्च शिक्षा हुई।
0: आपकी उच्च शिक्षा जब पूर्ण हुई तब आपने सोचा होगा कि किस क्षेत्र में जाया जाए?
1: जब मैं शासकीय महाविद्यालय बालोद में अध्ययनरत था, उस समय रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रोग्राम चलता था, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम। उसमें 10 केंद्र जो असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ा किए जाते थे, जन शिक्षण निलियम ये बनाया गया था। उस समय वहाँ पर जो भी प्रभारी प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे मेरी रुचि को देखते हुए, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC इत्यादि की रुचि को देखते हुए मुझे कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है, तो आप ये करेंगे? तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि साक्षरों को साक्षर करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो उन 10 केंद्रों के सुपरविजन का काम मुझे सबसे पहले सौंपा गया था। ये 1986 की बात है लगभग। तो पहली शुरुआत मैंने वहाँ से जब की, तो धीरे धीरे मेरे मन में ये महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को ही साक्षर किए जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
0: प्रशांत जी, जब इस कार्य की शुरुआत आपने अपने जीवन में की तो ये कितने बरस पहले की बात होगी?
1: ये लगभग 35 वर्ष पूर्व की बात है, क्योंकि 86 से 1990 के दरमियान मैं कॉलेज में ही था, और उस समय मैंने ये कार्य वहाँ पर किया। और उसी समय जब मैं कॉलेज में की पूरा करने के बाद, जब अपनी पढ़ाई मेरी समाप्त हो रही थी, उसी समय अविभाजित मध्य प्रदेश में साक्षरता आंदोलन चला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलकर ये अभियान हमारे अविभाजित दुर्ग जिले तक पहुंचा, और उस आंदोलन से मैं जुड़ गया। और पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, धीरे धीरे से मैंने राज्य स्तर और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा।
0: प्रशांत जी, जिस वक्त साक्षरता अभियान चला था उस वक्त तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, लेकिन फिर भी अगर हम अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति उस समय कैसी थी, फिर बाद में इसमें किस तरह का परिवर्तन आपने देखा?
1: पहले तो लगभग 1/4 लोग असाक्षर उस समय थे जब राज्य बना था 25 वर्ष पहले। अब तो 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर लिए हैं, और आज स्थिति आ गई कि हम अब 1/3 और उससे भी कम हमारे अब असाक्षर रह गए हैं। लगभग ये हम यदि थोड़ा सा भी यदि प्रयास करेंगे तो हम लोग 100% साक्षरता की ओर, एक निश्चित कार्य योजना जो हमारी बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 47 के पहले तक हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर लें, तो उसके पहले भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
0: अगर अभी हम पूरे देश में राज्यों की एक लिस्ट बनाते हैं तो साक्षरता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं?
1: साक्षरता की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी का जो पायदान है वो काफी नीचे, 10 से नीचे अभी आ गया है वो।
0: आपने 2003 के बाद जब यहाँ पर साक्षरता अभियान चलाया, तो उसके बाद की और आज की स्थिति में आपको जो फर्क दिखाई दे रहा है, तो उसमें अब कितना बाकी है, क्यों बाकी है, क्या कारण है कि क्या लगातार ये चल नहीं रहा है, या इसे और अधिक तेजी से चलाने की जरूरत है अभियान को?
1: ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा है, इसमें कुछ फैक्टर वो काम करते हैं। देखिए, असाक्षर कौन होता है? हमारी जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे स्कूल आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो शाला त्यागी हो जाते हैं, अपने घर में खेत में काम करने की वजह से, या परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता, वो जानवर चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए, या अन्य कामों में वो यदि व्यस्त हो जाता है, इसलिए वो स्कूल से बाहर हो जाता है। बहुत हम प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देता है, और जो पढ़ा भी होता है तो जाके आगे जाके वो भूल जाता है, और वही व्यक्ति हमारे जो है असाक्षरों के टारगेट में आ जाता है, और वो भले ही 5वीं पढ़ा हो, 8वीं पढ़ा हो, लेकिन फिर से वो असाक्षर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले ये करना होगा कि हम, एक तरह से ऐसा है कि ये जो कमरा है इसमें यदि हम नल चालू कर दें और पानी आ रहा है लगातार, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम इस कमरे से पानी को खाली करने के लिए हम एक बर्तन से पानी निकालते जा रहे हैं और बाहर हम करते जा रहे हैं। हमको यदि इसको 100% बंद करना होगा, मेरी ये मान्यता है कि साक्षरता अभियान तो चलना ही नहीं चाहिए, इसका स्वरूप बदलना चाहिए। यानी हम पहले नल को बंद कर दें, फिर हम पूरे असाक्षरों को साक्षर कर दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग फिर से असाक्षर न बने, जो हमारे स्कूल में जो लोग एडमिशन ले लिए हैं। सबसे पहले तो 100% हम एडमिट लोगों को करें, और हम यदि उनको एडमिट कर लिए हैं तो ऐसा कोई कारण न हो, स्कूल का वातावरण हम ऐसा बनाएं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाएं रोचक तरीके से, कि वो लोग स्कूल से बाहर न जाएं, और किसी भी कारण से, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हम वो परिस्थितियां निर्मित न होने दें कि वो स्कूल से बाहर जाएं, उनको इस तरह से सपोर्ट किया जाए, तब हम 100% ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और 100% साक्षर कर सकते हैं।
0: प्रशांत जी, इसमें जन जागरूकता भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आमतौर पर ये होता है कि शासन की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि गांव के सारे ही सारे बच्चे स्कूल में आए, लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित होती हैं कि उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले जो हैं अपने बच्चों को पूरी तरह से स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं होते हैं, या फिर कई बार ड्रॉप करना पड़ता है उनको। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जन जागरूकता के आजकल बहुत सारे उपाय हैं, मीडिया तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता ही है, और इसके साथ साथ हमको ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जिनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यानी जो सेवाभावी व्यक्ति हैं, जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में। गलत नहीं है कि अपने फायदे के बारे में सोचें, लेकिन यदि आप देश के बारे में सोचेंगे, दूसरों के फायदे में के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपके आपके बारे में, आपके फायदे के बारे में सोचेगा। यह दृष्टिकोण यदि हमारे मन में हो जाए तो हमको टॉप टू बॉटम, मतलब उच्च शिखर से लेकर हमारे जो वार्ड तक के, घर तक के है, वहां पर हमको ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा, नंबर एक, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके साथ साथ जितने नेतृत्वकारी लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी देनी होगी कि आपको अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है, साक्षर करना है, 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% बच्चे बाहर बिल्कुल ना जा पाएं, यदि कोई बाहर जाता है उनके लिए उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षक न केवल शिक्षकों की व्यवस्था है बल्कि वो पूरी दक्षता से, पूरी क्षमता से उनको परिणाममूलक तरीके से पढ़ाएं, अध्ययन अध्यापन करें जिनका उनका मन लगे, और रिजल्ट भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है। और कोई भी यदि स्थितियां ऐसी निर्मित होती, कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानियों को दूर करें, और सामाजिक लोगों को भी आप विश्वास में लो, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो केवल अभी अन्य कार्यों में, यदि खाली दिमाग शैतान का होता है, उनको अच्छे कामों में यदि व्यस्त कर देंगे ना, तो आपको दुर्घटना भी नहीं होंगी और उनका भी मन लगेगा। जब वातावरण बनाए जाने की जरूरत है, और इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, यदि अच्छी इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है, अभी जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है वो इसीलिए मिली है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई है, उन नीति का बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, ये बहुत जरूरी।
0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री प्रशांत कुमार पांडे, और इनसे हम विस्तार से आगे

0: और बातचीत करेंगे, तो उससे पहले प्रशांत जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: वाह वाह वाह, फिल्म और ये सब तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन गाने के बोल जरूर
0: बिल्कुल बताएं।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए,
0: बिल्कुल
1: जब
0: फिल्म
1: कोई
0: जुर्म
1: मुश्किल,
0: का गीत है।
1: हाँ मुश्किल पड़ जाए।
0: हाँ, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

0: क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मुश्किल की घड़ी तब होती है जब इंसान के जीवन में अशिक्षा का अंधकार होता है, और आप उसी अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़े हैं। प्रशांत जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, मैंने पहले महाविद्यालय में 1990 तक और उसके बाद 1990 से 2003 तक जिले में, 2003 से 2025 तक राज्य में काम किया, और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं गया तो मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो यह महसूस किया गया कि अब पूरे प्रदेश में कुछ नया किया जाए, और संभवतः जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और जो परिणाम मूलक कार्य करता हो, यानी परिणाम दे सकता हो। उनको जब ये पता चला कि 25 जो साल हुए हैं और 25 साल में हमको 25 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, उसमें से हम जिस विभाग में कार्य किया है उसमें 2 और बाकी जिलों को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा ये दायित्व होगा। उनके पीछे उद्देश्य ये है, इस जो स्वायत्त शासी जो संस्थान है उसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो लागू है उसका कैसे बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कर सकें, इसमें हम माननीय जनप्रतिनिधियों को कैसे कन्विंस कर सकें, हम इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ सकें, हम इसमें जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मीडिया का कैसे हम समावेश इसमें कर सकें, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा गुणवत्ता पर इसमें फोकस किया गया है। शिक्षा गुणवत्ता भी यदि हम बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, और उसमें ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल हमें नौकरी तक पहुंचाती हो, बल्कि ऐसी शिक्षा जो एक बेहतर इंसान बनाती हो। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से हमें जोड़ा जाना होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना कोई भी यदि शिक्षा दी जाए वह अधूरी है। उसको जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक के यह हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होंगी। नैतिकता की बातें तो छूटी गई हैं आजकल, और जो गंभीर उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करना होगा। तो शिक्षा गुणवत्ता मेन है। शिक्षा गुणवत्ता तभी हो सकती है जब बालक, पालक, शिक्षक, ये तीनों मिलकर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में डाल देते हैं और उनको शिक्षक के भरोसे छोड़ सकते हैं, शिक्षक पालक के भरोसे रहते हैं, वो तो पढ़ के आएगा ही, वो किसी अन्य कार्य में बिजी रहते थे। ये देखना होगा कि वो शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रखा जाए, ये प्रयास होना चाहिए, और घर में भी शिक्षा के लिए वातावरण हो, माता पिता हों, बाप भाई हों, और जो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो घर पे भी उसको एक वातावरण हो, ये हम प्रयास करेंगे। और दूसरा, उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, गुड पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट होगा इसमें कि कैसे पेरेंटिंग हो बचपन से लेकर उसको, और उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ा दबाव जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है, और रिजल्ट में आपने देखा होगा हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि इतने परसेंट लाना, इतने परसेंट लाना। आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखिए देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंक पाए हों, गढ़ना ज़रूरी है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे, जब तक प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देंगे तब तक कक्षा का वातावरण नहीं बदल सकता।
0: प्रशांत जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, अगर हम आपकी इस जिम्मेदारी के साथ में हमारे प्रदेश में शासन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा की अभी जो व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उसको सुधार करने के लिए आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हम अपनी इकाई का गठन करेंगे। उसमें हमको ये स्वायत्तता दी गई है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा, कि हम इसमें शासकीय और अशासकीय दोनों लोगों को इसमें शामिल कर सकें, और इनको जब हम जोड़ लेंगे, एक हमारी कमेटी गठित हो जाएगी, तो फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जिसमें नगरी निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको, और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, फिर हम गाँव गाँव में स्वयंसेवी व्यक्ति तैयार करेंगे। वो स्वयंसेवी व्यक्ति जो है वो न केवल बच्चों की शिक्षा से लेकर बड़ों की शिक्षा तक ध्यान देगा। यही न केवल यह प्रक्रिया हमारी स्कूली शिक्षा में होगी बल्कि यह प्रक्रिया हमारी उच्च शिक्षा के लिए भी रहेगी। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। पहले तो हमने केवल शिक्षा नीति के चैप्टर नंबर 21 जो प्रौढ़ शिक्षा थे उस पर काम किया था, और ये जो दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, इसमें हमको बच्चों की शिक्षा से, बाल्यावस्था की शिक्षा से, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी और बालवाटिका आपने सुना होगा, वहां से उनकी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पर हमको काम करना होगा। और केंद्र और राज्य के सारे लोग, हम रिसर्च भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल को और स्टेट को देंगे और उसके साथ सबके साथ समन्वय के साथ काम करेंगे।
0: हमने सुना है कि आपने विदेश की भी यात्राएं की हैं। विदेश की यात्राओं में क्या शिक्षा ही आपकी यात्रा का उद्देश्य रहा है, या विदेश की शिक्षा और भारत की शिक्षा को आपने नजदीक से देखा है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा है?
1: निश्चित रूप से मुझे कई बार विदेश यात्रा अल्प समय के लिए जाने का मौका मिला, लेकिन मैं ज्यादा समय के लिए जो मैं गया हूँ वो लंबे समय के लिए बोलना चाहिए, वो मैं गया हूँ थाईलैंड और जापान। पहले स्टडी टूर में मैं थाईलैंड गया और उसके बाद मैं जापान गया। जापान में मैंने महसूस किया यूनेस्को और जाइका, मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन सोसाइटी, इसके सहयोग से हमारा वहाँ जाना हुआ था। एशियाई कंट्रीज के जो लोग हैं, 11 लोग 11 देश से चयन किए गए थे। हमारे यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई थी कि हर राज्यों से पहले तो नाम का चयन हुआ था, फिर अंत में पूरे देश से एक व्यक्ति का चयन हुआ और संयोग से उस एक व्यक्ति में मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा कि शिक्षा ही वहाँ के विकास का मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा को वो लोग बहुत ज़्यादा बेसिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ की शिक्षा में मुझे महसूस किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो उस देश में महसूस किया जापान में खासतौर पर, मुझे अनुशासन बहुत देखने को मिला। सबसे ज़्यादा वो अनुशासन पर ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया वहाँ पर मैंने को देखने को मिला। जैसे हम तो कोई डेलीगेशन कहीं पर जाता है तो हम लोग उनके लिए VIP व्यवस्था करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो आगे आने, उन लोगों ने भी हमारे शहर से दूर जाने के लिए स्पेशली, जैसे यहाँ पर स्पेशल प्लेन होते हैं तो हम लोग जितने लोग थे उतने सीटर, 25 सीटर हमको एक प्लेन दी गई थी इधर वो जाने के लिए, वो हमारे लिए खड़े रहती थे हमेशा जैसे जो सुविधाएँ मिलती। लेकिन ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन में भी हम लोग को उन्होंने कराया। मेरे को बताने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ स्पेशल प्लेन या बुलेट ट्रेन और इसमें बैठा, बल्कि वो सब में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम आनंद लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्लास हमारी चलती थी, क्या सीख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं। और खाली वही नहीं, साइकिल भी चलवाते हैं हमको और पैदल भी चलवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उतरे ट्रेन से और बस तक के हमको कोई ऑटो रिक्शा या वाइक, वहाँ से पैदल चलना है आपको, यानी पैदल भी जितना आपने खाना खाया है वो आपको पचाना भी, और हेल्थ के लिए जितने कदम चलना जरूरी है उतना कदम चलना। तो अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जैसे हम लोग एक टेबल पर बैठे हैं, वहाँ गोल में अलग अलग टेबल पर, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल, हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं, टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग टेबल पर ग्रुप बैठते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, आपने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उस तरह के ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है, एक्टिविटी बेस्ड, आपको क्लासरूम लगेगा ही नहीं जब क्लास आप जाएंगे तो। और एक क्लास में एक टीचर नहीं होता, दो टीचर होता है, एक पढ़ाता है और एक ऑब्जर्व करता है। और जैसे स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पर एक दूसरा कमरा होता है, वहाँ पर उन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़े पीछे जा रहे हैं, कभी फिल्म पहले आई थी आपको याद होगा तारे जमीन, तो तारे जमीन पर में जिस तरह से टीचर ऑब्जर्व करता है उस तरह से वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं। और वो टीचर ऑब्जर्व करने के बाद उनको अलग कमरे में रखा जाता है और उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, लर्निंग उनके मटेरियल होते हैं, वो वहाँ उनके लिए उस तरीके से रखे जाते हैं। और जब वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तब उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो जो देश जो कंट्री एक एक बच्चे के लिए ध्यान देता है, और जैसे हम स्टूडियो में अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रखते हैं, वैसा ही सिस्टम वहाँ स्कूलों में है कि वहाँ आप जाइए और जूते चप्पल सब बाहर रखने का सिस्टम है। शिक्षा एक मंदिर की तरह है, ये बड़ी बात हमने देखी वहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाने का तरीका और दिखाने का तरीका, अभी तक क्या होता है, आपको हम यदि पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये अस्पताल है, ये बैंक है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये दूरदर्शन है, या हम इस तरह से बताएंगे तो वहां का सिस्टम क्या है वो उनको वहां ले जाकर दिखाते हैं, वहां है ये अंदर ले जाकर दिखाएंगे बच्चों को। यहां तो कभी कभी हम किसी किसी जगह दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन वहां तो अनिवार्य है ये सब चीजें कि पोस्ट ऑफिस है, ये बैंक है, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है ना, ये आकाशवाणी है, ये दूरदर्शन है, ये सारी चीजें ले जाके कंपलसरी दिखाने का, ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला और उसको हमने यहाँ पर आने के बाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया और उसका ही परिणाम है कि हमको जो अवार्ड मिला है, यदि छत्तीसगढ़ की द्वारा या वहाँ से हमको चयन नहीं होता तो ये उसके परिणाम भी हमने दिखाए, परिणाम भी हमने दिया कि कई लोग तो विदेश घूम के आ जाते हैं और स्टडी तक रह जाती है।
0: तो प्रशांत जी, आपने अवार्ड का जिक्र किया तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इसी क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके हिस्से में आए हैं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सभी जिले अलग अलग तरीके से परेशानियों में व्यस्त थे, उनके अकाउंट सब बंद थे और उनको एड मतलब वहाँ से अनुदान नहीं मिल रहा था, उसके बहुत सारे कारण थे। उन सब कारणों को हमने ठीक किया, ज़िलों में जा जा के दौरा किया, ज़िलों के जो कलेक्टर्स थे जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनसे सौजन्य भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनके TL की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए, अपने प्रोग्राम को हमने दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, जब एक एक को जा जा के हमने सबसे बात की पूरे उस समय जो 18 ज़िले थे जब शुरुआती दौर पर, तो उन सारे ज़िलों में जाके हमने बताया, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते गए तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर बहुत सारे, पहले सत्येन मेहता साक्षरता पुरस्कार मिलता था, उससे हम लोगों ने शुरुआत की, जो भी हम करते गए नया चीज़, हम जो भी नया नवाचारी हम कार्यक्रम करते गए जो हमने बाहर से जाके सीखा था, तो वो दूसरे राज्यों का पहले हमने दौरा किया, हम दूसरे राज्यों को देखा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, तो हमने लगा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने कलाकारों को जोड़ा, हमने यहाँ साहित्यकारों को जोड़ा, हमने यहाँ पर कुछ नवाचारी शिक्षकों को जोड़ा, इस तरह से हम लोगों को हम जोड़ते गए और हर जगह की साक्षरता की बात हम करते गए, तो एक सत्येन मेहता अवार्ड उस समय मिला, फिर आगे जाके सतत शिक्षा में अवार्ड मिला, फिर साक्षर भारत पुरस्कार को बताना चाहूँगा, 2013 में हमें हमारे जो हमारा जो यहाँ स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसको केवल सेवाभावी बहुत कम लोग थे, सीमित संसाधन में हमने इस काम को शुरू किया था, तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था साक्षर भारत का पुरस्कार, और उसके बाद 2016 में भी हमें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और ऐसे ही जिलों को ग्राम पंचायतों को मिलाकर कई जिलों को मैं यहाँ पर नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त है इसकी, तो 25 वर्ष में 25 अवार्ड, 25 से अधिक अवार्ड हमको अब तक राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दिए।
0: तो प्रशांत जी, ये हमारे लिए प्रदेशवासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को इस स्तर पर इसका आकलन किया गया। तो प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि शिक्षा को लेकर आपका जो स्वप्न है और आपके जो प्रयास हैं उन प्रयासों को सफलता मिले और हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम भी भारत के नक्शे में एक पूर्ण साक्षर, पूर्ण शिक्षित और विकसित राज्यों की श्रेणी में दिखाई दें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं।

0: भेज दीजिए अपना उत्तर 800-440-5559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीर

वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।

0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
5: ऐसा
2: झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, गाड़ी का फायर क्या?

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
7: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
6: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
7: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
8: Good morning. I am so pleased to meet a boy like you.
7: Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks, and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled.
8: "Here is my good cousin,"
7: said the crab pleasantly. And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun." Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. "They only did to me what I keep doing to the other children," he thought. "But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore."
4: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने जिस फिल्म को शामिल किया है वो एक यादगार फिल्म है, एक्शन थ्रिलर फिल्म जो कि सन 1999 में बनी थी। फिल्म का नाम है सरफरोश। इस फिल्म में आमिर खान ने एसीपी यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की भूमिका निभाकर इस भूमिका को यादगार बनाया था। यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ कमर कसकर देश की रक्षा करने पर आधारित है। फिल्म में सोनाली बेंद्रे मुख्य नायिका के रूप में नजर आई थी।
1: इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: बातें हो रही हैं फिल्म सरफरोश के बारे में। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, मुकेश ऋषि, प्रदीप रावत, अखिलेंद्र मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मकरंद देशपांडे, वल्लभ व्यास, गोविंद नामदेव, सुरेखा सीकरी इत्यादि कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मेहमान कलाकार थे, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी।

इस फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और क्रिटिक्स पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये फिल्म अवैध हथियारों की तस्करी, अंदरूनी इलाकों में भटके हुए लोगों के द्वारा आतंक फैलाने के विषय को लेकर बनाई गई थी। किस तरह देश की सीमाओं में अवैध सामानों की तस्करी होती है, कैसे हमारे आसपास रहकर भी असामाजिक लोग विवाद बढ़ाते हैं, इस विषय के साथ ये फिल्म बनी थी। फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अभिनय किया। ये न केवल एक एक्शन फिल्म थी, बल्कि इसके गीत भी यादगार हुए।

इस फिल्म के गीतों को लिखा था इसरार अंसारी, निदा फाजली, समीर और इंदिवार ने। फिल्म के गीतों में अपनी आवाजें दी थी अलका याग्निक, कुमार शानू, जगजीत सिंह, सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस फिल्म की मुख्यतः शूटिंग मुंबई और राजस्थान के जैसलमेर इलाके में हुई थी। उम्मीद करते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें और इसके गीत आपको पसंद आए होंगे।

एक ही फिल्म से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीन ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इनके खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया है कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। इनमें एक जहाज करीब 19,965 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 16 मई को कांडला पहुंचने की संभावना है जबकि दूसरा जहाज 46,427 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 18 मई को न्यू मैंगलोर पहुंच सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में भी आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वाकाथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गुलशन। इसमें आज सुनिए मेरी पसंद के कुछ गीत। पहला गीत हम सुनवा रहे हैं, फिल्म है प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का ये गीत हम सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत रचना है SH बिहारी की। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

धर्मात्मा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कंचन और मुकेश की, गीत रचना है इंदिवार की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कुदरत से। स्वर था लता मंगेशकर का, गीत रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत था आरडी वर्मन का। आइए सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म फर्ज से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुना रहे हैं, फिल्म है मासूम, स्वर है अनूप घोषाल का, शब्द गुलजार के हैं और संगीत है आर डी वर्मन का।

गुलशन में अभी आप मेरी पसंद के कुछ गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड़दुम। इसमें हम सुनवा रहे हैं हल्बी लोकगीत। कलाकार हैं बाबूलाल और साथी।

0: गुरदुम में अभी आप हल्बी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं बाबूलाल और साथी।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने सदा।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दुम में अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल और साथियों के गाए हल्पी गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे है, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपनी मुस्कान और अपनी कला से दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना लेते हैं। फिल्म जगत की एक ऐसी ही बेमिसाल अदाकारा की आज हम बात कर रहे हैं, जो न सिर्फ सुपर डांसर, बहुमुखी प्रतिभा की धनी मानी गई बल्कि दुनिया की चोटी की 100 विख्यात हस्तियों की सूची में शामिल रही, जिनकी अद्भुत नृत्य शैली ने उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। वो है बेहद खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित।

आज ही के दिन यानी 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित के पैर छोटी सी उम्र में ही थिरकने लगे थे। उनके भीतर की कला को उनकी मां ने पहचाना और मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्होंने माधुरी दीक्षित को शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण शुरू करवा दिया। जब वे 9 बरस की हुई तो उन्हें कथक में स्कॉलरशिप मिली और फिर पढ़ाई के साथ साथ वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें विज्ञापनों में काम करने का अवसर भी मिलने लगा था। हालांकि वे डॉक्टर बनना चाहती थीं, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वर्ष था 1984, जब फिल्म अबोध के लिए एक मासूम सी दिखने वाली लड़की की तलाश थी, तो उन्होंने अपनी बहन की सहेली, जो कि राशि प्रोडक्शन के एक कर्मचारी की बेटी थी, उनके सुझाव पर इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और पास होकर मात्र 18 साल की उम्र में फिल्म अबोध के जरिए उन्होंने बतौर अभिनेत्री पहली बार फिल्म जगत में कदम रखा और शुरू किया अपना फिल्मी सफर।

अबोध फिल्म के बाद कुछ और फिल्मों में माधुरी दीक्षित ने काम किया पर सफल नहीं हुई। फिर आया साल 1988 जो उनके लिए ढेर सारी सौगात लेकर आया। तीन फिल्में खतरों के खिलाड़ी, दयावान और फिल्म आई तेजाब। इनमें से फिल्म तेजाब माधुरी दीक्षित के लिए मील का पत्थर बनी। फिल्म के एक गीत ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। माधुरी दीक्षित के चेहरे के भाव और नृत्य शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और माधुरी दीक्षित को मिली एक नई पहचान।

88 से 90 के बीच उन्होंने फिल्म राम लखन वर्दी, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, त्रिदेव परिंदा, महासंग्राम, सैलाब, थानेदार, जमाई राजा, खलनायक, किशन कन्हैया और दिल आदि में काम करते हुए फिल्म जगत के कई नामचीन अभिनेताओं जैसे सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, संजय दत्त और अनिल कपूर की मुख्य अभिनेत्री बनी। अनिल कपूर के साथ उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में फिल्म दिल बेहद सफल रही, जिनमें माधुरी दीक्षित ने एक चंचल प्रेमिका का किरदार निभाकर पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया।

1991-92 में लगभग 11 फिल्मों में माधुरी दीक्षित ने अपने अभिनय का परचम लहराया। वे फिल्में थी प्यार का देवता, प्रहार, 100 डेज, साजन, प्रेम दीवाने, खेल, संगीत, धराबी और सबसे खास फिल्म थी बेटा, जिसके लिए उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और बेटा फिल्म को 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। इस फिल्म का एक गीत तो इतना लोकप्रिय हुआ कि माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल कहा जाने लगा।

माधुरी दीक्षित की सफलता केवल सुंदरता या नृत्य तक ही सीमित नहीं रही। आगे की कुछ और सफल फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और बेहद कामयाब, सशक्त और फिल्म जगत में बनी नंबर वन अभिनेत्री। उनकी अभिनीत फिल्मों में फिर आई एक बेहद सफल पारिवारिक फिल्म हम आपके हैं कौन, जिसमें उनका निशा वाला किरदार भारतीय परिवारों की पसंद बन गया। हजारों लोगों ने थिएटर जाकर कई कई बार इस फिल्म को देखा, जिनमें मशहूर पेंटर एमएम हुसैन भी शामिल हैं, जो माधुरी की खूबसूरती के बहुत बड़े प्रशंसक थे और जिन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर फिल्म गजगामिनी बनाई थी। कहते हैं कि उन्होंने भी हम आपके हैं फिल्म को लगभग 67 बार देखा। फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि उस दौर में हर घर में इसके गीत गूंजे और आज भी शादी विवाह के मौके पर इस फिल्म के गीत सुनाई पड़ते हैं। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

0: जी।
1: माधुरी दीक्षित की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हर किरदार में वे पूरी तरह से ढल जाती थी। कॉमेडी हो, रोमांस हो, पारिवारिक भावनाएं या गंभीर अभिनय, उन्होंने हर रूप में दर्शकों का दिल जीता। बाद के सालों में उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म आई दिल तो पागल है, जिसमें उनके अभिनय के साथ नृत्य ने कमाल कर दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यदि हिंदी सिनेमा में बेहतरीन नृत्यांगनाओं की बात हो और माधुरी दीक्षित का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके नृत्य में केवल कदमों की गति नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। फिल्म देवदास के गीत मार डाला में उनकी अदाएं हो या फिर डोला रे डोला गीत में शास्त्रीय सौंदर्य हो, हर जगह उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। इस फिल्म में उनके निभाए गए किरदार को बहुत शोहरत मिली। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के द्वारा 30 किलो का भारी लहंगा पहनकर कमाल का कत्थक करने और शानदार अभिनय दोनों की बेहद तारीफ हुई। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी की गई थी। साथ ही एक बार फिर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार की बाजी मारी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माधुरी दीक्षित ने अपने चमकते करियर की परवाह न करते हुए डॉक्टर नैने से विवाह कर फिल्मों को अलविदा कहते हुए पति के साथ विदेश जाकर बस गईं।

कुछ सालों बाद माधुरी दीक्षित ने पुनः फिल्मों में वापसी की और फिर से अभिनय में रम गई। फिल्में रहीं डेढ़ इश्किया, बॉम्बे टॉकीज, गुलाब गैंग, टोटल धमाल, ये जवानी है दीवानी और कलंक आदि। उन्हें भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया। असाधारण प्रतिभा की मल्लिका माधुरी दीक्षित को भारतीय फिल्मों में आज तक की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार माना गया। उनकी मुस्कान, उनका नृत्य और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। माधुरी दीक्षित केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक दौर का नाम है, भारतीय सिनेमा की उस चमकती हुई धरोहर का नाम है जिसकी रोशनी आने वाले वर्षों तक यूं ही बनी रहेगी। उनके चाहने वालों को आज भी उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है और शायद हमेशा रहेगा।

0: एक ही कलाकार कार्यक्रम अभी पेश किया गया जो आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, दिन के 11:30 हुए हैं। लोक गाथाओं का कार्यक्रम रुस रुसा शुरू करने से पहले सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब प्रस्तुत है लोक गाथाओं का कार्यक्रम रुस रुसा। आज इसमें सुनिए लोक गाथा मैनमती रानी का 8वां भाग। गायिका है कचराबाई और साथी।

राजा पीला मानवे जनम कर सुई न डकरिए नार काटली सुई न डकरिए नार काटली नार काटली एवे नहाधुआ करे बार पिला मना के एवे नहाधुआ करे से ए दुनिया पिला के एवे नहाऊ दिली इनीली झूला ने एवे सुहाऊ न दिली ये दुनिया राजा के एवे झूला ने सुवाली हरदी गुंडी रानी के एवे नहाऊ न दये से मैनामती रानी के एवे नहाऊ न दये से मैनामती रानी के एवे नहाऊ न दये से आपल नहाली एवे तेल फूल घसाली आपल बोले नहाली एवे तेल फूल घसाली

असने बोलली भाई जाते गेली भाई सुई ना डकरी अबे जाते गेली भाई हो रोदी गुंडी ना अबे मैना माती रानी जाए रोदी गुंडी ना अबे मैना माती रानी जाए ये राजा बोले रे राजा डाला चाँ राजा जाए ये राजा बोले रे राजा डाला चाँ राजा जाए इनको सा खोड़ू का राजा जावे बोले सात ही तीना दीना हाली राजा को सा दे तो रही घटक एवे डाला चावर सुना तो रही घटक एवे डाला चावर सुना कोड़ो की धरल एवे ढूटी धरल बेटा ई धरल एवे जात लाली धरल कोड़ो की ड्यूटी के धरल कसा खड़ू जाए से कोड़ो की ड्यूटी धरल कसा खड़ू के जाए से जंगल जंगल एवे डाला चावर बुले

कसन कसन करू आया कसा खोडून आना।

নঠন ডুডায় বে মাইনা মাতিকে দিলি বে।

0: রয়ে তল গয়েবে জমাই বাটুন খাদ ইসলি রে করময়েবে কসা পানি খাদ।
1: अभी आप लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में सुन रहे थे लोक गाथा मैनामती रानी का आठवां और अंतिम भाग। गायिका थी कचराबाई और साथी। लोक गाथा का नया भाग हम प्रसारित करेंगे आने वाले रविवार को। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। 11:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।

0: गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माई भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उपमहानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: रेडियो सुनतो भाई बहन मन के सपाय के सेवा जोहार। आज चो लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी ने अपन मन सुना से हल्वी कहानी ठसा आरो भत्री ने कविता पाठ। तो सबले पहल आम के सुनाए सोत हल्वी ने कहानी निर्मनी बघेल।
1: गोटक राज रहे मने हुन राज ने दुई भाई रहत मने हुन चे गोटक भैन रहे मने भैन बीती कितले दूर आ जाल बिया कर रला मने हुन मन के माय बाप नी रला मने तो हुन मन दुई भाई जन बोलला मने नहीं ना आम कसन करू ने थान रवा काय मीरान खामा बोलला मने आर जन हुन मन जन दोनों भाई दीदी घर जो बोलला मने आर गेला मन गुन भैन भी देख ली मने आर खूबे हरी खोली मने हुन ची गोटक नानी असन पीला रहे मन फेर मज भाई मने ऐसोत बोल ली मने आर देख ली मने आर हरी खोली मने फेर हुन ची भाई मन अमर लोके लगे गेला मने आर बसला मने फेर हुन पीला सो रहे मने सो आंदे हैं तो बोल ली मने आर झूल नान सो आन दिली मने हुन चु पीला के सो लोके हुन मन के भात दिली मने खूबे भूख हो रला मन दोनों भाई और हुन जन बोल ली मने लग बाबू रा करा मैं जान पानी जाए दे बोल ली मने और गोटक हांडिक धर ली मने और पानी गेली मने जातो के हुन चु जसन जातो के उसनी पीला चेत लो मने तेब गा गेस मने तेब बड़े भाई भी ता बोल लो मने नाई मैं धर एंदे बोल लो मने नानी भाई भी ता हुन चु घरे गुलाए वोलून वोलून काय काय दकेस मने हुन मन चु घरे काय लगे आजाल खिंडिक दार रहे मन हुन दार के धर रहे दे बोल लो मने यार दोनों पार्ट से जोब मन ने धर लो मने हुन पिला नीचे भी साय मन भी कट गाकत रहे मने तेबे तू ही नहीं सकिस दादा मौके देस बोल लो मने और अपन पाव लो मने और कौन लग दख लो जाले सूजी रहे मने गुला आए के हुन पिला दख लो मने हुन चो तारू ने लुबुक लुबुक करत रहे मने ते बोल लो मन हो यही तो दुख ऐसे तेबे नहीं हुन गागे से बोल लो मने और कोचक लो मने कोचक लो कुन पिला मोर लो मन देख लीज दादा मैं धर ले कुन बाबू सो लो बोलून बोल लो मने और हुन फिर बड़े भाई भी ता देख लो मने हो कौन लग सो लो मोर लो पोराऊ ये था नी रहूं बोल ला मने और पोरा ला मन दोनों भाई पोराते पोराते बोलेस मने हैं ओले गोटक कली भाटा मीर ली मने कली भाटा एकदम डांगरा छाड़ू रहे मने पानी नी रहे मने बोलेस मने ये देना दादा आम चुआया बाबा ये थन टोन फाड़ ला से बोलेस मने नो आए ना बेड़ा आए बोलेस मने भाई बीता नहीं ना मचदार के देश ये मन की दीवा है भूख हो ला से बोल लो मन तेब नो आए ना बोलून थाक लो मने हुन बिकट गाग लो मने तेब जानू धर बोल लो मन गुला आए के रकाते रकाते जाए से मने फिर हैं वाले गोटक जानू नाऊ ये ऐसे मने कतरी छुरा दुनिया भर से धरू ने ऐसे मने हुन बोलेस मने दादा एक मांगून देस ना बोलेस मन नाई ना ये खीजे दे बोलेस मन नाई ना मक मांगून दे नाल मत चुनीदार के दे बोलून बिकट गागेस मन गाग तो खुन नाऊ बोलेस मन काय होली बाबू हुन गागे से बोलेस मन तेम नाई तू चो धर लो चीज मन का आज गागे से बोलून बोल लो मन हुन हुन देऊन दे ना पीला माने आए बोल लो मने हुन फिर दी लो मने बिकट हरी खोलो मन जो दादा बोलेस मन जाए सत मने फिर जाते जाते जाते कौन लगा जाल गोटक भैंसा मुर रहे मने बोलेस मने ए दादा ये कि काटू रहू ना कौन लग बोले गांव ने गेलू जाल रांद वहां बोलेस मन नाई ना नाई बोलेस मन तू जा वसल जा मैं काटू आए बोल लो मन फिर उन दोनों भाई काट ला मने बड़े भाई बोलेस मन नाई ना ये मांस मन के धरू बोलेस मन ये मन काय करू आस देख धुर रू बोल लो मने ओंड काक धर लो मन हूँ नानी बीता बड़े बीता मांस मन धर लोस मन फिर जान जाए सोत मने गोटक लग जान रुक रहे मने बोलेस मन ये तय रांधवाना बोलेस मन रांधू बोल लो मन फिर जाते जाते जाते रुक के अमर ला मन हूं था ने नाई ना दादा चेगू रहू ता पासे रांधवा बोल लो मन फिर उन मन दू ना भाई चेग ला मने फिर हुन गांव ने जन बिया इला मन लोग मन और ने तेरा ला मने दूली के तो हुन मन रुक लग ठेब ला मने यही लग डंडिक बिसाऊ बल ला मन रांधवा भूख लागली बल ला मने तेब नहीं हुन नाई खूब लोग कौन तो रांदेस मने कौन तो नाचेस मने बाजा मोरिया दुनिया भर चौहासत मने ते भून मन बोल सत मने ऊपर ले रुक ऊपर ले एदा दावलेस मन ओए मुझे धर लो बीती ना खूबे बोझ लागे से एक छाड़ुआ दादा छाड़ुआ बोलेस मन नाई ना नी छाड़े लोग मन आम के मार दे बोलेस मन नाई ना दादा छाड़ुआ बोल बोल एकदम छाड़ी होली मन रुक ले उन पानापति गरजते एकदम घस रेस मने बिया लोग मन डरला मने और पड़ाला मने सब पाए छाड़ून पड़ाला मने।

बल्लामन जो मात्र गांव बाटनी जो ना ए इच्छे बाट जो कितले दूर जाओ खोए दे जो बल्लामन फिर जा सत मन फिर गोटक देश ने अमर लामने अमर तो के बोलेस मने नहीं ना ईरान भीतरे जो बोलो मन हाँ जो बोलो मन बड़े भाई बीता फिर गेला मने खूब्बे बड़े करपन भीतरे दून भाई ओल्ला मने हन थान गोटक बड़े बुड़गा भालू से उरे मने बोलो मने ए दादा बोलेस मन ओए ये भालू की मैं मुंड खुरान दे ना बोलेस मन नहीं ना ये आम की चाबू नो आए खाऊ नो आए बोलेस मन बड़े भाई ते बोलेस मन नी खाए ना नींद भर होलो से बोलो मने आर एकदम सोलो मने भालू ते हुन लेका जानू खुरान दिलो मने मुंड के एकदम टुंग टुंगा खुरान दिलो मने हुन भालू सोलो ची मने फेर ये पाट खुरान दे तो खून पाट उल्टेस मने दर्पण खुंचो मुलग मोडा रे मन हो मैं तो गंगा जाऊ रले बोलेस मन भालू फिर खुरा खुरी करून दूसरा कमरा ने असन पोकना भीतरे गेला मने आ दून भाई बस लास मन फिर उठलो मन भालू आर बोलेस मने मच लोग बाके हाक दे जाए दे ए मैं जन गंगा जाऊ रले बोललो मने और कितलो सुंदर कितलो भाटा के तासलो मने और पीड़ा मन बनालो मने हुन लगे मोडालो मने सब पाए साग पान जोड़ लो मने खातो पीऊ तो और हुन जन आप लोग मन के हाक दिख गए मने एबे एले का कसन कर लो मने ये चीक नरा बना लो मने और हुन चीक के जानू पीड़ा मन ने लगा लो मने और सब पाए ने लगा लो मने और गाय हूँ ना सत मन दूनो भाई हुन पकना भीतरे फेरे गेलो मन भालू और बाघ भालू दुनिया भरचो साप काय काय मन की जानू हाक दे आन लो मने टेंडका मेंडका सब आए के तेबे हुन मन जानू जो बल्ला मने और इला मने और बोसा बोसा बोलेस मने हुन पीड़ा मन दिल मने हुन पीड़ा मन ने बोसला मने खूब्बे जात जंतुर सब पाए लोग बोसला मने और बोलेस मन नहीं हो मैं गंगा जाऊ रले मके पानी छिचून दिया बोलेस मने तेबे हुन मन बोल्ला मन छिचून देऊ दे बोल्ला मने और खूब्बे लोग जान गोटेन हरिक ने बोसलास मने ए बोलेस मने दादा मैं मोरी फूकू आए दादा बोलेस मने नी फूक ना ए बाघ भालू आम की खा दे बोलेस मने बड़े भाई बीता नाई ना दादा मैं मोरी फूकू आए तु बजा बोलो मन नाई ना नी फूक बोलू एकदम मोरी धरलो मने यार फूक लो मने तेबे बड़े भाई बीता बोल काय करते बिचारा हुन बोल बाजा बजा लो मने बाघ भालू तो सुन ला मने और काय आए बोलून पोरा सत मने हुन मन चो बोस लो संग संगे पीड़ा मन लटकलीस मन भालू बोलेस मन काय गाज पोरा सास मच पीड़ा मन कसन धरून पोरा सास बोलेस मन और खेदेस मने उसनी सब पाए पोरा ला मन हुनी बाटे हेमन दुई भाई पाचे काय सुंदर बोसन भाई खाद ला मने और बोलेस मन नाई ना एता नी रहू बे दादा जो बे बोलो मन फेर गोटक देश ने जाए सत मने जाऊ जाऊ जाऊ हुन राज ने जन अमर ला मने अमर तो के गोटक रेटे बोलला मन यही लग रहू दादा बोलो मन हुन देश च गोटक रेटे दुई भाई आसत मने बोलेस मन बड़े भाई बीता काय खामा भाई मैं जाए दे ये पारा भीतरे बुलें दे कहाँ बल मक कम या हिसाब ने धर ला जाल हुन धान रहें दे या तू पोसें दे बोलो मन जा बोलो मन जा बोल तो खुन गेलो मन यार बोलेस मने चाकरी बोलते गुलाय गांव के बुलेस मने बुलतो के हुन राज ने गोटक बामन घर रहे मने खूबे बड़े सोकार आत मने बामन बामनी रोत मने हुन मन बोल्ला मने आवा बोल्ला मने हुन फेर जान हरी खोलो मने भगवान मक हाक दिला बोलो मने और गेलो मने और बोलेस मने तुई रउआस बोलते खो मैं रउआ बोलो मने रउआस जाल काय खवास बोल सत मन पान भर रोटी खवास कि पान भर भात खवास बोलला मन नहीं मैं तो भात रोज खाए से पान भर रोटी खाए दे बोलो मने तो ठीक आयरा मानतर तुई बूताक डरुन परालीस बोल ले

0: पाठ के छोलु आए बोल मने सोकार हाँ राय दे बोल मने आसे मने दिन भर एकदम मरत मुछन बूता करे मने बोजा बोए मने जितलो कमिया हिसाब ने तैयार सो उतलो बूता करे मने और राती बेरा सुखलो बीती रोटी खाए मने फिर मन ने सुखलो रोटी दुई तीन ठन खाए मने हुदलो आदमी कितलो खाए जाले एकदम सुकून गेलो मने झुरा लकड़ हून गेलो मने और बोले से मने कटलान कटलान थाकलो मने कितलो साल ले कटलालो जाले नाई सोकार मैं नी सके बे बोलो मने नी सके बे बोलो मने गुने सोकार बोले से मने हाँ तु नी सकी तुझे पाठ के मैं छोलू आए बोलो मन ठीक आए मच पाठ के छोल बोलो मने एले का लो लो मने हुन सोकार हुन ले का पाठ के छोल लो मने तेब जन गाकते गाकते गाकते गाकते हुन ले का गेलो मने आप लो भाई थाने कसन होल दादा बोले से मन नाई ना मच पाठ के छोल लो हुन सोकार बोलून भाती ले बोल लो मने तेबे बोले से मने तू ही रा दादा एदाएं मैं जाए दे बोल लो मने इतली तो आ
1: एदाएं सुनू ठसा आरू ठसा के संचालन कर सोत श्री लुभान पानीग्राही
2: तो आम चो बस्तर ने तो असन कई बरन चो गीत असन गोविंद असन ने नाटक असन कहानी असन तो कई बरन चो कार्यक्रम तो रहे से ने आराम सुनुज बोले दखुज बोले तो असने गोटो कार्यक्रम होय से गोटो ठसा तो ठसा बोल तो जहां सस्तु मन मन ए जहां ठसा बोली बोले हु ता हरि कुदिम मुरोली तो असने गोटो ठसा काम धरु नीलू से मैं आए लुभान पानीग्राही मस्त संग मचो संगवरी मनासोत सुबलू कश्यप जयराम कवासी और दिव्या कश्यप आम सबाई बाटले करू से
3: जुहार
2: अले मूर करू आदाय ने तो जसन तेतरा धरली कोकटी बाकटी तेतरा धरली कोकटी बाकटी मुनगा धरली ठिया तेतरा धरली कोकटी बाकटी मुनगा धरली ठिया आम जो ठसा सुन तो लोग तिया रोहन इया तो जसन सबाई दिला तिया रोहन ने अले ठसा के मूर करू तो आम संग गोटक भाई या सुबलू भाई आले आले मन ठसा बोला नी सुनो
4: मतलब बोला ठसा है बड़े गुड़ी चो चतर आए साठ नो आए सतर आए बड़े गुड़ी चो चतर आए साठ नो आए सतर आए फोका बई नो आए जो आए खर्चा दे तो रा
2: बढ़िया रीति रे लीला दादा कसन कसन फोका ने खोय दे ने बिना खोय सा जो तो वाले सुबलू भाई सुन लू ने तो बताए सुनू जयराम भाई बल गोट के सुनू
5: अले दादा मन मचलक बोले गोटो ठसा आस में बल सांगेस ने अले ते भी सुना ने करेला चो जोर बोला काय करेला चो जोर गुमाड पालिन बहु मन की कमान का तो मुरे नहीं है सो
2: तुझ बनना गदर है तो वाले ते सुनू दिव्या चुक ने
5: आओ अले
6: मचुलक बल्या से ठसा सुना करिया करिया तेतर बीचा बोरलो बोरलो जाम करिया करिया तेतर बीचा बोरलो बोरलो जाम बेटा नी होय जाले खोड़िया देव के मां
5: अरे बढ़िया रे लीना
2: तो पीला बीच का नी होल देव ताई बल मान तरह सन जाल ने तो बताए गोटक मई गोटक छाणे दादा तो सुना हाते पानी हांडी मोडे बहानी कचरी चुवार पानी हाते पानी हांडी मोडे बहानी कचरी चुवार पानी तुमचो पारा जवर लेकी मानतर नाव की बुलगलू आमी
4: अले मचलक बोला असता ने डांडाबाड़ी लगे कोलिया भूके लुकुन दख्त रले तुके डांडाबाड़ी लगे कोलिया भूके लुकुन दख्त रले तुके आजी काज रारे भूके काली के नए दे तुके
2: बका बिल्ली तुझ बोलना
5: अले फिर मैं सुना था ने हर दिन आलो जोर हर दिन आलो जोर बायले नालो घर हर दिन आलो जोर बायले नालो घर बुढ़ा तो बता रोलीस दादा एबले नहीं आया
2: तो वाले दिव्या सुन बताए ने
6: मचो के बल सुना पामेला गाँव चो बरहा मास सोमार हाट चो सुखसी पामेला गाँव चो बरहा मास सोमार हाट चो सुखसी तुई मनु खिंडिक डेंगा आस तू चो बायले ठुसी
5: काय मजा टसा ना ने
2: जोरदार ली ना तो वाले मई गोटक सुना है से सड़क सड़क चले फटफटी, सड़क सड़क चले फटफटी उदली चावरी गिटी, सड़क सड़क चले फटफटी उदली चावरी गिटी, तू चो काजे घेनून दे दे लेकिन नु अभी ते पैर पोटी।
4: अले मचलक बोला आस्ता है। हाँ अले सुना है।
5: अले
4: काचा अमा की संदान बनावा, काचा अमा की संदान बनावा, गोटक अमा बोले नसुन गेले अमा गुड़ीन मन के थाना ने बंधावा।
5: बढ़िया दादा बढ़िया
2: पोका पोली तुझ बोलना।
5: अले मैं बोल फिर गोटक सुना है दादा मन। राजा इला राज करला गांव की नसाला, राजा इला राज करला गांव के बसाला, बाई बाई झगड़ा ओला घर के नसाला।
2: तो निगाज भाई भाई वो सोर ने रतो राय ने,
5: सोर ने रतो राय थे भी नगत्रो कोई दे,
2: नगत्रो कोई दे।
6: अले मचो और गोटक ठासा के सुना। उदलो बेर कुदुन गेली कहाँ कोनी सोर नी मिली, उदलो बेर कुदुन गेली कहाँ कोनी सोर नी मिली, कोनी बले जोड़ी होता जाले भगवान धर्म होती।
2: तो अले गोटक मैं बले गोटक छाने दे। आगे रली सोली पोयली, आगे रली सोली पोयली अदाय होली किलो, नुआ जुना खाऊक सगा इवरलो मोचो बायले के नीलो। तो सगा बोली ले हिसाब दरो तराय अदाय ने।
4: हाले बाजार गेलू मंडी गेलू गेनलू बीड़ा पान, बाजार गेलू गेलू मंडी गेनलू बीड़ा पान, नानी बड़े सपाई बसुन खादलू कोकाई नहीं आए
2: मां।
5: अले मैं बल फिर गोटक सुना दे तने। आमा टाकू टाकू बला काय, आमा टाकू टाकू ये लेकी मन आमच संगे गीत गाओक नी सकले बराहा गुड़ा ने डाकू।
2: बढ़िया जमली। हाँ
6: अले मचो और गोटक ठासा के सुना।
5: हाले
6: जंगल बाटे जोर झापड़ी गोटक गपली घर, जंगल बाटे जोर झापड़ी गोटक गपली घर, लंदा संगे चापड़ा चटनी बढ़िया चर
2: पर।
5: चापड़ा चटनी तो असन नहीं बोले चर पर लागू आए ने।
2: जान से चापड़ा चटनी सुवाद के पर ने। तो वाले गोटक बाण मैं बोल छाड़े दादा। घर बांधले आड़की बीड़की, घर बांधले आड़की बीड़की सोजे बांधले कोठा, नी पवन भाती बेटा पावले मतो रहलो मचो बेटा।
5: नांगता है।
4: अले मतलब बला आस्ता है गोटो।
5: अले दादा
4: डारा पलाली बलक का है डारा पलाली, तारा गाइन लेकी मन के कोलिया डराली।
5: बढ़िया। अले फिर गोटो मैं सुना दे इस्ताने। ठुसका मामा चो बेटी बुस्किनो ने चो कोसा, ठुसका मामा चो बेटी बुस्किनो ने चो कोसा, आमचो संगे टसा मारतरेली उंचो पुस्कुन गेली कोसा।
2: तो लबल लबल नी लगाऊ रे कान खोसा पुसकली ना ने।
5: ओ काय आले
6: आले मचो बल गो टोक ठसा के सुना था। साहेब का जे मोटर गाड़ी बाबू का जे कार, साहेब का जे मोटर गाड़ी बाबू का जे कार, रुख राई के गोंतो का जे मना कर लो डिप्टी ना का दार।
2: मने रुख राई बल गोंतो और नुआ है ठसन बोल सांगे से था ने। ज्ञान भी दे ज्ञान भी दिगोड बला है बोले ठसन बोलू से हास्तो का जे मंत्र ज्ञान भी दिगोड बला है। तो जंगल रही रले ताम चु बोले जीवन चले तो चले ने। अले गोटक मैं बल गोटक छाणे दादाई तुम चु सुनगत मगल हरिक लागली। दिन संगे रात सखी दिया संगे बाती, दिन संगे रात सखी दिया संगे बाती, हाट गांव ने खोजुन थाकले भेट ले तुके राती।
5: राती तो बेट गटो को वाने।
4: अले मचलक बुला आस्ता ने।
5: अले सुलू दादा तुम जो बल
4: मुकर सुना है। आटान पार्टी नौटान दुलुम बीती घर, आटान पार्टी नौटान दुलुम बीती घर, तीन पिला छो माय होला आमचे बहु एबले नहीं आए
2: सर।
5: हले मैं बल फिर घटोक तो
2: आसे तक तुझ मोटरी ने
5: आसे तक है
2: ना सन। हो वाले
5: चिंतराई चो चापा लाडू दाते लटकली, चिंतराई चो चापा लाडू दाती लटकली, मोरे या दादा मोहरी पुक्तिरलो सोसी लटकली।
2: अले सोसी लटक काय मोरी फुकू है ने। मुन दिन सोसी मोरी जनी बाजे। अले गोटक मैं बल गोटक छाड़े ता आले
5: आले
2: कुमडा रोपलू गोबर खते, कुमडा रोपलू गोबर खते लहा गेली पर्वते, कुमडा रोपलू गोबर खते लहा गेली पर्वते, तू मन कर ले की मैं बल घर जुआ येते। तो आले गोटक मोटन गोटक मजे पाच लिस्ट मई गोटक छाड़ेन था
5: आले
2: आठन पाठी नौठान डेरी, आठन पाठी नौठान डेरी दुलुम्बिती घर, मचो बेटा काजे वायले आले येवले नी आए सोर। तो संगवारी मन ने ये तो रली आमचो ठसा, तो ठसा बोला आमचो सरली ने, तो जातोपुरे आमचो ठसा ने मैं लुभान पानी की रही,
4: मैं शुभलु कश्यप,
5: और मैं जयराम कवासी,
6: और मैं दिव्या कश्यप,
2: आमे दरु सदाई बिदा। तो सपाए बाटले जातो समय आके जुहार।
1: हाँ तो ठसा तो अपन मन सुनलास, एदाए सुनाए सो तो भत्री ने कविता पाठ श्री मनबोध बघेल।

0: दशरा दक्षी, दशरा दक्षी, पीला राशि संगे मुई सलसली गली, पीला राशि संगे मुई सलसली गली, दशरा सारे भेंट ओए बाय आमर कोदो माली, दशरा सारे भेंट ओए बाय आमर कोदो माली, बाबा के सोर नाई, आया के सार नाई, मोके डर नाई, आया के सोर नाई, बाबा के सार नाई, मोके डर नाई, आया बाबा के सोर करसी, बाबा बले असन काय घाई, आया बाबा के सोर करसी, बाबा बले असन काय घाई, घरर रुपया पैसा सरसी, घरर रुपया पैसा सरसी, दसरा सारे गले, बरस के पीछे दसरा सबू असनी बले, बरस के पीछे दसरा सबू असनी बले, बाबा बोलला मोके बेटा दसरा काय दकुआस, बाबा बोलला मोके बेटा दसरा काय दकुआस, आया बोलला मोके बेटा बेड़ा बूता कसन करुआस, आया बोलला मोके बेटा बेड़ा बूता कसन करुआस, बेड़ा बूता सरे नहीं लगे पैसा बाचे नहीं, बेड़ा बूता सरे नहीं लगे पैसा बाचे नहीं, असन अटक पड़ला जसन चिपार गाई, असन अटक पड़ला जसन चिपार गाई, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, दसरा दक भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी, दसरा दक भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी, लुकली और दसरा दका गली मुई, लुकली और दसरा दका गली मुई, पैसा सोंगाय रली दुई कोड़ी उपरे दस, पैसा सोंगाय रली दुई कोड़ी उपरे दस, दसरार हुलहुली देवर गुलगुली, दसरार हुलहुली देवर गुलगुली, मंजनर छतर डोली रातीर कोदो माली, मंजनर छतर डोली रातीर कोदो माली, दसरा सारे रही गली बुकली बुकली, दसरा सारे रही गली बुकली बुकली, पीला राशि संगे मुई गली सलसली, पीला राशि संगे मुई गली सलसली, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, दसरा दख भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी, दसरा दख भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी, दसरा सरला पैसा सरला घरे घरे आयलू भाई, दसरा सरला पैसा सरला घरे घरे आयलू भाई, काली तो कुली जिबाराय आजी कसन करबू भाई, काली तो कुली जिबाराय आजी कसन करबू भाई, बेड़ाए जाई रती बुता के करी रती, बेड़ाए जाई रती बुड़ा के बुता के करी रती, चाउर रले रांधी रती चूचा संगे खाई रती, चाउर रले रांधी रती चूचा संगे खाई रती, आयार सिखिया बाबार बिकिया असन आय दिखिया, आयार सिखिया बाबार बिकिया असन आय दिखिया, टुनिया मुनियार क्रिया मोके पुरला सिखिया, टुनिया मुनियार क्रिया मोके पुरला सिखिया, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, दसरा दख भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी, दसरा दख भी दसरा दक्षी, दसरा दक्षी। घर के दखी दसरा दखबार, पैसा दखी खर्चा करबार, घर के दखी दसरा दखबार, पैसा दखी खर्चा करबार। तियार परब पाचे आए जीवना के पहले दखबार, तियार परब पाचे आए जीवना के पहले दखबार। दसरार शोभा देव लोगर उबाय उबाय, दसरार शोभा देव लोगर उबाय उबाय, जीवनार काय शोभा कसन उबाय उबाय, जीवनार काय शोभा कसन उबाय उबाय। बेड़ार शोभा धान के उबाय उबाय, बेड़ार शोभा धान के उबाय उबाय, तियारर शोभा आपनी उबाय उबाय, तियारर शोभा आपनी उबाय उबाय। असन सिकिया मुके पड़ला दिकिया, असन सिकिया मुके पड़ला दिकिया, बड़े नाई शुरू शुरू आए आमर जिया, बड़े नाई शुरू शुरू आए आमर जिया। मुई बल्ली आया के बाबा बल्ली बाबा के, मुई बल्ली आया के आया बल्ली बाबा के, दसरा दख भी दसरा दक्षी दसरा दक्षी, दसरा दख भी दसरा दक्षी दसरा दक्षी।
1: हाँ तो दखा रेडियो सुनतो भाई बहन मन, आजी लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी ने सुनलास हलवी ने कहानी ठसा आरु भत्री ने कविता पाठ। तो असनी आपन मन सुनते रहा मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका के। तो सपाय रेडियो सुनतो भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार।

अभी लोक साहित्य पत्रिका मोचू माटी का प्रसारण आपने सुना। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

0: मैं तो अमरले और दीदी मन तुम्ही बोले सम्या दखून रेडियो कटा बसला सती तो घर द्वार कार्यक्रम सुन तोर सपाय गांव करीन बहिन मन के मैं रेला करे से खुबे खुबे जुहार और रेडियो कटा बसलो सपाय नानी नानी नोनी बाबू मन के मुझो बाटले खुबे खुबे मया। तो बहिन मन तुम्ही तो पेज पानी खादला सोती ने और पेज पानी खाऊन बाती डंडी बिसायसा सोती आजकाली तो खूबे गांव में से और आम के पेज की खाकी पानी की खासन आम जो मन भाए से ने मंदर बासी पेज की खाद लो ने आम जो मन कंडिक अस्थिर होए से ने और आजकाली कोनी कोनी बाटे टोटा बाजी मन वाले मीरे से तो उन भाजी के चना संगे बना लो ने आम की खूबे अच्छा लागे से। तो बहन मन आमट साग बोले खूबे अच्छा लागे से और पेज संगे तो आम के छापड़ा चटनी खूबे मन के भाए से ने। तो बहन मन आजकाली तो खूबे घाम होए से तो गाम तो अपने आम के नी बुल्लो ने तो काम नहीं होए तो घर ले निक रुक पड़े से ची तो आम के सपाई लोग के घाम जो बाज तो काजे अच्छा ले पानी पी तो रहे ने आम जो जो देह होए से उतना पानी चो कमी ओक नहीं दे तो रहा है आम के खूबे पानी पी तो रहा है और पेज बल्ले पी तो रहा है और जोन पोषण होए से आम चो खान पान चो आम की खूबे ध्यान संगा तो रहा है। तो बहन मन तुम्ही तो आजकाली खूबे भी अठीका घर घर जाए सास होती और बाजा मोरी ने खूबे नाच सास बल्ले होती ने और आजकाली आमी सुनू से खूबे योजना मन छो गोट बात मन तो उन गोट बात मन के बल्ले तुम्ही सुनसास होती ने। तो बहन मन आजकाली तो कहे एक सरकारी योजना मन होए से ने और ये आम जो भारत काजे होए से आम जो आमदनी के बड़ा तो काजे होए से कसन बल्लो ने आम जो गांव पारा ने कई एक सर्वे मन होए से सर्वे कर लो ने ये जानू होए से सरकार के कि आम जो जोन लोग होए से उन मन जो जीवना ने काय काय परेशानी आसे और लोग मन लगे मूलभूत सुविधा आसे कि ना जुन जसन कि सड़क कसन आसे घर घर ने बिजली आसे कि नहीं पानी जो सुविधा होए से कि नहीं रहतो कचे घर आसे कि नहीं और उन मन जो जीवना ने आमदनी जो काय काय साधन आसे और आमदनी पर्याप्त आसे कि ना जुन ने। तो ये जोन लोग होए सो तेन आर्थिक और सामाजिक जोन स्थिति होए से उन मन जो सुधार करतो काजे कई प्रकार जो वाटमन सरकार धनबाती ऐसे उन्हीं काजे सरकार लोग जो जीवना जो स्तर के उबातो काजे खूबे योजना मन बले बनाए से बल्लो ने सरकार गांव चो शहर चो जोन पिछड़ा गरीब कमजोर वर्ग चो जोन लोग होए सोत उन मन के ऊपरे उठातो काजे खूबे नुआ नुआ वाटमन दरुन बाती है से। बहन मन सरकारी योजना केंद्र सरकार नहले राज्य सरकार जो खूबे नंगत वाट होए से जोन सपाय जन मन काजे खूबे नंगत काम करे से सरकारी योजना जोन होए से उन समाज जो खूबे कमजोर वर्ग के आमदनी बढ़ातो काजे उन मन के बुनियादी जोन सुविधा होए से उनके पहुंचातो काजे खूबे कोशिश करे से और विकास करतो काजे और लोग मन जो स्थिति के सुधारतो काजे खूबे अवसर मन बले देहे से गरीब जरूरतमंद लोग मन जोन होए सोत उन मन के आर्थिक रूप ले मजबूती देतो काजे महरार मन पीला जिला बूढ़ा बुजुर्ग मन किसान मन काजे सुरक्षा असन सुविधा मन बले देहे से और शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार काजे बले योजना मन एहे से घर राशन इलाज जसन मूलभूत जोन सुविधा होए से उन मन बले लोग मन तक पहुँचे से गरीबी और बेरोजगारी कम करतुर का जिबाले खूबे कोशिश मन होए से आमी सुनू से बहन मन जसन लाडली बहना योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सुकन्या योजना उज्ज्वला योजना ए योजना मन के बले आमी सुनू से ने और किसान मन का जबले खूबे योजना मना से जसन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फसल बीमा योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC बलबलुआ तुन के ये योजना मन किसान मन काज बले आसे और रोजगार और गरीबी कम कर तो काजे परिवार जो सपाई लोग परिवार काजे बोलुबे तो उन मन काजे मनरेगा वैसे যাকে বেজি রামজি বলুন বা তিলক মান জানসোদ আর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হয়েছে যো আজকালে গাঁও গাঁওনে আবাস মান মেরে সে ঘর ঘর চলোক মানকে আর আয়ুষ্মান ভারত যোজনা জন স্বাস্থ্য কাজে হয়েছে আর রাশন কার্ড জন তানলে সপাই লোক মানকে চাউর আয় নাহলে শক্কর আয় লোন আয় আসন মিরে সে তো এই যোজনা মান সরকার বাটলে বানলি সে আর জোন পিলা জেলা মান স্কুল নে পড়সুত উন মান কি স্কলারশিপ বলে মিরে সে নে আর পেনশন কাজে বলি যোজনা আছে জসন কি আমি দেখু সে জোন ঘর চো বড়ে বুজুর্গ লোক রসোত উন মান কি মিরে সে জোন দিব্যাংজন রসোত উন মান কি মিরে সে আর জোন বিধবা রহসোত নহলে প্রত্যাক্তা রহসোত উন মান কে বলে পেনশন মিরে সে তো বহিন মান আসন খুবই যোজনা মান সরকার বাটলে বানলি সে খুবই যোজনা মান সরকার বানালা সে তাকি সপাই গাঁও চো জন লোক আসোত জন কমজোর লোক আসোত জন গরিব লোক আসোত উন মান আপলো জন স্থিতিকে কন্ডিক আর সুধার করোত আর জন সমাজ নে বড়ে বর্গ আসোত উন মান ছোটে বর্গ চো বল লোক রহসোত বড়ে বর্গ চো বল লোক রহসোত নে তো ছোটে বর্গ চো লোক আপলোকে কম আর ছোটে নি সমঝোত আর উন মান জোনাত আপলো স্থিতিকে সুধার করুন বাতি রহোত বলুন বাতি খুবই যোজনা মান সরকার বাটলে বানলি সে আর জন জন তক পৌঁছে সে তো বহিন মান আসন গোট বার তো আমচো রহে সে চি মান্তর আমচো লগে আদায় গোটক জাহালা আসে তো এ জাহালা কে আমি শুনু
1: এক মজবুত ঘর বিলকুল উস পিতা কি তরহ হোতা হ্যায় জো হর মৌসম সহ কর ভি ঘর কি নীব কো কভি হিলনে নহি দেতা
2: আপকে ঘর কে লিয়ে ভরোসে কা দুসরা নাম চেটিনাড সিমেন্ট কা ম্যাক্স ক্রিট সিমেন্ট 64 সালো কি বুনিয়াদ কে সাথ চেটিনাড সিমেন্ট দ্য পারফেক্ট কংক্রিট চয়েস
3: সো বেড়কিন বিড়িয়া রাহাত তিন্দানাত উন্ডানা সামান তালায় দরকতা ডবল রোটি আরি আর ছেনা পনির আসিত কে ইঞ্জে জিএসটি লাগে মাইয়ো ইদেন সঙ্গেন 33 জরুরি দবাই নাদ মোলাভেন কম কি সিত তোড় আদেন কে ইলাজ তালায় খরচাভেন কম লাগে মাতা জীবন বীমা তগভেন ইঞ্জে জিএসটি ছুট দরকিতা আদেন কে পলিসি পৈতানাদ ইঞ্জে সস্তা আন্তা সুডলা কার গাড়ি আর 350 সিসি তা কোটরু গাড়ি তা পর্রো 28% জিএসটি মত্ত আদ কামাস ইঞ্জে 18% আত্তা ইদেন মতলব ইদ কি ইঞ্জে গাড়ি পোটরু গাড়ি আসিত কে সস্তা দরকিতা
0: বহিন মন এ নগদ গোট কে তো আমি শুনলু নে মান্তর আদায় সময়াবলি সে ভেট বার্তা চো আর আজ আমচো সঙ্গে আসোত বহিন গীতা বৈষ্ণব জোন স্বরোজগার করসোত আর উন মন কে ভেট করসোত সি আর কশ্যপ তো আলে এ বহিন চো গোট বাত কে আমি শুনু
4: ঘর দ্বার কার্যক্রম সন্তো সপায় দিদি মন কে জুহার তো দিদি মন আসন আয় কি আমচো ই জীবনা নে কয় কসন সমস্যা মন বল ইউ আয় আসন সমস্যা মন কে পার করুন বাতি জোন জীবনা জীবলা উন লোক আসন আগে যাউন বাতি বলে আচ্ছা রুহাত আর কে ভি হার নি মানত তো আসন দিদি সঙ্গে মাই আজি গোট বাত করে সে তো দিদি তাল তো কে খুবে খুবে জুহার
5: সপায় দিদি দাদা মন কে মোচো বাটলে বল জুহার
4: হ্যাঁ তো তুচো নাও আর গাঁও চো নাও কে আগে সাঙ্গুন দেশ
5: মোচো নাম আয় গীতা বৈষ্ণব আর মাই বকাউন নে রুমায়
4: আচ্ছা
5: আর মোচো সমুচো নাম আয় মা বৈভব লক্ষ্মী স্ব সহায়তা সমূহ আগে মাই সমূহ নে নি ভিড়ু রায়
4: আচ্ছা
5: তো আপন পিলা জিলা কসন পালতে মোচো থানে খতম হলো
4: আচ্ছা
5: মোচো হাজবেন্ড খতম হলো তো মোচো জীবন বহু তকলিফ দে রে
4: আচ্ছা
5: তো আব থোড়ে বহুত নলেজ রে মুকে মতলব শিখু রায় মাই পড়তো দায় সিলাই কড়াই কই কই শিখু রে কাম তো সিলাই কাম করতে রে যে ছোটে মোটে কাম মিরে কাচু বিলো সিল তোর ফটে পুরা কাপড়া কো সিল তোর ফের হুঞ্চো নে দুজন পিলা কজন পোষতে
4: আচ্ছা
5: জনপচ্ছ সামনে রে মাই
4: আচ্ছা
5: কিরায়া নে ঘর দুয়ার লে সব জানু হাস নে সময় পড়লে কোনি সাথ নি দিও তো মাই কাই করে টিফিন আদর মন ধরে সাব মঞ্চো ব্যাংক ব্যাংক বিতা মন ব্লক নে সব সব
4: লোক সাব মঞ্চো
5: টিফিন আদর ধরু টিফিন দে हम जो ने बोले उतरो अच्छा मोचो जीवन नहीं चले तब ले बोले इंडिका दा कसन हो कि दुई टाइम चो रोटी खाऊ सकू पीला मन के पोसते रहे पढ़ा लिखा। फिर उन जो ने उतर एक समूह जुड़ते रहो दीदी में हुनी लग चो
4: अच्छा
5: तो मौके पूछ ला समूह ने जुड़ आज का बोलते जगह ले किराए यार नहीं रहे हुनी दीदी पूछ ली
4: अच्छा
5: बोले खाए बीती आई समूह ठीक है जुड़ून रहे दे ने
4: खाली
5: दिन जो भी हो दे फायदा हो चाहे नुकसान हो
4: पर
5: नुकसान बीती तो कोनी नहीं सांगो फायदा चीज सांगवा। तो मैं बोले ठीक है मैं बोले जुड़े दे बोले फिर समूह ने जुड़ लुआ मैं
4: अच्छा।
5: समूह बना लू
4: दस
5: महिला मन जुड़ू 20 रुपया होता मैं सप्ताह ने बैठक करूँ जमा करती
4: अच्छा। ये समूह बोलोगे जुड़ तो तुझे कित बार खोली जाले
5: 2016 ने जुड़ ले मैं
4: अच्छा
5: 2016 ने जुड़ ले समूह ने तो ऊंचो बात काय होली जस मोचो परिस्थिति के धकला सर मन बदले पूरे रहे तो टिफिन उफिन देते रहे तो हम जो मतलब जनपद ने जो बस हुआ सर बीपीएम बोलुआ
4: अच्छा
5: तो बीपीएम सर देख लो समूह बार ले कई ढन काम है तेरे हुआ है पढ़े लिखे लोग के कहीं ना कहीं मिरते चिर हुआ है। फिर सर मौके अचार पापड़ जो ट्रेनिंग होते रहे हाड़ावाल जगदलपुर ने
4: अच्छा
5: तो मौके पूछ ला दीदी आप जाओगे क्या बोलते है तो मैं बोले ठीक है जाऊंगी रोजगार तो मौके चाहिए रहे है कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ो तो गेले मैं ट्रेनिंग ने गेले अच्छा करून बली ले इनाम बल मिल ली मौके फिर सर मन मौके सियल अब बांट ले 60,000 पैसा दिला ला
4: अच्छा
5: अचार पापड़ का जेके मैं समूह बांट ले नहीं करे नाम तो समूह ले आए मन तो 1,00,000 करूँ अपन घर ने करूँ
4: अच्छा अच्छा ये भी बोले कर सी थी
5: हाँ ये भी बोल करूँ आए मैं
4: कहाँ
5: कहाँ देऊ ची आए
4: अच्छा
5: सरस मेला मन ने बल देऊ आए केरल बल जाऊ रहा है मैं दिल्ली जाऊ रहा है सब सामान धरून जाऊ आए
4: अच्छा
5: तो उन चले फिर चालू कर ले काम के धीरे धीरे बढ़ते गेली लोग मन ने पहचान बढ़ते गेली मोचो जो लोग मुके नहीं जानते रहो थुन मन बल जान ला पहचान बढ़ते गेली फिर सर मन दखला काम के ऐचो काम अच्छा चले से फिर बल्ला समूह के चो नाम ले मसाला उन्हें दे मशीन मन
4: अच्छा ये मसाला बनाते
5: हाँ मसाला बना तो हरदी मेरी सब मशीन आ से
4: अच्छा,
5: पापड़ ऊपर चो
4: फिर
5: सर मन नाम के दिलाएला होता बोला अच्छा हुआ मतलब अच्छा कमाई यहाँ से
4: बकावन
5: ने जनपद ची लगा से जनपद ले आम के भवन दिला सद गोटो
4: अच्छा
5: तो मशीन मन सब फिट आसे
4: उन
5: काम के बल करू आए अचार पापड़ काम बल करू आए
4: अच्छा
5: संग ने मैं BDSP चो काम बल करू आए
4: अच्छा
5: जनपद बाट ले BDSP माने मतलब आम चो काम ये आए कि हम जैसन छोटे छोटे बिजनेस कर चो दीदी मन के आए
4: जैसन
5: छोटे छोटे दुकान आसे छोटे छोटे ठेला आसे हुन दीदी मन के लोन करा हुआ
4: अच्छा,
5: 40,000 रुपया मतलब छोटे काम के थोड़े बढ़ावा दीदी मन मतलब ये भी सरकार द्वारा असना से कि जो छोटे छोटे दीदी मन आसो गांव चो दीदी मन जो कहीं के नहीं जानो उनके हम ट्रेनिंग बल दे हुआ
4: अच्छा।
5: कसन आगे बढ़ तो रहा है दुकान मन के कसन मतलब आगे बढ़ा तो रहा
4: है उन
5: ट्रेनिंग बल दे हुआ हुन दीदी मन के सांग हुआ तो दीदी मन के आगे बढ़ा तो का सरकार अब खूबे मतलब नियम मन निष्कालो से और खूबे पैसा मन दे से मतलब कई ठन फंड इली से दीदी मन का जे तो सबसे पहले का आमे दीदी मन के छोटे लोन कराऊंगा
4: 30-40,000
5: चो दीदी मन के फिर उतर ट्रेनिंग दे हुआ कई आगे का है दुकान मन के बुढ़ा हो दीदी मन बोले घर चो घर ने सामान डालुआत घर चो लोग पूरा सामान के खास होत दुकान बड़े देकर
4: कहाँ
5: बुढ़ुआ तो उन जो काज का सरकार बात ले एबे हम जो मतलब काम असना है फिर ट्रेनिंग उन्हें दीदी मन के देऊं समझाऊंगा कि
4: अच्छा।
5: कसन ने दुकान के बढ़ा तो रहा है ताकि दुकान ना मतलब नी डूबो और दुकान कसन ने बढ़े दे तुम जो परिवार कसन ने चले दे उस तो बाद ने एबे मुद्रा लोन स्वयं सिद्धा स्त्री
4: अच्छा।
5: शक्ति ये सब लोन मन बल कराऊं से
4: अच्छा।
5: आगे छोटे लोन ले जोड़ लू दीदी मन के आगे का डरो दीदी मन नहीं बैंक ले कर्जा नहीं धरू हसन अब एक बार दिलू समझा लू ए बड़े बड़े लोन धरसो हाँ,
4: हाँ।
5: 2 लाख 1.5 लाख हाँ। अभी तो 5-5, 6-6 लाख चुबल लोन धरसो दीदी मन
4: अच्छा
5: ताकि अपन जो दुकान के और बढ़ाऊ बोले
4: हाँ, हाँ,
5: ये सब लोन मन बोले हम दीदी मन के कराऊ से
4: अच्छा ये लोन धरुन बाती सही काम कर लो ने उन फोका नहीं होए नहीं जाए आए कसन और आई छी नानी हसन
5: काम ले खान पीवन बुढ़ा ले का ले होए
4: नहीं होए आई छी अद खान पीवन बुढ़ा दे तो उनके आई जसन तो ये बोल ली से लोन बीती तो आधा परसेंट छूटा ही पूरा पटा भीतर आए जाले
5: एसटी आदिवासी मन के और हरिजन मन के एसटी एससी के मतलब सब्सिडी 10,000 है
4: अच्छा,
5: छूटा है समझ हाँ, हाँ, समझो
4: अच्छा
5: हूं जो बोले अलग ले फॉर्म भरुआ
4: हाँ, हाँ,
5: 10,000 छूट बीती
4: अच्छा
5: और जैसन जनरल ओबीसी
4: हाँ,
5: मन के नुआ छूट
4: अच्छा मतलब ब्याज ज्यादा नुआ होती
5: ये हाँ, ब्याज ज्यादा नुआ
4: बाकी बैंक मन ने जैसा आए तो मन था ने ब्याज आगर धरुआ हाँ, समूह बाटले धरुन रलन शायद उतर कम ही चाहे लागे ने
5: मंदर ग्रुप ने धरुआत नहीं दीदी मन
4: हाँ, हाँ,
5: आगे काय होते रहे जैसे एक समूह ने 10 दीदी 12 दीदी
4: अच्छा
5: 15 दीदी बोले रहुआ
4: हाँ, हाँ,
5: तो उन दीदी मन के काय आए की एक संग ग्रुप ने दी बात 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख
4: अच्छा
5: तो दीदी मन इतरो पैसा मतलब सब ने बटुआ
4: हाँ हाँ।
5: तो एक दीदी को इतरो पैसा नहीं मिल पाए कि हुन दीदी मतलब उनके बिजनेस न लगा सके
4: हाँ, ना
5: कुछ
4: हाँ।
5: काम ऐसा नहीं कर सके,
4: करुक सके
5: हाँ, थोड़े पैसा ने काय काम
4: नहीं
5: कर
4: दे आए, आए, आए, हाँ।
5: अब बिजनेस आए माने कोनी दुकान आए काय आए दीदी मन के जो बढ़ा तो
4: हाँ, हाँ।
5: तो दीदी मन के ज्यादा पैसा लागू आए
4: अच्छा
5: है कि नहीं
4: आए, आए।
5: अब समूह ने बोले 10,000 15,000 20,000 दे हुआ
4: हाँ, 10-20 हजार ने कहाँ
5: सीएल अपलेबल दे हुआ था हम जो बात ये सब मतलब दीदी मन के
4: हाँ।
5: तो ज्यादा से ज्यादा दे हुआ 60,000 50,000
4: हाँ,
5: एक
4: हाँ,
5: दीदी के
4: हाँ।
5: अब समूह लोन बल दे हुआ 10 दीदी 15 दीदी 1.5 लाख होले 15,000 मिलुआ
4: है
5: 5 लाख होले 10 जना 100 दीदी तो 50,000 मिलुआ है तो अभी हूं चाह दीदी मन और समूह 10 दीदी रहे कि चिड़का चढ़ बोला दीदी आज दे हुए काली दे हुए और एक दीदी धर ले हूं जो जवाबदारी पूरा हूं चो ऊपरे आए
4: है
5: हूं दीदी पटाए दे तो नुकसान उनके आए और नहीं पटाए तो फिर लेट होले ब्याज बोले आए उनके एकला भरपाई करू और 10 दीदी ने धर ले का आए 10 दीदी चो बोले सब 10 जन के झेलुक लागू है एक
4: हाँ,
5: दीदी
4: हाँ,
5: चो
4: एक हाँ,
5: हाँ?
4: आए ची और एक दीदी नहीं पढ़ा लगे सफाई मिशन मतलब हाँ, पढ़ा लागे ची होता
5: करुक लागू है
4: आए ची और तो दीदी ये सांग की जैसा अंतु जो पहले बोल बोली इसके चार पापड़ जन बनाते तो काम आए ये चो जन बिक्री भाजरी कसन करू हाज जाल घरे ये बात का बज हाट बाजार बुला दी
5: नहीं हाट बाजार ने नहीं बुलाऊ घर ले आर्डर हुआ
4: अच्छा
5: घर ले बल नहीं हुआ दीदी मन सर मन बल नहीं हुआ
4: हम
5: चो बिजली आप इच्छो सर नहीं हुआ जन चो सर मन नहीं हुआ हम चो बैंक चो सर मन बोले
4: अच्छा
5: बस आर्डर दिखवा तम ने उन दे हुआ
4: अरे
5: ता जगदलपुर ने बोले हुआ है सामान
4: अच्छा
5: ट्राइबल टोकनी चुना हम चो बस्तर ये सब मन ने सामान मन आर्डर दे हुआ
4: और
5: हॉस्टल स्कूल मन ने बोले
4: अच्छा
5: ये बात गेनू दे हुआ हूँ तब बोले
4: तो दीदी ये सांग की इतलो अच्छा तुझ काम तो कर सी मानतर चाहे से कि पढ़ा लिखा हिसाब ने कितलो असन पढ़ ले सी जाले
5: मैं
4: हाँ।
5: मैं ज्यादा नहीं पढ़ ले से पहले तो 8 ही पढ़ू रहे
4: हाँ हाँ।
5: फिर जो मतलब मनुख चो
4: हाँ।
5: गुजर ले
4: हाँ हाँ।
5: मैं 10वीं
4: अच्छा चो
5: और 12वीं जो पेपर दी ले मैं
4: अच्छा
5: 10वीं 12वीं जो पेपर दी ले
4: हाँ, हाँ,
5: 12वीं पास आ से
4: अच्छा हाँ, हाँ, तो अच्छा है तक इतलो स्थिति ले तू गुजर ली
5: हाँ,
4: सी तो उठान ले बोले तू
5: हाँ, नहीं आगे ऐसा रहे
4: हाँ,
5: कि मैं 10-10 रुपया काज बोले खूब परेशान हो ले
4: हाँ, हाँ,
5: मैं दोनों बच्चा के अच्छा पढ़ा ले मोचो बड़े बेटा के मैं
4: सॉफ्टवेयर
5: इंजीनियरिंग करा ले रायपुर ने कर लो मोचो बेटा सॉफ्टवेयर जो काम बल करे से
4: हाँ, हाँ,
5: सॉफ्टवेयर मन बना हुआ है कोडिंग
4: अच्छा,
5: प्लस
4: हाँ,
5: हाँ, नाम ले आ सब
4: अच्छा,
5: सॉफ्टवेयर बीती पिता शहर रहुआ है
4: अच्छा,
5: और गोटो का ऑफिस ने भी मैनेजर बला से ऑफिस के नाम के नहीं जाने से एक हफ्ता होली नानी बेटा बल मोचो लग लो काम ने
4: अच्छा आए दक तू इतलो मशागत कर लीस और तुझे पीला झीला के बल पड़ा लीस तू जितलो बल तुझो जीवना ने जितलो बल घटली ये सब गुड बात के अच्छा सांग लीस और आए ची दक कोनी ची बोले असन रहसो गांव पारा ने महिला हो नहले पुरुष हो कहीं बोले कहीं विपत्ति परेशानी होलो ने हार मानुआत असन दक तुचो गुड बात के लिए आज ही सुन दे जान दे और असन हिसाब ने उनके बल हिम्मत मीरे दे की नाही आम बोल काही करू सकवा बोलते ऐकसन आईची मातर कांची बोल दकसन पुरे विपत्ती इलो ने उनके हार मानतर नो आहे गाव पराज लोग असनी आत की काही विपत्ती परेशानी इलो ने कांची बोले कदम उठावात काही गलत काम करू आत असं करतर नो आहे आम के आमचो जीवना चलातो काचे आमचो पिला झिला के अच्छा बनातो काचे खुदचो हिम्मत होतर असे खुदचो सहारा होतर असे तेबे उन काम अच्छा होक लाय सकेत कसन आज कसन आव तर कितलो अच्छा तुई
5: नहीं मोचो बाबा बोले
4: हाँ हाँ
5: खूब राह दखालो मोके बोले
4: अच्छा
5: जब मैं सब बाट ले निसहाय होले कहीं आसरा नहीं रहे मोके बोले
4: हाँ
5: काय करते मैं बोले हिम्मत हारू रहे एदाई काय करू आय मैं कसन करू दोनों पिला के मैं आगे बढ़ाऊ
4: हाँ हाँ।
5: मैं आपन चो जेवर गहना बल बिकले पढ़ा तो काज पिला जिला के
4: भीतर
5: रह कर ले पाचे हिम्मत बल हारते गेले कसन हाँ, करून हाँ। आ आगे मतलब पीला मन के पढ़ाए दे लिखाए दे फिर हिम्मत मिरली जे चो मन ने कुछ करतो चाह रहा ले
4: हाँ, हाँ।
5: है
4: हाँ।
5: ओके मतलब कोनी ना कोनी बाट ले राह बल
4: मिरुचिया
5: खुद ने हिम्मत होतो रहे
4: आई आए।
5: हिम्मत रहे मोचो ने तो आगे बढ़ ले ची मैं आओ सब बाट ले मतलब सहारा मिरली मोके कि मतलब सांगते गेला कि असन काम कर असन काम कर
4: हाँ, मोचो
5: बाबा बल मोके बोल लो देख बेटी मतलब कई बल काम कर छोटे असन बल काम कर ले
4: हाँ।
5: कोई मतलब गलत नु है
4: हाँ, हाँ।
5: सम्मान जो काम कर करतो

0: भले नानी असन हो
1: हाँ?
0: असन काम करतो राय भले ओके कोनी निहासोत गलत काम नहीं करतो राय गलत काम भले कत की पैसा मेरो मंद सही काम करा छोटे से काम बढ़ रहा पाछे आगे बड़ू खो हुआ और हुनी हुन चो के दखुन बाती मैं सीख ले और छोटे से काम ले चालू कर ले आओ राजी
1: हाँ,
0: मतलब
1: हाँ,
0: मौके बल समूह बांट ले लखपति दीदी ले इनाम बल मिली से एक दिन 10-20 रूपया काम करते रहे
1: हाँ, हाँ,
0: आज ही मैं लखपति दीदी चो गिनती ने मतलब
1: ये सीता और तो के जान सोत बोले जान सोत बोले
0: मौक बोले अबे कितरो अच्छा लागुआ सरमन बल हर चीज ने हाक दे हुआ हाँ जिलाल बोले मौक सरमन साबासी दे हुआ तो कितरो अच्छा लागुआ आय
1: ची दख गीता दीदी इतलो अच्छा तुचो जीवना ने जितलो बोले समस्या मन इली उन सब गोड बात के सांगले सा और नानी असन काम ले तू ये जो लखपति ने गिनाए जाए सी ते सब गोड बात के सर सरा ले सांगले सा ले चुका चे तुके खूबे खूबे जुहार
0: जुहार मोचो बात लेवल सब के जुहार
2: तो बहिन मन आमी अदाय सुनते रहलू बहिन गीता वैष्णव चो गोड बात मन के ने और उन मन के भेंट करते रोत सी आर कश्यप तो बहिन मन आमी सुन लू कि गीता दीदी आप लो जीवना ने कितरो अच्छा ले आमदनी कमाए से ने उसनी आमदनी कमा तो काजे उन आप लो जीवन ने खूबे मेहनत मसागत कर ला और आप लो जीवन ने जितरो बले विपत्ति इली परेशानी इली उतले उबा उन बाती इतरो सुंदर नगत काम के करे से तो बहिन मन गोट बात तो रहे से जी मंतर आमचो लगे अदाय गोटक गीत गोविंद धका दे से तो आले ए गीत की आमी सुनू गीत कुड़ीन मन के पाचे आमी चितामा।

घर द्वार। ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए बेड़ा खाड़ा चुगोट।
3: दादेर भाई होवे मीरी कमाई मीरी चिल्ला का एतेर्रा मीरी चिल्ला राबा बेले एते मेंदा एनोड इन पुत्तर की मीरी चिल्ला राबा राबा लाकाट में नाया मीरी गो बारा मासी बाउर रान मसाला पसलाय इने आन इमिन मीरी पसल कमाय था नुवाटीन पोकेमेन जामले मुन्नी जानूर नेंदिल्लीन ईदिन कमाय तानुक दुई मटिया चिल्लाड मन चेंगाट ता नेंदिल रेचा मिंदा ई कमाइन रेचा एनोड उन्नत की समुलाय पूसा ज्वाला पूसा सदाबार अरका लोहित अरका सुपल मिर्च मिर्च 101 पंत सी 1 फुले ज्योति फुले मुक्ता ज्वार मिर्च 283 एन पी 46 ए शंकर किसमुलाय ए आर सी एच 236 उजाला वित्तील हिसाब ईदिन कामयुग एड़े एकड़ हिसाब ती ओकुतले पत्ती 1.5 किलोग्राम वित्तील लागू राव आरु शंकर किसमूल एरोड 500 ग्राम वित्तील कुबेर राव वी तुरान समय मीरी पासलिन कामय ती पंजिल वादेक तक कामयुग गोंचा नेलिंग ले पत्ती बादम नेलिंग तक आरु जेठा वादेक तुग मांग नेलिंग ले पत्ती पागुन नेलिंग तक उद्यूरान काम चार्ज दनाय मानतेर उदुरान ले डेढ़ नेलिंग मुंदेल वित्तिलिन पाला टिंडुक पाडमो आरु पिट्टेल आ पालेन उदुरानाय डोलिल बनायताना पाला नर्सरी डोली ओग मीटर होसार चेंदु मीटरु लाटी

सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं जसवीर कौर। स्वीकारे मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। जस्टिस चौधरी फिल्म के गाने से हम कर रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन का आगाज़।

0: जस्टिस चौधरी फिल्म से ये था कार्यक्रम श्रोता सुमन का पहला गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत था इंदिवर का, संगीत बप्पी लहरी का। फरमाइश थी आप सबकी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी और बेबी वेदही जोशी। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सुरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। आप है पाकुड़ झारखंड के श्रोता। रघुनाथ नारे, पुष्पताई नारे, श्रीधर और मीनल नारे। आप है सावरगांव के श्रोता। अनूपपुर से इसी गीत को सुनना चाहा था जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट ने। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। आप है घंटा घर चौक खंडवा के श्रोता। अघनपुर धर्मपुरा से डी वनीता नायडू, डी कृष्णा राव, डी ईश्वर राव, डी सोमशेखर नायडू और डी अक्षय प्रांजल नायडू। आप हैं वी पूनम नायडू, मास्टर ऋषु, मास्टर शिवांशु और अभिषेक नायडू। आपने धनोरा जगदलपुर से अपनी फरमाइश भेजी है। मेघापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, सत्यम कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू। आप हैं रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, प्रभाकर जोधले, आरती जोधले। आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ के श्रोता। पहलगाम कश्मीर से पीर जादा मेहरजुद्दीन, कैशरदीन और रजद्दीन। सुभाष चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी। आप हैं भंडार सिवनी कोडागांव के श्रोता। भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला ज्योति और दीपक श्याम कुमार। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान। चांदी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू और रविन्द्र सेन। विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी और आरएसपुरी। आप हैं फतेहगढ़ के श्रोता। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, करण, निहारिका और वंश भत्ता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और जस्वी, इशिका और तेजल यादव। और आप हैं डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिय।
1: स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: श्रोता सुमन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। अगले गीत के लिए हमारे पास पत्र आए हैं आप सभी श्रोताओं के। आप हैं डोंडी लोहारा बालोस से देव शंकर तामुरिया, अजय अल कबीर, राधिका, दुषार तामुरिया, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। गुरामी डोंडी लोहारा बालोस से पीयूष नेताम, जोहत्री बाई, कोमल नेताम।

प्रियंका गौरव मंझर और भागवत वर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनिटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अरजान, फरदीन अब्बासी, अबान और सुहान अब्बासी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा। कालू सिंह बडौले, सीताराम हीरा लाल, तेज सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल और सुमन रमा कंचन। आप हैं सनावत मध्य प्रदेश के श्रोता। सिहावा बेलरगांव के श्रोता है मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु और अंकित देवांगन। कसडोल कटनी से धनंजय देवांगन, अदिति और हरपित देवांगन। सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, सुपरिया अनमोल, धर्म और विशाल मिगलानी। आप हैं मलोट कैंप पंजाब के श्रोता। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, शिवसागर और सुनैना खोबरखेड़े। बंडू लोहार पोपलघट से माया शिवांश, चंद्रकला देवीदास, हरीश कुमार। आप हैं कृष्णा नगर टीवी टावर। नागपुर से नाना डोगरदीवे, रामाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षा और राहुल डोगरदीवे, एम एल यादव, अजय कुमार, अमित, गिरीश, करण यादव और युवान ढाबेश यादव। आप हैं सुभाष पाठ भाटापारा के श्रोता। सांकरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू। बसली गोदाम कैदी बोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका लीलू रेतु और ऋषभ सिंह। आप हैं गणेश पाथड़ी से अम्बादा शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर बैंक और तन्वी गौहर। गांव मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। ग्राम लुहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, इंद्रपाल, रिया रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव। धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हरी, अमिता, जिब्बी, दियानी। आप हैं इंदौर के श्रोता। बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे। आप हैं जिला खंडवा के श्रोता। मानपुर से खुर्दी रोड के श्रोता है विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद। दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानंद, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी। आप हैं जामरून के श्रोता। राजेश कुमार वर्मा, कार्तिक, प्रीति, आर्यन। आप हैं उत्तर प्रदेश के श्रोता। यहीं से मऊनाथ भंजन के श्रोता है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, रितेश कृष्णा और पीहू। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। आप हैं लक्सर हरिद्वार के श्रोता। उत्तम जमधाड़े, स्वरा जमधाड़े, आत्माराम, ललिता आसोले। आप हैं महाराष्ट्र के श्रोता। महाराष्ट्र से ही जिला हिंगोली के श्रोता है शाहजी भोड़के, नंदा, हनुमान सारिका और आरवी तनवी। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, टीवांसी, शालिनी, आरवी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बुक। पटेल नगर बलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। वीट शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल। योगेश गुजराती, रेखा, तुषार, किशु आनंद और अभय गुजराती। इनके साथ नाम है दिलीप गुर्जर का। आप हैं खंडवा के श्रोता। भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह और जगदीश सिंह गिन्नारे। कुशेश्वर प्रसाद, रेणु मिश्रा, मास्टर रुद गुप्ता। आप हैं राजनगर कांति निकेतन से। गांधी चौक से राजनगर के श्रोता है रानी गुप्ता, सोनाली, संगीता, पलक, माधवी, गुनगुन, चुलबुल, रेणु और ज्योति। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए हेमलता और जसपाल के स्वर में रविंद्र जैन का लिखा और स्वरबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है नदिया के पार।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं

0: मीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: श्रोता सुमन का अगला गीत हमने लिया है मेरे जीवन साथी फिल्म से, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की है, बोल समीर के हैं और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, पसंद आप सबकी है। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सबा शेरे, वरूर जामढ़ी से मुकेश कासलेकर और विशाखा बोबड़े, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका, पुष्पराज, पोषण, पंचू और भुवनेश्वर सेन, जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया, कोमल सेन, तोषण कुमार, विनायक और रीना पिंकी सेन, आप है सौगा मगरलोड के श्रोता, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वाडोड़े और चंद्रप्रभा वाडोड़े, राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा, तुलसी, भाग्यलक्ष्मी, ईशा, मनीषा, आनंद, नानू और जया राव, आप है गीदम रोड जगदलपुर के श्रोता। इसी गीत को सुनना चाहा प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक, मुकुल और दिव्यांश धैर्य आराध्या ने, उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से, आप है अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी, शिवाजी चौक राजीव से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, बालोद अकलतरा से दिल हरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, भाटापारा लाल झेरिया, मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, आप है भाटापारा के श्रोता, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र, तेजल साहू, आप है नेहरू नगर भाटापारा से ही, मोहन पारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी और मास्टर मनीष, हटौत बाजार लाहौत कमलनाथ पटेल, समीर पटेल, राकेश कुमार और राजकुमारी पटेल, हटौत बाजार लाहौत के श्रोता, महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद सरकटे, आप है वरुण जौलका से, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, सुषमा सुरोशी, परिधि, मास्टर विठल सुरोशी, निधीश और मायरा सुरोशी, आप है महाराष्ट्र के श्रोता, मुंबई से भावना यादव, अधीश, स्मित और श्यांग एरे, झुमरी तलैया से देव इंगले, दादा इंगोले, देव इंगोले और छकुली इंगोले, अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, आप है पांठर कावड़ा से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ, शाहिना और निवान शर्मा, जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम, निमित और विशाल, प्रिया, दिशानी, नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल और संतोष सिंह, आप है राजनगर मधुबनी बिहार के श्रोता, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता साक्षी, मनन तानिया, सुनीता पिंकेश, आप है इंदौर के श्रोता, रघुनाथपुरा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हीना और हेमलता, शवाना नाज, रिजवान, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदी नाज, आप है जतुका किशनपुर से, और सिराजपुर गणेशपुर से हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, फिरंता साहू, कामेश्वरी, दुलौरीन और प्रीतम, आप है दलचूरा के श्रोता, यहीं से ददुआ साहू, भूरी, रेखा और मोतीलाल साहू, देवेंद्र ताती, राकेश, कुमारी निशा प्रकाश और देवेन, आप है सुपाई साई के श्रोता, पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष, आप है कोलगांव के श्रोता, विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान, आप है कोल्हापुर के श्रोता। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत।

0: देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, आप हैं बुड़गहन के श्रोता। धरसीमा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, छन्नूलाल यादव, अलका अनामिका बलदाऊ, रानू खुशी और प्रवीण साहू, आप हैं रायपुर के श्रोता। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार, किशोर कुमार और झावेंद कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथले, सूरज, सुजला, ज्योति और यांश ठाकुर, संदीप बाढ़े, श्रीकृष्ण बाढ़े, अमूल्य और वैशाली बाढ़े, आप हैं धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र के श्रोता। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, अमित वर्मा, मास्टर समर राज, बेबी आरोही, आप हैं खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप, शेरी बडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार, आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र के श्रोता। शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड, वंदना नगर इंदौर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, संजना परी खर्चे, मालती, स्वाति प्रयाग और गणेश कार्तिक खर्चे, पहारा अहिरवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद, किरण प्रीति और छाया बंछोर, वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ मराठा, संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश और अधीरा इंगले, आप हैं अकुला से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बीमला अनेजा, राजस्थान से शंभू दयाल खटक, बीमला देवी, पूजा खटक, वार्डिंग खेड़ा, पंजाब से मिंटू टॉमन, पिंकी अरोड़ा और आरती अरोड़ा, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, मदनलाल वर्मा, आप हैं फाजिल्का पंजाब के श्रोता। यहीं से गांव हीरावाली के श्रोता हैं सुभाष गोदारा, बीमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, कस्बा नोहर हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज और हिमांशु सुथार, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना और पप्पी खुराना, आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता। तीन महुआ खापरखेड़ा, जिला रायसेन से तुलसी राम साहू, मुकेश कुमार, ममता, हेमंत और आरती साहू, राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू और जगदीश देवांगन, आप हैं इंदिरानगर भंवरपुर के श्रोता। उस्मान खत्री, रिजवान अब्दुल गफार खत्री, आप हैं गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता। ग्राम बावड़पाल दरभा से गणपत बघेल, मनीष बघेल और अनंत बघेल, आप हैं राजस्थान से मनोज सुथार, सोनू और मिस्त्री महेंद्र सुथार, मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कौसर, ग्राम तरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से हरी विलास सिंह तोमर, पलारी से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, लखनलाल देवांगन और ईशान देवांगन, सोनू खान, मोनू और गोलू खान, आप हैं शहडोल मध्य प्रदेश के श्रोता। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश बघेल, आप हैं बुदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता। फतेहपुर यूपी से रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज, अंगद, आयुष, आर्यन, आदर्श और हार्दिक यादव, दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, राजपाल, पंकज, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक, सीमा, मानवी, तन्वी और सुरेश, शिव कोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू, सेन, धर्मेंद्र कुमार, मुकेश, ओम और पिंकी सेन, जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल, पद्मा बाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्विनी, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ, मन की लोरबी से नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर खांडे, और आप हैं रघुनाथपुरा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आप सबकी पसंद पर सुनिए महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना, आवाज मोहम्मद रफी की है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: ये जो चिलमन है

वीर सिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, विकास ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। उमरगांव नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई, उमा शंकर और ठामेश्वरी रागनी साहू। नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश राकेश और रक्षित सावनकर। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या नीलेश और नियति कुमार। यमुनानगर बुलंदशहर से धीरन सोलंकी, सुनीता मौर्य और मून सोलंकी। बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत, राधा देवी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी। फारूक अली खान, फैजी फरहान, फरीन फरहान, फरिया और ताहिरा आप हैं। कस्बा गुन्नौर के श्रोता। मेचका नगरी से भूपेंद्र, पूर्णिमा, निखिल और तरुण दीपनाग। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली छत्री। बन्ने बुजुर्ग पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। हस्ता नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। केशकाल से सुनील यादव, बेबी तनिष्का और नौबत यादव। विश्रामपुरी से प्यारीदास मानिकपुरी, खिलेश, नमिता और डिम्पी मानिकपुरी। फरसगांव से फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। समडीह नवापारा से श्रद्धा गुप्ता, आदिति गुप्ता, राधे, दीपक और अंकु राघव गुप्ता। गांव टूकिया, तहसील श्रीधरी, बालोतरा राजस्थान से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। कृष्ण कुमार डाभी, भूपत, राधा, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाभी। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, ओम प्रकाश, शुभम, अरुण विश्वकर्मा आप हैं उमरिया मध्य प्रदेश के श्रोता। भगवानी राम कार्टे, भावेश, माधुरी देवी कार्टे और गोपिका आप हैं डुमर टोला मंगचुआ बालोद से। मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह आप हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता। संत गडगे बुलढाणा महाराष्ट्र से अनीता गाठोड़े, रमेश गाठोड़े और लोकेश कुमार गाठोड़े। वासुदेव भोदवड़े, माधुरी, आकाश कुमार भोदवड़े आप हैं महाराष्ट्र के श्रोता। निशा यादव, अनूप यादव, आयना यादव, आयन यादव आप हैं हदगाम फतेहपुर यूपी के श्रोता। बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्का नौबत आप हैं केशकाल के श्रोता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्ठा बजाज और साहिल। परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर और कुलदीप कौर आप हैं बठिंडा पंजाब की श्रोता। जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललित और भावना आप हैं खंडवा मध्य प्रदेश की श्रोता। अभिजीत गवहनकर, राही सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश, प्रणीता गवहनकर आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ के श्रोता। बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहनकर, श्वेता, सुमित, वैशाली और धोनी गवहनकर। झूलेलाल चौकचिल्दा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू। हरदेव मिका, बलविंदर, जैतेक, मीका, मीरक आप हैं रोपड़ पंजाब के श्रोता। श्रद्धा, अभय, परमानंद आर्य आप हैं बक्सर के श्रोता। और सोपान ताड़े, विजया, अमोल, सरिता ताड़े आप हैं नांदुरा के श्रोता। वसंत भोजने, सुनंदा, राजू, सोनू भोजने आप हैं नांदुरा के श्रोता। ओम प्रकाश मसिया, खुबेंद्र, सिलोचनी, तुषारिणी, परसा टोला के श्रोता। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा और अनस रेहान आप सबकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह के युगल स्वर में फिल्म लैला का गीत। गीत रचना सावन कुमार की है और तर्ज है उषा खन्ना की।

इसी गीत को सुनना चाहा था अनारकली बाजार। जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक ने, गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर गोलू काकू, जीएस रामगढ़िया, आप हैं करनाल के श्रोता, और सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बेगम इशरत अकरम, रूबीना, नदीम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। तो आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत और कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी जसवीर कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता सुमन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में रिले करेंगे।

0: Metro Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
8: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदितसरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कला और कलाकार। दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

0: तो भाई बहन मन, मैं तो समिया दकुन अमरले और तुम्ही बले समिया दकुन रेडियो कटा बस लासती। तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तोर सपाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं रेला करे से खूबे खूबे जोहार। और रेडियो कटा बसला सपाए नोनी बाबू मन के मोचो बाटले खूबे खूबे मया और खूबे खूबे चुमा बले। तो भाई बहन मन, तुम्ही तो पेज पानी खादला सोती ने और खाउन बाती डंडीक छायने बिसायसा सोती। आजिकाली तो खूबे गाम तप होये से पेज खाउन खाउन आमचो जीव की कंडीक अस्थिर करूँ से ने। पेज संगे कंडीक टमाटर चटनी हो, नहाले तेतर चटनी हो, नहाले आमा चटनी हो, नहाले चापड़ा चटनी हो, कंडिक चाकलो ने आम के खूबे अच्छा लागे से और सुरता करलो ने तो एब्बे खाऊ बाए से ने। तो भाई बहन मन, आजिकाली पेज मंडिया पेज कंडी काम चो देह के खूबे सितर लागे से। कसन बल्ले घाम तो खूबे होए से और आम चो देह ने पानी चो कमी होए से। तो उन्हीं काजे आम के दिन भर खूबे पानी पी तो राय और आम चो देह ने डिहाइड्रेशन बल्लो ने पानी चो कमी नहीं हो बलून बाती आम के पर्याप्त पानी पी तो राय और नींबू पानी बल्ले पी तो राय पेज बल्ले पी तो राय ने। और अधिक कमी होली जाले आम के ORS जो घोल बले बना उन बाती पीतो रहे और आम के पोषण जो खूबे ध्यान संगातो रहे। तो भाई बहन मन, आमी तो जानू से कि आम जो गाँव ने पारा ने कई कलाकार भाई बहन मन रहसोत जोन समिया समिया ने आम जो जीवना ने आम के खूबे संग देसोत ने। और कलाकार भाई बहन मन आप लोग मेहनत करून मसागत करून उन मन जो जन कला होए से उन कला के उन मन और उबायसोत खूबे निकरासोत और नंगत ले नंगत बनातोर कोशिश उन मन करसोत ने। तो भाई बहन मन दका कलाकार भाई बहन मन रलो ने आम चो जीवना तो खूबे उजर होए से। आजिकाली तो बिया टीका मन होए से आमी सब पाए लोग बिया घरे जाऊं से ने। दका गोटक बिया ने बले आम चो कलाकार भाई बहन मन जो खूबे योगदान होए से कि नहीं। जसन आमी दकु से टेंट आउ सुता लगला से ने टेंट मन लगे से। तो टेंट मन बल लगे से और उता हमें बिजली मिस्त्री भाई मन मंच बल योगदान दकु से कुबे नंगत नंगत सुंदर सुंदर लाइट मन आम के दका दे से उता हमें कैटरिंग सर्विस आजिकाली दकु से ने पार्टी ने हमें दकु से बिहा ने। तो उता बरन बरन जो खातो बीती मन बने से ने। तो कैटरिंग सर्विस जो बले हमें दकु से और हमें दकु से कि जो न बिहा होए से उता नाना प्रकार जो डेकोरेशन बल्लो ने सुंदर सुंदर सजावटी सामान मनाम की उता दका दे से। कोनी फुग्गा संग बल सजाए सोत नहाले फूल संग बल सजाए सोत ने उता बले कलाकार भाई बहन मन जो खूबे सहयोग हासे। और हमें दखु से कि जोन बहन मन के मेहंदी लगाऊ के हैसे उन मन बिया घर ने आजकाली मेहंदी बले लगाऊ जाए सोत ने। और बाजा मोरी चो बिना तो बिहा नहीं होए। बाजा मोरी बाजलो ने ची गाँव चो लोग के लगवाई की बिहा होए से और उन आम चो रसम कसम ने बले हासे की बिना बाजा मोरी चो बिहा नहीं होए ने। उसनी आजिकाली मेकअप कर तो लोग मन चो बले कंडी चले से ने। उसनी आमी तक उसे आम चो बड़ी भाई बहन मन चो योगदान बले उता से कसन बल्ले आजिकाली जन बाबा मन रह सोत उन मन बेटी का जे गोटोक पलंग असन बल बनाए देवाए बलून बाती विचार कर सोत। तो बड़ी भाई बहन मन चो बली उता योगदान नाम के दका दे से। और दोड़ी बिचना तो लागे से ची तो दोड़ी बिचना फिर कौन बनावत उन जोन बाउंस कला चो काम कर सोत। तो भाई बहन मन, आमी तो दखूँ से कि मूड बना तो लोग बले आसोत, तेल पेर तो लोग मन बले आसोत ने, हल्दी कूट तो लोग मन बले खूब सहयोग कर सो। तो आम जो जीवना ने काई बले काम होलो ने आम के कलाकार भाई बहन मन जो खूब भे सहयोग मेरे से। कलाकार भाई बहन मन, आप लो कला जो माध्यम ले आप लो विचार के आप लो मन जो गोट के दक लो बीती सीख लो बीती गोट मन के और आप लो मन मन जो जोन कल्पना होए से मन भीतर जोन गोट होए से ने उनके बले उन मन खूब भे सुंदर बना उन बाती दकाए सोत। अले दका कुनी कलाकार बाना बल बनाए सोत ने। बाना बनाए तो समिया ने, नहाले नाच तोर समिया ने, गीत संगीत कविता लिख तोर समिया ने, नाट्य कर तो समिया ने, आप लोग भीतरे जोन आपरा भीतर जोन गोट ऐसे बिल ने मन भीतर छो जोन गोट ऐसे उनके आम छो मन भीतर कितरो चीज चले से होती ने उनके बाहरे एतो का जो ऐसे उन मन छो गोट ने तो उनके कंडी कोन मन मन भीतर जी सजाउन बाती उनके मन भीतर जी कंडी और नंगत बनाउन बाती पांच लोग मन लगे दकाए सोत आजकाली पीला जिला के नहाले बड़े लोग के कला के बढ़ा दे तक अजी को भी जरूरी हुए से आजकल तो डिजिटल जमाना हुए से मानतर जोन कला हुए से उन एकदम निरुआ हुए से ने तो कला जोन हुए से कलाकार आप लोग खूब बेमेहनत करुन बाती आप लोग कला के सपाए लोग लगे निरुआ बनाउन बाती दकाए से तो भाई बहन मन ये तो रली ज्ञान दियान छो गोट तो इच्छो संगे आम छो लगे गुटक जहला से आले ए जहला के आमी सुनुन दको।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: तो भाई बहन मन ए नंगत नंगत गोट मन के तो आमी सुन लू ने तो आमी तो दखू से कि आम जो गांव पाराने बले खूब बे कलाकार भाई बहन मन रसोत और उसनी ची आम जो देश ने बले बड़े बड़े कलाकार मन जन्मला से ने और उन मन आप लोग कला ले आप लोग कला चो सेवा सब पाए देश ने विदेश ने और सब पाए जगह ने दिला से और उन मन जो कला इतरो महान रली की महान रली और महान आसे बले उन मन के आम सपाई लोग खूबे सम्मान करो से ने तो उसने आम चो लगे आजी गोटक कलाकार आसोत उन मन चो आमी गोट गोटाऊँ उन मन चो नाम है कला मंडल सत्य भामा जो मोहिनी मोहिनिया हट्टम बोलो ने गोटक कला हुए से जो नाचा हुए से उन खूबे आकर्षित बल्लो ने आम चो मन के खूबे सुंदर लागे से उसन कला वैसे तो कला मंडलम सत्य भामा बलून उन नृत्य करतो कलाकार आसोत ने तो कला मंडलम सत्य भामा आप लो दीर्जा सुंदर और सरसरा नाचा के लोग खूब पे मन करला उन मन जो आंखी जो जोन पुत्रा वैसे पुत्रा नचातोर ने और हाथ जो खेला तोर हाथ के बल खेला हुआ और आंखी चो पुत्रा के बल नाचा हुआ नहीं तो उन उसन जो नाचा हुए से उन मन के दकुन बाती लोग जो नाथ खूब बे हरीक हो सत और पंडरा रंग चो जोन पटी हुए से उन मन चो ऊपरे और फूबे से उन मन चो नाचा काजे लोग मन जो न दख्तो काजे खूब बे दूर दूर ले लोग हे सोत ने तो उन मन जो नाचा रहे से उनको भी सुंदर रहे से तो उनका जी उन मन के पद्मश्री सम्मान ले बले सम्मानित हमचो देश ने करला। शोकुर बलुन गोटक ठाना से उता कृष्णन नायर और अमिनी नायर अम्मा चो घर ने सत्य भामा चो जन्म होली। और उन मन जोन 12 बरस जो जोन उम्र ने कला मंडलम बलुन बाती गोटक कला संस्थाओं से उता पड़ुक गिला ने उन मन भरतनाट्यम कथक कली मोइनी आट्टम नाचा सीखली। खुद सीखून दूसर मन के बले सिखाला। और 1957 ले धरुन बाती 1992 तक शिक्षिका बले रली बल्लोनी उनुता पढ़ाते बले रली। मोइनिया हट्टम क्षेत्र ने खुबे सम्मान मिरली। असन बल्लो ने उनमन परंपरा और नुआ उवाट के मिसाउन संतुलन बनाला और लोग मन के आप लोग कला के दकाला। उन पहिल महिला उप प्रधानचार्य बनला। आप लोग काम के ईमानदारी ले करला। खुबे ईमानदारी को भी मेहनत मसागत ले उन आप लोग जोन काम रला उके उन करला। आज जो मोइनिया हट्टम जो जोन पोटी और मुंद्री होए से माला मुंद्री जोन होए से उन मन जो खुबे मसागत और खुबे योगदान उता हासे। उन मन जो मसागत खुबे अद्भुत और खुबे मान जो रहे से कला मंडल सत्यभामा कला जो गौरवशाली पहचान हुए से उन मन के

0: और केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बले मिरला और केरलिया नृत्य नाट्य पुरस्कार बले मिरली और केरल कलामंडलम पुरस्कार बले उनमन की मिरली और 2014 ने पद्मश्री सम्मान ले बले उनमन के सम्मानित करला। तो भाई बहन मन ए रली कला मंडलम सत्यभामा जो गोट बात तो उनमन जो गोटली तो अदाय आमचो लगे और गोटक जहाला आसे तो उन जहाला के आमी सुनो।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाय रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
0: तो भाई बहन मन ए नंगत नंगत गोट मन के तो आमी सुन लू ने मानतर आमचो मुंडरा ने गोटक गीत गोविंद बले तका दे से तो आले ए गीत की आमी सुनू फिर गीत कुड़िया मन के आमी चितावा।

कला और कलाकार, ये कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। FM बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी है। उक्त बैंड्स पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। महेश पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे कार्यक्रम घलर में सुनिएगा दयो और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी तनुश्री मोहंती की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में सुनिएगा धनेश्वर दास से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कार्यक्रम खेल पत्रिका में आज रात 9:30 पर विजय कश्यप से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आज रात 10 बजे होगा फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह कल सुबह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में कल सुबह 9 बजे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा तपन बैनर्जी का। श्री रामचरितमानस का गायन होगा सुबह 6:25 पर। स्वर होगा सुरेश वाडकर का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम हुलुली में कल सुबह 6:40 पर सुनिएगा भीमा देव पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे काव्य सरिता में हरेंद्र यादव का कविता पाठ और साथ होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। फिल्म संगीत कल सुबह 9:15 पर। कल सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम आज चौसगा में कल सुबह 10 बजे सुनिएगा पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवक पंडित राम मंडावी का बलवीर सिंह कच्छ से भेंट वार्ता। कल सुबह 10:30 पर कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे झाड़ू राम देवांगन के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11:30 पर कार्यक्रम गुलदस्ता में सुनिएगा गैर फिल्मी गीत और गजलें। फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस कल दोपहर 12 बजे। संयोजक होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम कला और कलाकार कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में। मुरही भाई और साथियों के स्वर में जगार गीत कल शाम 6:35 पर। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी कल शाम 7:30 पर। कल रात 8 बजे कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिएगा नीलू राम और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना में आप सुनेंगे रूपचंद नाग से

0: बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में कल रात 10 बजे आप सुनेंगे लोहंडी गुड़िन पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे कालिदास और साथी। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: रेडियो केंजवाल और मीसो बेकुन सेवा जोहार समसामिक इतेक इदेक दियता कार्यक्रम तसंग नना माखनलाल सोरी केंजवाल और नेंड मावा इत कार्यक्रम गुजरात ता सोमनाथ मंदिर ता फेरे पंडले दिया ता 75 वर्ष पूरे मायले परो आयले सोमनाथ अमृत महोत्सव परो केंद्रित मंता गुजरात ते फेरे पंडले सोमनाथ मंदिर ता 75 वर्ष पूरे मायले बेरते 11 मई दिया सोमनाथ अमृत महोत्सव ता आयोजन आता ईद महोत्सव ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल आतूर ईद बेरा और इत्तोर की सोमनाथ अमृत पर्व चुचाए उन जुना तिहार आयो बल्कि ईद वायना उन हजार वर्षा ले देश तुन प्रेरणा हियाल और केत्तोर की सोमनाथ माने कुन ईद पल्लोता सुरता हिंता की बदे गला राष्ट्र तबे लापी बेरा तक नित्सी मनता जब अद आपुना जड़ी ले जुड़े मासी मनता तिरुमाल मोदी इत्तोर की सोमनाथ मंदिर ते परहिले झंडी भारत ता आस्था ता चीना आंध और लाखों भारतीय ना ओंडाले चेतना ता घोषणा गला आंध और केत्तोर की ईद झंडी अमदही देशुम ता मान गुणगान कियाल और सपोई नागरिक कुन आपुना तिके पिड़ंगाल प्रधानमंत्री इत्तोर की सोमनाथ चुचाय उन मंदिर आयो बल्कि मावा सभ्यता ता उन्द किरिया लहका आंध इदेना मुन्ने लहरे मायाना हजोर समुद्र अनंत काल ता अनुभूति की हालता इदेना लहरा मीकुन वेहालता की तूफान बचोने गला वाई मानेक ना ताकेत औ आत्मबल फेरेले तेजसी अवहना लड़ाई कियाल और केत्तोर की लहरा अचाय वेड़सा ले युपल्लो कुन वेहालता की मानेक ना चेतना कुन लापी बेरले दबाह केवी परो प्रधानमंत्री इत्तोर की सरदार वल्लभ भाई पटेल इत सोमनाथ मंदिर ता फेरे पंडाना बूतो किस इत संदेश हितुर की भारत आपुना मान गुण ता पिछना काजे तैयार मनता वर्षा 1940 ता दशक ते स्वतंत्रता ता भावना गुलाय भारत ते फैले मासोक मत्ता सरदार पटेल लहका महान नेता लोरा तलपति ते स्वतंत्र भारत ता नेव ईर्षोक मत्तोर आदे दिया ओन उन्द पल्लो पक्की डंड की सोक मत्ता की अद आंद सोमनाथ मंदिर ता दुर्दशा 13 नवंबर 1947 दिया सरदार पटेल सोमनाथ ता उजड़े मायले ता मुन्ने नित्सी क्रिया की तूर की सोमनाथ ना फेरे पंडा न बूतो मूर की आयाल वो ना ईद क्रिया ले गुजरात बल्कि गुलाय भारत देश तुन पुना जोशते तचित प्रधानमंत्री इत्तोर की उन हजार वर्षा मुन्ने सोमनाथ परो पहली हमला आसीमत्ता ईद हमला केवालकना मत्ती मत्ता की ओर देशता आत्मतुन होकतूर लेकिन ओना सोच गलत आत और केत्तोर की अदबेरा तोर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न मुन्ने फेरे पाड़ले सोमनाथ मंदिर ता कपाट तरिश्चित 11 मई 1951 दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपुना भाषण ते इंदलेर की सोमनाथ मंदिर दुनिया तुन ईद संदेश हिंता की अद्वितीय भक्ति औ विश्वास तुन बनेटे गला माही परोर और ईद गला इंदलेर की ईद मंदिर ता फेरे पाड़े की तेक सरदार पटेल ता सपना साकार आता सोमनाथ मंदिर ता 75 वर्ष पूरे मायना ता उपलक्ष्य ते छत्तीसगढ़ ता अच्छा जूना पुरातात्विक मंदिर ते सोमनाथ स्वाभिमान पर्वता कार्यक्रम आता यु कार्यक्रम ते मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि और अधिकारी अवतूर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर ता महादेव घाट ते मंदले हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर ते सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ते शामिल आतूर और जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु लोरा संग गुजरात ते मंदले सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़े मास प्रधानमंत्री न संबोधन केंचतू।

आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में।

0: हेलो, गुड इवनिंग संगवारी मन। आप मन सपा झनचो स्वागत आय युवाणी कार्यक्रम ने। मैं आय तुमचो रेडियो दोस्त देवकी सेखिया
1: और मैं आय तुमचो रेडियो दोस्त खेर सागर बघेल। आम्ही दोनों करू से जुहार।
0: हाँ खे सागर,
1: हाँ
0: तू कसन आसीस?
1: मैं तो नंगता से देवकी, और तू सांग तू कसन आसीस?
0: मैं भले नंगता से सागर। मान तर आजिकाली चो समया ने सपाय जन सपाय काम के एके संगे करू खोजे सोत, और यही सब चीज मन के खुद के बले भूलकते जासोत।
1: हाँ देवकी, और केबे केबे तो आमी इतरो अगर बदलू आम कि आम के काम करतो रली, और काम करू से ये सुरता रहनु है ने।
0: हाँ काय काम करू से हुन सुरता रहनु है, दूसर काम करू आम।
1: हाँ,
0: हाँ सागर, ये पहचान बल्लो ने आमचो नाव, आमचो नौकरी, आमचो फिंदा ओड़ा और सोशल मीडिया मन ने आमचो फोटो मन, यही सपाय चीज के पहचान बलुआत कसन?
1: नहीं देवकी, पहचान बल्लो ने आमचो सोच, आमचो व्यवहार, आमचो संस्कार और कर्म ले बनुआ।
0: हाँ सागर, तू ही सत्य गोट बल दिस। इंसान चो असली पहचान हुंचो दिल और व्यवहार ले हुआ है।
1: हाँ, मानतर आजी काली चो लोग आप लो पहचान के बाहरी चीज मन ने खोस सोत।
0: हाँ, और जसन मोल बीतीन कपड़ा, बड़े गाड़ी, बड़े नौकरी, और महंगा कपड़ा, बीतीन फोन, मोबाइल फोन मन, और सोशल मीडिया ने फॉलोवर्स।
1: हाँ दो कि ये सब आय चीज नी मिलो ने लोग अपने आप के कमजोर समझो ने।
0: हाँ, और धीरे धीरे यही सब ले पहचान मुश्किल होते जाए से।
1: हाँ, आज काली सो युवा मन ने ये समस्या बल्ले अधिक दकुक मेरे से।
0: हाँ, कसन बल्लो ने कि आजी काली सपाय जन झटके सफल हो खोजे सोत।
1: हाँ,
0: और चाहे सोत कि हर कोई आम के सहरावत।
1: हाँ, और कई लोग बाहरी ले असन बले दिखावा करुआत कि आमी हरेक उद्यम ने आसू, मात्र भीतर खूबे परेशानी ले रुआत ने।
0: हाँ, फेर बले लोग चो नकल करू नीचा नीचा।
1: हाँ, सोत ने तो संगवारी मन एक ही तो बोलुआत कि हर चमक तो चीज सोना नु है, और हर मुस्कुरा तो चेहरा खुशी नु है ने।
0: हाँ, तु सत्य बोलिस। और आम चो पहचान जितलो ज्यादा मुश्किल होते जाए से उनचो कारण तुलना करतो विती बले होई से।
1: हाँ सत्य गोटा सांगलीस, अगर कोनी दोस्त चो जसन की जन नंबर इले ने आमी खुद के कमजोर समझो ने।
0: हाँ, और कोची नौकरी बले अच्छा रोलो ने आम के लागू आए कि आम चो ने कई कमी आसे होती,
1: कमी आसे
0: जन आमी पीछे आसू और हुन आगे आसे।
1: ठीक ठीक। हाँ देव की मानतर हर इंसान चो जीवन चो यात्रा अलग अलग रहू है कसन ने।
0: हाँ, को की सफलता झटके मिरुआ है और को की बेर लेवल मिरुआ
1: है, और केबे केबे तो आमचो परिवार और समाज बले पहचान चो संकट चो कारण बले बनुआत ने।
0: हाँ सत्य बल सित सागर, कितरी घर मन ने हर घर चो पीला मन के हुंचो इच्छा चो खिलाफ फैसला सुनावात, जसन की उन पीला के चित्रकार उन पसंद आसे।
1: हाँ,
0: और हुंचो घर चो लोग चाहवात की कोनी उन इंजीनियर डॉक्टर बनो। हाँ, पसंद बलते।
1: हाँ, हाँ, और

0: चटनी ने पीला आप लो असली रुचि के भूलकू आए ने
1: हाँ।
0: और धीरे धीरे अंदर ले दुखी रहो आए ने।
1: हाँ, समाज बले अमदिया लोग चो पहचान हुंचो पैसा और काम लेवल करू आए।
0: हाँ, मात्र असली पहचान इंसानियत और व्यवहार ले ही हुआ है।
1: हाँ हाँ, और आमचो भारतीय इतिहास ने बले कई असन लोग मन रला चोन आपलो अलग पहचान बनाला, जसन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
0: हाँ, और देव की हुन मन साधारण परिवार ले निकरुन भाती पूरी पूरा दुनिया ले आपलो मेहनत और सादगी ले आपलो पहचान बनाला ने।
1: हाँ, और हुन मन के भी दूसरा जसन बनतो कोशिश बल नहीं करला, यही काज तो लोग आजी हुन मन के सम्मान ले याद करुआत।
0: हाँ, देव की और ये गोटक बात आसे जो दखुक मिरुआ कि गांव ले शहर ये तो लोग काजे लोग आपलो भाषा और संस्कृति के लुका हुआ ने।
1: हाँ, अकसन बल्लो ने की हुन मन डरुआत कि लोग आमचो मजाक उड़ा दे, यही काजे लुका हुआ।
0: हाँ, मानतर आमचो संस्कृति ले शर्मातर नो है कसन।
1: हाँ, आपलो भाषा संस्कृति आपलो संस्कार आमचो सबले बड़े पहचान है।
0: पहचान है। हाँ, संगवारी अमन आम के आपलो पहचान बना तो काजे सबले पहिल खुद ले मया कर तो राय कसन ने।
1: हाँ,
0: आपलो
1: खुशी के
0: खुशी के पहचान
1: पहचान
0: तो राय ने और दूसरा चो नकल नहीं कर तो राय और आप लो गलती ले ही सीख तो राय कसन
1: हाँ, यही
0: ने।
1: सब कर लेने
0: हाँ,
1: हम पहचान के रुक सको
0: रुक सको।
1: हाँ। तो संगवारी मन, ये तो रली आजीचो आमचो सामूहिक चर्चा। ये वाले कार्यक्रम ने आमी रेडियो सुनतो दादा दीदी मन और संग जोहरिया मन का जे काय काय आनलू से हुनके जानुआ।
0: हाँ, रेडियो सुन तो संगवारी मन का जे आमी आनलू से शीर्षक गीत सामान्य ज्ञान चुगोट और वार्ता ने।
1: हाँ
0: ठीक, तो आजीचो शीर्षक गीत ने दिल के धरलू से जो आजीचो शीर्षक गीत आए और आजीचो पहिल गीत फिल्म कोई आपसा ले जोन 2005 चो एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म आए। ये थानेश्वर दिला से सोनू निगम और गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया। आलिया सुनू ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: तो संगवारी मन, आज जो शीर्षक गीत जो अगला गीत है फिल्म वांटेड ले, जोन था ने आवाज दिलासोत शान और श्रेया घोषाल, और संगीत और बोल दिलासोत साजिद वाजिद और अरुण बैरव, लिखलासोत आले इया सुनू ए गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो सागर गीत गोविंद सुनते रहले ने सुनुची सुनुक भाईसी हो आरसनी आमी आमचो युवाणी सुनतो संगवारी मन काजे बले आनलू से वार्ता जो नाय बस्तर के युवाओं के लिए स्टार्टअप की संभावनाएं हो और ये वार्ता करला सोत इंदिरा नथानी अले सुनु फिर ये वार्ता के।
3: नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बस्तर के युवाओं के लिए स्टार्टअप की संभावनाओं पर। बदलते समय के साथ रोजगार के स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अब नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगारों और स्टार्टअप भी युवाओं के लिए और युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। बस्तर जैसा क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति, कला, परंपराओं और पर्यटन से समृद्ध है, यहाँ स्टार्टअप के लिए असंख्य अवसर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि और वनोपज पर आधारित स्टार्टअप की। बस्तर देश भर में अपने वनोपज इमली, तिल्ली, चरौटा, सालफल, महुआ, काजू, शहद और कई जैविक उत्पादों के लिए जाना जाता है। यदि युवा इन उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग को अपनाए तो वे न सिर्फ स्थानीय किसानों और संग्राहकों की आय बढ़ा सकते हैं बल्कि खुद के लिए भी एक टिकाऊ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज देश दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बस्तर के जैविक उत्पाद युवाओं को एक मजबूत बाजार उपलब्ध कराते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता की। बस्तर की पहचान उसकी लोक कला, हस्तशिल्प, बेल मेटल, टेराकोटा, लकड़ी की नक्काशी, जनजातीय नृत्य और त्योहारों से है। यहाँ इको टूरिज्म, होम स्टे, टूर गाइडिंग, जनजातीय कला प्रशिक्षण क्षेत्र और प्रशिक्षण केंद्र और स्थानीय कला पर आधारित उत्पादों के ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के माध्यम से युवा अपनी पहचान बना सकते हैं। डिजिटल दुनिया ने आज हर कलाकार और हर क्रिएटर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। इसे बस्तर के युवा शानदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी शिक्षा और कौशल विकास आधारित स्टार्टअप की। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन ट्रेनिंग, भाषा कौशल, कंप्यूटर कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में बस्तर के युवाओं के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। आज के छोटे व्यवसाय और संस्थान सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में युवा डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं, कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड प्रमोशन जैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ खाद्य एवं पेय पदार्थ उद्यमिता जैसे बस्तर के स्वाद और परंपराओं को मिलाकर नए फूड स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, फूड ट्रक या स्थानीय व्यंजनों को पैक्ड फॉर्म में उपलब्ध कराने जैसे मॉडल भी बड़ी संभावनाएं रखते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य जागरूक लोगों के बीच आज पारंपरिक पेय और मिलेट आधारित उत्पादों की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। यह भी युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। सरकार द्वारा भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। स्टार्टअप्स इंडिया, मुद्रा लोन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आजीविका मिशन और महिला उद्यमिता से जुड़ी विशेष योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ने का सही मंच देती हैं। जरूरत है केवल एक आइडिया दृढ़ निश्चय और सीखते रहने की इच्छा की। बस्तर की भूमि सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य और जनजाति संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि अपनी विशिष्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी जानी जाती है। यहाँ का वनवासी जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं वनों में मिलने वाले उत्पादों में से इमली बस्तर की सबसे महत्वपूर्ण वन उपजों में से एक मानी जाती है। बस्तर की इमली पूरे देश में प्रसिद्ध है और युवाओं के लिए यह क्षेत्र आर्थिक अवसरों का बड़ा दरवाजा खोलता है। बस्तर का वन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बस्तर संभाग में इमली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पहाड़ी वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली इमली का स्वाद, उसकी खटास और गुणवत्ता पूरे भारत में अलग पहचानी जाती है। कई गांवों में आदिवासी परिवार इसके संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। हर वर्ष बड़ी मात्रा में इमली बाजारों में आती है, परंतु इसका वास्तविक मूल्य स्थानीय स्तर पर मिलने की बजाय बाहर के व्यापारी ले जाते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करना न सिर्फ आर्थिक लाभ देगा बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर दाम भी दिला सकता है। इमली आधारित प्रोसेसिंग यूनिट युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर इमली प्रोसेसिंग है। इमली को सीधे बेचने की बजाय यदि इसे प्रोसेस करके उत्पाद बनाया जाए तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसमें शामिल उत्पाद इमली का गुदा, इमली की चटनी, इमली का कंसंट्रेट, इमली का जूस बेस, इमली कैंडी, सीडलेस डी सीडेड इमली पैक, इन सभी उत्पादों को मार्केट में भारी मांग है। एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट 5-7 लाख रुपए में शुरू की जा सकती है और उत्पादों की ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केटिंग से बड़े ग्राहक भी जोड़े जा सकते हैं। यह क्षेत्र युवाओं के लिए सबसे अधिक आकर्षक है। इसके फायदे: बिना मिलावट की इमली की मार्केट में भारी मांग, ग्रामीण उत्पादों को शहरों में पसंद किया जाता है, ब्रांडिंग से प्रीमियम रेट मिलता है, सरकार की ट्राइफेड जैसी योजनाएं सहयोग देती हैं। युवाओं के लिए यह कम लागत में शुरू होने वाली और अधिक लाभ देने वाली स्टार्टअप है। इमली बीज आधारित उद्योग अक्सर लोग इमली के बीज को फेंक देते हैं जबकि यही बीज का बड़ा व्यापारिक अवसर है। इमली बीज से बनने वाले उत्पाद इमली का पाउडर, औद्योगिक ब्रांडिंग एजेंट, जूतों और रबर उद्योग में उपयोग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उपयोग। बस्तर में लाखों टन बीज हर साल बिना उपयोग के निकल जाते हैं जो युवाओं के लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं। इमली का संग्रहण, ग्रेडिंग और सप्लाई चेन, अगर कोई युवा उत्पादन नहीं करना चाहता तो भी वह इमली सप्लाई चेन में व्यवसाय शुरू कर सकता है। क्या कर सकते हैं? गांव से सीधे इमली खरीदकर बाजार में बेचना, ग्रेडिंग करके अलग अलग क्वालिटी में पैक करना, होटलों, मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों को सप्लाई करना, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज बिजनेस करना। यह बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि हर साल इमली का व्यापार करोड़ों में होता है। आजकल युवा थीम बेस्ड फूड कॉन्सेप्ट पसंद कर रहे हैं। बस्तर से जुड़े फूड आइटम्स पर आधारित स्टॉल या कैफे अत्यंत सफल हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इमली चटनी वाला हेल्दी ड्रिंक, इमली चटनी आधारित स्नैक्स, इमली जूस, इमली टॉफी, इमली कैंडी। इससे पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। बस्तर की इमली केवल एक वन उपज नहीं बल्कि युवा उद्यमियों के लिए आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। सही योजना, आधुनिक पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोसेसिंग तकनीकी के साथ बस्तर की इमली पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बना सकती है, और यह संभव होगा जब इस दिशा में बस्तर के युवा आगे बढ़ेंगे। इमली की इसी मिठास और खट्टेपन की तरह बस्तर की धरती सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पोषण से भी भरपूर है। इसी धरती ने हमें एक और अनमोल तोहफा दिया है, मिलेट्स, जिसे आप पूरे देश में श्री अन्न कहा जाता है। बस्तर के जंगलों में जितनी विविधता पेड़ों में दिखाई देती है, उतनी ही विविधता अनाजों में भी दिखती है। कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कांगनी जैसे ये मिलेट्स न सिर्फ हमारी पुरानी परंपराओं का हिस्सा है बल्कि आज के समय में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों का नया आधार बन रहे हैं। मिलेट्स सिर्फ अनाज नहीं बल्कि बस्तर के लोगों की जीवन शैली, उनकी मेहनत और उनके प्राकृतिक ज्ञान का आईना है। और आज हम पूरा देश और दुनिया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही है। बस्तर के ये पारंपरिक मिलेट्स पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आइए मिलकर जानते हैं बस्तर के इन पारंपरिक मिलेट्स की खासियत, उनका पोषण मूल्य और कैसे ये हमारे युवाओं के लिए नए स्टार्टअप की अवसर खोल रहे हैं। आज जब दुनिया ग्लूटेन फ्री भोजन और हेल्दी डाइट की ओर बढ़ रही है, तब बस्तर के कोदो और कुटकी जैसे अनाज अपनी खास पहचान बना रहे हैं। कोदो की बात करें तो यह पेट के लिए हल्के डायबिटिक में लाभकारी और फाइबर से भरपूर है। इसे बस्तर में सदियों से रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा रहा है। यहाँ के गांवों में आज भी रागी की रोटी, कुटकी खिचड़ी और सावा का भात रोज बनता है, लेकिन आज इन मिलेट्स की पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। बस्तर के युवाओं के लिए मिलेट्स अब एक मजबूत स्टार्टअप विकल्प बन चुके हैं। मिलेट्स से बनने वाले प्रोडक्ट रागी कुकीज, कोदो कुटकी नूडल्स, मिलेट आटा, रेडी टू कुक खिचड़ी, हेल्दी स्नैक्स, इनकी मार्केट में मांग लगातार बढ़ रही है। बस्तर की महिलाएं भी इनमें पीछे नहीं हैं। स्व सहायता कई समूहों की महिलाएं आज मिलेट्स की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इन्हें स्थानीय मेलों, हाट बाजारों और मिशन योजनाओं में सीधी मदद मिल रही है। बस्तर की पहचान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता या परंपराओं तक सीमित नहीं है। इमली हो या मिलेट्स, यहाँ की हर चीज अपने भीतर एक नई संभावना छुपाए हुए बैठी है, और यही संभावनाएं आज बस्तर के युवाओं के लिए नए नए स्टार्टअप के मांग खोल रही है। अब जरूरत है सिर्फ एक कदम बढ़ाने की, सोच बदलने की और यह समझने की, अवसर बाहर नहीं हमारी मिट्टी में छुपे हुए हैं। बस्तर का भविष्य बस्तर का युवा ही लिखेगा, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने सपनों से, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद।
4: संगवारी मन, ये तो रेली वार्ता जो न विषय रे वार्ता जो बस्तर के युवाओं के लिए स्टार्टअप की संभावना है ने।
2: हाँ।
4: और एक सांगते रहो इंदिरा न था नहीं अच्छा सांगला मस्त स्टार्टअप करतो ने कसम। हाँ। काय काय करतो रे तो अले
2: और गोटोक मतलब असनी आमी संगवारी मन के रेगे सुन तो संगवारी मन के हम सुनाऊं दे गोटोक गीत।
4: हाँ।
2: जोन थाने फिल्म जीनियस ले आए।
4: हाँ।
2: और एक एस वर्दीला से आतिफ असलम।
4: हाँ।
2: और संगीतकार रात हिमेश रेशमिया और गीतकार रात मनोज मुंतसिर।
4: हाँ।
2: अले या फिर सुनो ए गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देवकी, गीत गोविंद होते रहे थे सुनते चरवा बने।
3: हाँ।
2: तो आज आम चमोड़ा ने सामने ज्ञान चो गुड़ बात बुला से उनके बोले संगवारी मन लगाम रहूं कसन।
3: हाँ।
2: ने
3: भारत चो राष्ट्रीय गान जनगण मन आए और एक रविन्द्रनाथ टैगोर लिखुन रला। एक 24 जनवरी 1950 के राष्ट्रीय गान चो रूप ने अपना ला।
2: अच्छा, हाँ हाँ। तो असने ही गोटक छत्तीसगढ़ चो सबले प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट ने।
3: हाँ।
2: तो जलप्रपात आए यहाँ ये बस्तर जिला ने आसे और एक ये भारत चो नियाग्रा बोले बलुआते के।
3: हाँ।
2: बरसात चो मौसम ने ये चो सुंदरता खुबेर हुआ है। खूब सुंदर हुए ने।
3: महात्मा गांधी भारत चो स्वतंत्रता काजे अहिंसा और सत्याग्रह चो मार्ग अपनाला और हुन मन अंग्रेज मंचो खिलाफ कई आंदोलन करला, जसन असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। हुन मंचो नेतृत्व ने देश आजादी दिलातो ने खूबे मुख्य भूमिका निभाउन रला।
2: ठीक। और सोलर सिस्टम ने सबले बड़े ग्रह बृहस्पति बोले आए ने।
3: हाँ। जापान देश के उगतो सूरज चो देश बलुआत कसन। हाँ, बल्लो ने की जापान पूर्व दिशा ने आसे।
2: हाँ।
3: और हुन थाने सबले पहिल सूर्यदेव
2: हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक। तो ये तो रेली ने आज चो ज्ञान ध्यान जो घोट ने।
3: हाँ।
2: तो संगवारी मन अगला गीत आए फिल्म क्या दिल ने कहा ले और 2002 ने ये रिलीज हुन रहे जो। हाँ। एक हिंदी ड्रामा रोमांटिक फिल्म रहे। ये थाने स्वर दिला से उदित नारायण और अलका याग्निक और गीतकार संजय चहल और संगीतकार हिमेश रेशमिया। अलिया सुनू एक गीत के।

अगला गीत है फिल्म दिल का रिश्ता, जोनाथन ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल ने फिल्माया गीला से, और एक ही प्रसिद्ध रोमांटिक गीत है नदीम श्रवण द्वारा रचित ये सदाबहार गीत के अलका याग्निक जो स्वर ने और बोल लिखला सो समीर अली या सुनू ये गीत के।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वीतिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित करेगी। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने आने संकाय में प्रावीण्य सूची में जगह पाए मेधावी विद्यार्थी मन ल 13 ठीन स्वर्ण 7 रजत और 2 ठीन कांस्य पदक दीन। संग्रह 128 शोधार्थी मनला पीएचडी 518 विद्यार्थी मनला स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थी मनला स्नातक के उपाधि देगेस। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल ह विद्यार्थी मनला बधाई देत किहिन के दीक्षांत समारोह छात्र जीवन के एक बहुत बड़ा मौका होते। ये केवल डिग्री पाए के दिन नहीं है बल्कि भविष्य के शुरुआत के प्रतीक है। श्री डे कहा किहिन के आज कृषि परिवर्तन के दौले गुजरत है। किसान और युवा मन लघलो आधुनिक और उन्नत खेती कोती पढ़ना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री है विद्यार्थी मन ले ड्रोन एआई और डिजिटल तकनीक ले खेती ले जोर के किसान और वैज्ञानिक मन के बीच सेतु बने के आह्वान करें। उमन किहिन कि कृषि विश्वविद्यालय है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे है और वैज्ञानिक ढहर ले विकसित नवा फसल किस्म और आधुनिक तकनीक ले किसान मन ला बड़का फायदा मिला थे। समारोह में कृषि मंत्री रामेचा नेताम नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल मौजूद रहीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहले वाकाथन के आयोजन करेगी। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी समाचार वाचक श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा रहीन। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुईं। वाकथन आज बिहनिया लगभग 7 बजे सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन ले शुरू हुई। ये शहर के आने आने रद्दाले होत आकाशवाणी परिसर में ही सिराइस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर है बताएं कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 बच्चर के सफल यादगार बनाए बर करेगे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के संग आकाशवाणी के स्थापना 8 जून 1936 में हुई रही। ये देश के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जौन आने आने भाखा में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण करते। रायगढ़ जिला के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते है। ये उपलब्धि पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिव्यांशु ला फोन करके बधाई दीन है। उमन विश्वास जताइन कि दिव्यांशु भविष्य में घलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश और प्रदेश के नाम रोशन करत रही। उन्हें स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु हकीन के प्रदेशवासी मन के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ही उमल्ला ए शिखर तक पहुंचाए के ऊर्जा दे है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई के केरल तट में पहुंचे के संभावना जताए है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में अवैया 24 घंटा के दौरान कई जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव होए के संभावना नहीं है जबकि 17 मई ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकते है। आज बिहनिया मौसम के मिजाज बदले के सेती राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में तेज हवा के संग तेज वर्षा हुई। एखर ले लोगन मल्ला गर्मी ले कुछ राहत मिलीस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून के नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहले वाकाथन के आयोजन करेगी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानाम् आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ वर्षस्य ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्याम् ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावान् च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हित सम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डले 26,000 वर्षे श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य

0: विदेशमन्त्रिण ब्रूनो रोड्रिग्स पारिल्ला इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रकाशिते सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् स्वास्थ्यं विकास सहभागित्वं क्षमता निर्माणं इत्यादिषु विषयेषु सहयोग सम्बद्धां चर्चां उभौ नेतारौ अकुरुताम्। उभयोः देशयोः विदेश मन्त्रालयोः मध्ये नियमित परामर्शाय सहमति पत्रस्य आदान प्रदानमपि अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। एनटीए इति अभिकरणेन घोषितं यत् 26,000 वर्षस्य नीट यूजी इति चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जून मासस्य 21 दिनांके पुनः आयोजयिष्यते। इतः प्राक् अस्य मासस्य 3 दिनांके आयोजिता परीक्षा कथितेन पेपर लीक इत्यनेन कारणेन निरस्तीकृता आसीत्। अपि च सीबीआई अस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। एनटीए इति अभिकरणेन अभ्यर्थिनां मातापितरौ केवलं एनटीए इत्यस्य आधिकारिकमाध्यमानाम् आश्रयं कर्तुं प्रार्थितम्। अत्रान्तरे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवदत् यत् छात्राः सर्वकारस्य प्राथमिकताः सन्ति, केन्द्रं तेषां विषये संवेदनशीलमस्ति। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितवान्।
1: हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है।
2: आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स डीपली माइंडफुल ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे इन्वेस्ट इन देयर स्टडीज। फॉलोइंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 3rd May, वी वर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट नो जेन्युइन कैंडिडेट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ फेयर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द एजुकेशन माफिया।
1: एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए।
0: शिक्षामन्त्रिणा स्वीकृतं यत् एनटीए संस्थायां निश्चित परिष्काराणाम् आवश्यकता अस्ति, तथा च भविष्ये अनियमिततां निवारयितुं परीक्षा व्यवस्थां सुदृढं कर्तुम् उपायान् वयं करिष्यामः। सः अग्रे अवदत् यत् नीट यूजी परीक्षा विद्यमानस्य ओएमआर आधारितस्य पत्रस्य प्रकारस्य स्थाने आगामिवर्षात् संगणकाधारित परीक्षायाः सीबीटी प्रकारेण संचालिता भविष्यति।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी।
2: द सीबीआई हैज टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन इन द मैटर। ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द रूट इशू विल बी एड्रेस्ड बाय कंडक्टिंग द नीट एग्जामिनेशन इन अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ द करंट ओएमआर बेस्ड सिस्टम।
1: अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
0: भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसु इत्येषः पश्चिम बंगाल राज्यस्य विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्विरोधरूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातः प्रोटेम स्पीकर तपस रॉयस्य निरीक्षणे अस्य पदस्य निर्वाचनम् अभवत्। वसुवर्येण सद्यः एव आयोजिते विधानसभा निर्वाचने कूच बिहार दक्षिणतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिरूपेण प्रथमं विजयं पञ्जीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा अधिकृतरूपेण श्रीवसुवर्यस्य नाम प्रस्तावितम्। सभया ध्वनिमतेन नियुक्तिं तस्य दृढीकृतम्। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारं ग्रहणानन्तरं श्वः प्रथमवारं सिक्किमराज्यं प्रति गमिष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतेः गंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यदिवसोत्सवे भागं भजिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम व्यू पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है महेश पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

आप सुन रहे थे महेश पांडे और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपए और डीजल के दाम 96.57 रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है।
7: मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहे, किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
6: इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले दो दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। उधर गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो पहिया वाहन में 300 रूपये और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1000 रूपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय सचिव ने सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टॉप डैम का भी अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सौंगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया, जहां 1000 से अधिक अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिव ने में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करने और सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय यात्रा में आकाशवाणी भागीदार रहा है और आकाशवाणी ने समय के साथ बदलाव को अपनाया है।
8: आकाशवाणी हेरिटेज संस्थान है भारत के लिए। भारत की राष्ट्रीय यात्रा जो रही है, सांस्कृतिक यात्रा रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये सभी में पार्ट रहा है आकाशवाणी। समय के साथ इस बीच में जो बदलाव आए हैं, आकाशवाणी में भी बदलाव आए हैं, डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है और सभी चीजों में बदलाव को अपनाया है, आत्मसात किया है और आज भी देश की 98% जनता को तक पहुँच है।
6: कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जयभाई और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वाकाथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है।
9: जो वाकाथन एंड मैराथन इसलिए आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया है कि 8 जून 2026 को 90 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी उनका योगदान था।
10: इसमें हम लोग जितना डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेजेस में प्रसारण करते हैं तो कोई मीडिया दुनिया में नहीं करते हैं। जिसका लिपि नहीं है उस भाषा में भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्तर रीजन में गोंडी, हल्बी, बटरी का कोई लिपि नहीं है और आकाशवाणी इज ए मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
11: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
6: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक प्रदान किए। साथ ही 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आह्वान किया। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल उपस्थित थे। रायगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर रॉय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 16 मई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज से पर्यावरण दिवस अभियान शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव प्रयास करने, बदलाव लाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों तथा व्यवहार के महत्व को समझाते हुए शपथ दिलाई। यह अभियान 5 जून तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सुबह मौसम का मिजाज बदलने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
12: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ, राम राम पनकू, राम राम
1: राम राम मिटकी, राम राम
0: अमर लिसने।
1: हाँ मते काय।
0: हाँ, फिर आली फिर हमी दोनों तो जुआर भेट होलू ने। आले हम तो दादा दीदी मनसन बल हम जुआर भेट हो तो एची संगे बस्तर केश्वर कार्यक्रम सुन तो सपाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
1: और मैं पनकू,
0: आमी दोनों करूं से
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। हाँ तो पनकू,
1: हाँ
0: जसन के हम ये जानू ने एबे जेठ चो समय आए ने, एबे काय जेठ करे से ने, काय गरम बल लागे से, दीन दायस ने घाम बल हो से ने, मानतर काय हो से कि आज काली जोन हमी का तो बनू से माटी तो जोन हांडी हो से जे ने,
1: हाँ हाँ हाँ
0: हुन था ने पानी संग उरले काय सुंदर मस्त ठंडा लागे से ने,
1: हाँ
0: शीतर लागे से, हुनके पीउन देले फिर मन मन के जीव के हाय हाय लागे से ने।
1: सत्य बल सिद्ध मिटकी कसन की गरम बेरान नहीं माटी चो हांडी ने पानी संगा ले नहीं नगत रहे से एकदम ठंडा रहे से बढ़िया।
0: हाँ, असने जसन की माटी चो जन हांडी हो से उता तो पानी संगाऊ सच्ची मातर हामी आउर बले जसन पहले चो समयान रहे आउर बल खूबे बर्तन के हामी बावरते रहूने।
1: हाँ
0: जसन की भात रान तो का जो नले साग रान तो का जो नले आउर काई कर तो का जो ने, लेकिन एबे समयाने काय हो से कि हुनी जर्बन प्लास्टिक स्टील मन के भिड़ाला से ने,
1: सत्य बल से।
0: लेकिन काय हो सके हम चो जन माटी चो बर्तन आए हुन आईनी हम चो काजे आईनी खूबे हम चो जीव काजे बले हो नले आम चो बावर तो काजे बले हो हुन सब ले अच्छा है ने।
1: हाँ
0: जसन की हम चो जन माटी चो बर्तन मन हो से हुन तो ले हमी रांदुक बले सकू ने, और जसन हमी हुन थाले रांदू से तो हम के काय बले चो थुन कैल्शियम विटामिन मन बले अगर आगर मिरे से ने।
1: आम चो देह पाए काजे नंगत रहे से माटी चो बर्तन बल्लो ने पतली होए से सागरान तो काजे आम चो
0: हाँ
1: कुंडी होए से
0: हाँ
1: हांडी होए से पानी संगा तो काजे ये मन ने आम के काया खाना बना तो
0: हाँ
1: ये मन काजे नंगत होए से
0: नंगत होए से आरे चीज संगे संगे जसन हमी माटी से जो नसने बटका महाबलू से जेने हुता बल काय हो से हमी दही बल जमा सकू ने।
1: हाँ हाँ
0: हुता बल दही जमा ले काय हो से दही बल एकदम नंगत रहे से ठंडा रहे से और झटके बले जमे से।
1: हाँ
0: ने तो बल तो गोटे आ कि जसन की आमी जोन माटी चो बर्तन मन आए हुन मन के हामी जितलो हामी उपयोग करूं दे और हामी उनके जितलो बावरूं दे हुन मन हम ची काजी अच्छा रहे देने, और जो ने हम पहल समय आने जोन करती हूं से उनके ही हम के बे कर तो रहा उनके नी भूलक तो रहा। तो पन को
1: हाँ
0: ए तो रलिए ज्ञान ध्यान चो गोट मन
1: हाँ।
0: आले हम चो लगे और नगद गोट मन बले आसे आले ए मन के बले हम चो दादा दीदी मन लगे हमें अमराउन दे
1: आले आले अमराउन।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकेन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मोला देने दोर किता अदेन के और सो बेड कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
0: हाँ तो पनकू,
1: हाँ मिटकी,
0: तो ये भी हम ये सुनते रहो नंगत गोट मन के ने।
1: हाँ।
0: मानतर आमचो आज दिन बल्ले आए शुक्रवार ने।
1: हाँ।
0: तो आमचो आज दिन हिसाब ने आमी आज आमचो मुंडरा ने धरु निलुस भेट वार्ता।
1: हाँ हाँ।
0: ये भेट वार्ता है ये मना था आमचो शिल्पकार भाई मन श्री शंकर बघेल
1: और मन के भेट करुआत बलबीर सिंह कच्छ
0: आले। फिर ये भेट वार्ता के बल हम चो दादा दीदी मन लगे अमराऊ और हम ही बले सुनो।
1: आले आले सुनो।
7: सुन तो भाई बहन मन, मैं आज फिर गुटुक जवान लेका स्वरोजगार कई चीज चो शिल्पकार बनो भाई संग गोट बात करने से सब ले आगे तुझो नाव और गाँव चो नाव सांगना।
8: हाँ, मुझे नाम शंकर है, मैं राजूर ले है।
7: अच्छा।
8: हाँ।
7: तो शंकर दक पलन तु कई जिनिस चो काम जैसन की लोहा चो बलिया है।
8: हाँ।
7: रुक चो बलिया है।
8: हाँ।
7: और काई चो है ना
8: रुक चो है और पकना चो बोले।
7: अच्छा, पकना।
8: हाँ,
7: चो बोले।
8: पकना चो बोले।
7: अच्छा, ये बोले तीनों जिनिस चो तुम बोले ने कलाकारी हिसाब ने काम करवा दो। अच्छा, ये काय चीज बना हुआ है ना
8: बोले ने लोहा चो बोले ने जोन बोले है खेती बाड़ी।
7: अच्छा, मतलब ये नांगर फार कड़ी टंगिया ये सब तो आए थी बोले ने गाँव ने जो परंपरा हिसाब ने चले से। अच्छा, तो ये चो संग लोहा ने बोले कई मूर्ति वगैरह बोले बना ऐसी
8: लोहा ने तो मूर्ति वगैरह बना लो नहीं आये देवभूत लोग संग हुआ तो उन्हीं सब ने कौन कौन वगैरह बना बोल पड़ो है।
7: अच्छा। हाँ। बोले सांग लेने बने।
8: हाँ, सांग लेने।
7: अच्छा। हाँ हाँ। बाकी जितलो बोले गांव ने जो खेती बाड़ी ने उपयोग घर वगैरह काम ने जैसे की बारसी आए बीनना है।
8: हाँ, हाँ।
7: खेती बाड़ी हीरा राफा टंगिया कडरी हार ये सब चीज बना हुआ। तो बोले ने तुम चो बोले ने परंपरा पुरकाल चलते है ना।
8: हाँ, पुरकाल है हम चो बाप दादी ले ची काम करते है सर।
7: अच्छा। हाँ, फिर होता है तू सीख लीज बोले।
8: हाँ, हाँ। हाँ,
7: हाँ। अच्छा, जैसे की रुक चो बोले बोलिस थे रुक चो का सामान बना हुआ।
8: रुक चो बोले ने रुक चो मूर्ति पलंग दीवान।
7: अच्छा,
8: ये सब उन्हीं संग संग ये काम बल से को पढ़ ली मगे।
7: अच्छा।
8: खंडी के लोहा काम नहीं उतलो आमदनी नहीं मिलते रहे करो से बोले उतलो नहीं मिले।
7: अच्छा। बोले उन तो मतलब का है कि गांव हिसाब
8: से
7: लोहा भी काम है।
8: हाँ, पेट जीवना टाइप चो।
7: हाँ हाँ, मतलब पैसा कोड़ी हिसाब ने आमदनी उतलो नहीं होए।
8: हाँ, नहीं होए।
7: हाँ, तो हन हिसाब के तो फिर ये लकड़ी चो काम।
8: हाँ, हाँ, लकड़ी चो काम।
7: हाँ, ये ने काय काय चीज बनाया सा जैसे की तुम पलंग वगैरह बोल से सोफा वगैरह ये सब बनाया सा।
8: हाँ हाँ, आगे तो ये मूर्ति भी थी लकड़ी भी थी बनाते रहे छोटे छोटे।
7: अच्छा।
8: अरे शहर बीता मन उन व्यापारी मन धरते रहो तो उनने बोल उतलो फायदा नहीं बोलो तो यार दूसरा तर नीलो टाइप चो होते बोल रहे जबरदस्ती जो बोला मीरे उतला उतलो फायदा बोल उतलो नहीं मिलते रहे तो धीरे धीरे फिर बड़े ही काम से गुक पड़ ले।
7: अच्छा।
8: हाँ।
7: अच्छा, बड़े ही काम।
8: हाँ, बड़े ही काम बोल।
7: हाँ, बड़े ही ने बोले ने ये जो घर चो।
8: हाँ, घर चो जैसे पलंग दीवान सोफा जो बोला ये काम बोले।
7: अच्छा। और ये तो और घर चो जो दरवाजा खिड़की।
8: हाँ, हाँ।
7: ये सब चीज।
8: हाँ, ये सब चीज बना।
7: अच्छा, तो ये चुका तो तू अलग ले कहा सीख पढ़ ली होती ना।
8: हाँ, ये चुका जो हम चो घर ची अचनी आगे ले करते बोल रहे हो उन्हीं मन चो दकुन दकुन फिर उन मन चीज आपने घर करे सो तो ये लोग बोल खिड़ी सीखते सीखते फिर सीखू खोली।
7: अच्छा।
8: दकुन दकुन करते करते

0: फिनिशिंगकाजी ये जैसन कि बना तो बीती जोन औजार है हाँ, रूप हाँ, सामान हाँ, तो ये चो औजार बल्ले काय काय आस जालना पूरा आसे
1: ये चो औजार बल्ले ने ये भी मशीन बीती मन बोल मेरे सागे तो आते चीज सब काम होते रहे ये भी तो एक से एक मशीन मन बोली से
0: हाँ
1: अब बाकी जितलो जरूरत है उतलो तो मशीन बोल नहीं है बड़े बड़े छोटे मोटे आसे ये रेता काट तो बीती और डिजाइन वगैरह निकला तो घिस तो बीती मशीन मन तो आसे जी
0: अच्छा
1: और बाकी बड़े मशीन बोलने नहीं आए
0: अच्छा हाँ छोटे चीज आसे
1: हाँ छोटे मशीन
0: अच्छा बना तो बल्ले का है कि लकड़ी खुद गेन बाद बनाए सास कि दूसर तन जाऊन बती बनाए सास
1: नहीं नहीं मचो दुकान से बे लाइसेंस वगैरह बना ले से
0: अच्छा दुकान से
1: हाँ
0: हाँ
1: तो खुद चो काय तो कर लो रासे तो उन हिसाब ने मके तो मिलता ले लकड़ी घिन पड़ू है
0: हाँ अच्छा
1: हाँ
0: हाँ बल्ले दुकान बल्ले कितलो दिन होली तुझे लाइसेंस वगैरह बना लो
1: ये 2 साल है से
0: 2 साल हो से
1: हाँ
0: अच्छा तो ये लाइसेंस बनात काज काय करू पड़ू है ना
1: ये लाइसेंस का जो उन्हीं डीजन ने जाऊ पड़ू है उताले जोन दुकान हम किराया या खुद चो आए तो उताले नक्शा खसरा ये सब निकरा उन बते जमा करूक पड़ू है
0: अच्छा
1: डिवीजन ने
0: हाँ कौन विभाग से डिवीजन ने
1: ये वन विभाग ने
0: अच्छा
1: ये
0: वन विभाग
1: हाँ
0: अच्छा
1: डिवीजन ऑफिस ने तो उन चो महादेव ने हुन मन देखुआत नक्शा खसरा देखुआत कौन रोड ले बाहर ही आए या भीतरे आ से बोले उन फिर उन मन दखला जल परमिशन दिला जल फिर लाइसेंस बनाऊ दी बात
0: अच्छा बोले हुतायल बने से
1: हाँ उतैली बनाऊ
0: अच्छा बोले कागजात हिसाब ने कहा है खाली नक्शा ही लागे से
1: हाँ नक्शा लागे से वकील दान ले नोटरी वगैरह करे पड़े से
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा वो कहीं फीस बोल लागे सुन चुका जी
1: मतलब फीस तो नहीं लागे उन जो चालान पटा उतरे उन्हें भी दिया 501 रुपया धरुआत
0: हाँ
1: साल ने
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा साल ने 501 रुपया
1: हाँ 501 रुपया
0: अच्छा बाकी नहीं लागे कहीं फीस नहीं लागे
1: नहीं बाकी नहीं लागे
0: अच्छा हाँ। तू बोले ने भी दुकान तुझ तना से तो ये सब चीज तु कहाँ खोली से दुकान ना
1: ये तो तोका पल्ला से
0: अच्छा तोका पाला से
1: हाँ
0: हाँ तो ये सब चीजें भी संगाई से दुकान ने
1: हाँ दुकान ने संगा से लोहा भी तिरुआ है पकना चरुआ है
0: हाँ।
1: लकड़ी भी ती सब चरुआ है
0: असन
1: हाँ
0: अच्छा तो बोले रेट कसन हिसाब रहे ना अलग अलग डिजाइन चो अलग अलग रहे से होती
1: हाँ रेड बोल लेने अलग ही अलग रहे से सब चो
0: अच्छा
1: हाँ
0: दीवान है पलंग है
1: हाँ
0: बोल
1: पलंग है डिजाइन ऊपर है
0: अच्छा
1: कौन तो सस्ता बीती बोल रहे से कौन तो महंगा बीती बोल रहे से
0: हाँ और फिर उन लकड़ी रूकी साहब ने बोल रहे से
1: हाँ
0: होती
1: रूकी साहब ने बोले साहेगंज चौदह ज्यादा कीमत है अब बाकी बोल लेन सस्ता बीती बोल लेन सस्ता बीती बोल बने
0: अच्छा हाँ। तो देख बोले काई बोले जैसन की पलंग है नहीं तो सोफा है
1: हाँ
0: गोटक चीज के पूरा कंप्लीट कर तो काज जैसे मान लो सोफा जी है तो
1: हाँ
0: ये था तू के बनात काज काय काय चीज ने तू खर्चा लागे से ना
1: खर्चा बोल लेने ये ता फेविकोल खिल्ला ये पॉलिश एक लान तो हव नो है
0: हाँ लेबर तो
1: हाँ
0: लागे से
1: लेबर तो लागे से ये सब ने जो है लकड़ी लागे
0: लकड़ी
1: से
0: लागे से
1: लकड़ी ज्यादा पैसे लगू है
0: हाँ अच्छा
1: और एक टन सामान कम से कम दीवान वगैरह हो ले जाए 20-25 हजार जो लकड़ी लगू है
0: हाँ अच्छा
1: हाँ और फिर 1500 रुपया उन खिला पॉलिश फेविकोल ने लगू है
0: अच्छा
1: हाँ और फिर ऐसे लेबर फेबर वो जो पॉलिश वॉलिश करुआ है उनके बोल 2-3 हजार दे पड़ू है
0: हाँ अच्छा तो सफाई मिलान बाती बोले ने खर्चा कितलो सन वैसे तुम छो
1: मिला लेने बोल लेने होने 35 हजार बटा अमरुआ है
0: अच्छा
1: हाँ
0: 35,000 अमरू
1: हाँ
0: हाँ पूरा बना तो खा जाए
1: अब बना तो का जाए
0: अच्छा तू कित दिन ने निबड़े जालना
1: नचनी दो एक दो तीन जन हो लेने
0: हाँ
1: उन 15-20 दिन ने कंप्लीट हुआ है
0: असन
1: हाँ
0: अच्छा तू दक 35,000 बोल लीस ना कितलान लाम ओ सार रहे से जाले
1: उन 6 बाई 6.5 चोरे से
0: अच्छा 6 बाड़ी 6.5
1: हाँ
0: पलंग बोल ली
1: हाँ दीवान
0: दीवान
1: हाँ
0: अच्छा फिर बिकतरल फिर कसन बिकसास ना
1: बिकते रह
0: 35
1: लेने उन्हीं 40-42 ऐसे आए उन 5-6 हजार जो नाम काम करो से उन्हीं भी पैसा बचू है
0: असन
1: हाँ
0: अच्छा हाँ तो बलन हर समय मतलब तुम चलो आर्डर एते रहे से बना तो काजे ना
1: हाँ कौन तो बेरा ही हुआ ये भी तो बरसात नहीं हुई ना ये खिंडिक सीजन आ से गुन नहीं हुआ है ये भी तो शादी बिया चो चले से
0: चल
1: गुन हाँ खिंडिक आर्डर मन
0: अच्छा
1: ये हुआ है
0: हाँ हाँ
1: बरसात बेरा तो काम बंद हुआ है
0: अच्छा हाँ हाँ
1: बरसात ने उतलो लकड़ी ऐसे निकाले तो बोल पानी फूल रुआ है कहे कहे दुनिया भर चो बोलवा सामने भी था ग्राहक ने
0: हाँ उन तो ऐसी
1: हाँ
0: हाँ हाँ आर जैसे कि पखना चो बल्लिस पखना चो का
1: हाँ
0: चीज बनाऊ

0: पगनाचो असली देवभूत
1: अच्छा मूर्ति
0: गुड़ी उड़ी मंतन काजे
1: हाँ तो मूर्ति बना तो काजे गोटो अलग किस्म से पखना रह से बेना
0: हाउ हाउ
1: काय जोन कड़ी पखना बस कौन
0: हाउ
1: से
0: हाउ
1: रह
0: हाउ हनी बीते उन चिकना टाइप से रुआ है
1: हाँ हाँ
0: और कोनी कोनी हार्ड बोल रुआ है कौन तो मुलायम बोल रुआ
1: मुलायम
0: है
1: हाँ
0: हाउ
1: हाँ अच्छा
0: उन बीते यारा पुर बाहर रसन बीते बोल मीरू है नाला ने
1: हाँ हाँ
0: उन
1: अच्छा
0: बीत पगना
1: हाँ हाँ
0: अरे बट उन मिचना रहे कही कहे जले हुन डोंगरी थे आने बोला
1: अच्छा तो तुम के बाहर ही ले आनु पड़े सुन बाटले
0: हाँ जोन की जरूरत है हुनी मन धरो नहीं बात
1: अच्छा धरुन बात ऐसे
0: धरुन बाती बात
1: अच्छा हाँ
0: हाँ
1: हाँ तो उन मन जसन बीती सांगले उसन भी तुम
0: हाँ
1: बनाओ दे सर
0: हाँ
1: अच्छा हाँ हाँ तो चुका तो ज्यादा मेहनत बल नहीं धरा ससन लागे ना मेहनत पैसा वगैरह
0: हाँ उन आप लोग मन ही चांदी बात
1: आप लोग मानी
0: हाँ
1: चाहना
0: उन
1: अच्छा
0: देवती सब भी थी दोनों उन कपड़ा लता रुचि पति
1: हाँ हाँ
0: उन ये सब बनाऊं दी बात
1: अच्छा हाँ हाँ उन आप लोग हिसाब में
0: हाँ
1: हाँ बोले काई मोल भाव नो
0: हाँ
1: आए
0: नो
1: बोले
0: आए नो आए हाँ
1: हाँ तो बोले तू चो बोलते रहने लोहा चो काम आरु लकड़ी चो काम
0: हाँ
1: ज्यादा किनिक रोजगार हिसाब ने वैसे बोले
0: हाँ
1: हाँ
0: अब पकना भी थी बल्ले ना उन जन के जरूरत आसे का है उन उधर लाए की बात मनात कर
1: तो ये तुझे दुकान ने बल्ले तुझे संग और किस जाना सन आसोतना काम करते लोग
0: मच्छर संग बल्ले ने बे एक लाया से आराम था ने लेका मना सच्ची छोटे छोटे
1: हाँ हाँ
0: उन मन बोल कर लग हुआ
1: अच्छा हाँ
0: हाँ
1: हाँ तो ज्यादा काम होले फिर और बोलती यार
0: हाँ
1: किसी
0: हाँ और बोलती है रुक पड़ुआ है खेड़ की ज्यादा काम बढ़ लेने
1: अच्छा
0: काम नहीं आए तो फालतू एक्स्ट्रा बोल संग
1: हाँ उन तो
0: काम
1: आए सी
0: हाँ
1: दक शंकर ये चो का जो कहीं पैसा कोड़ी बोल कहीं सरकार बाटले मदद धर लीज ना
0: नहीं नहीं नहीं धर ले
1: नहीं धर ली से
0: नहीं
1: बोले तू तू चो खुद चो पूंजी ने
0: हाँ खुद चुप पूंजी
1: अच्छा
0: अब बैंक ने बोले जाऊ रहे तो आज होगा कल होगा बोलन बोलू नसनी असनी
1: हाँ
0: आए थोली मैं जाऊँ जाऊँ नस कठोले
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले कोशिश करूँ दखलीस
0: हाँ
1: बोले
0: कोशिश करूँ दगले
1: अच्छा बोले मान लो पैसा वगैरह मेरे लेने ज्यादा मात्रा में तो चुकाए बना तो बड़ा तो भी हिसाब आज जाल ना
0: बड़ा तो बल लेने मके भी उन्हें लकड़ी बीतिन बड़ा तोरा से
1: अच्छा लकड़ी भी तो
0: हाँ ये भी तो
1: हाँ
0: लकड़ी खूब ज्यादा महंगा बोली से बस पूंजी टाइप जो होनी है लकड़ी मेन चीज लकड़ी है
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो यही चीज की कहने बड़ा से बोले
0: हाँ
1: हाँ तो ये दुकान तू जो खुद चुआ है कि कहीं किराया धर ले से
0: नहीं दुकान मुझ खुद चुनो है किराया हम धर ले से हाँ
1: किराए ने अच्छा हाँ। तो बल्ले ने ये भी जैसन की रोजगार हिसाब ने मिले तुझे जो आमदनी हिसाब ने है तो चु पूछो पूरा जीवन काज हो से ना
0: वैसे अभी नया नया तूतलो जानुक नहीं होली से
1: नहीं हाँ
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ कितलो फायदा होए से कि घाटा होए से बस
1: हाँ
0: खाऊं से पीऊं से नहीं बीती दगा दे
1: आसन
0: से
1: अच्छा
0: और जोन
1: हाँ
0: फायदा और घाटा तो नहीं दगा दिली पूरे
1: हाँ
0: नया नया पता ही नहीं चले से
1: अच्छा
0: लेकिन खिड़क परेशानी जाए से
1: हाँ परेशानी बोल
0: ये
1: लेने
0: पूंजी ना लोग
1: अच्छा
0: आजे
1: पूंजी ना लो काजे
0: हाँ
1: हाँ। तो दक्कस ने कोशिश कर ली जाल दे तो कभी न कभी मेरे को ले सके
0: हाँ
1: दे
0: कोशिश कर लें कभी ना कभी तो हो दिमाग बोल सोच में है
1: हाँ क्योंकि बैंक ताने बोले काय की तुझे दुकान चो जो कसन चले से ये
0: हाँ
1: सब चीज बोले भीतरे भीतरे पता बोल लगाए सो
0: हाँ लगाए से तो थी फोटो फाटी
1: हाँ
0: खींचू नीला से मैनेजर में
1: हाँ तो धीरे धीरे मतलब कोशिश करते रहे इस बल्ले ने
0: हाँ
1: मेरे कितलो सन पैसा काजे बल्ले तू हिसाब बनाल से चाले
0: मैं 2-2.5 लाख का जो बोल रहे हैं
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा बल्ले नुन मन देवन दे बल्ला से राजी होला से ने
0: हाँ राजी रोहत का पहले शुरू में 1 लाख 1.5 लाख तक देंगे बोल रोहत
1: हाँ अच्छा
0: हाँ
1: हाँ बल्ले ने खिनिक बल पैसा मदद मिल ली जाले बोले
0: हाँ
1: तू चो काम की खिनिक अच्छा बड़ा से
0: हाँ
1: आगे
0: बड़ा
1: ने
0: दे ऐसा टाइप से सोचे हैं
1: असन अच्छा पढ़ा लिखा हिसाब ने कितलो पढ़ून छाण ली जाल ना
0: पढ़ाई बोल लेन मैं उन्हें 8वीं पास कर ले हाँ
1: अच्छा उतलन बातें छाण ली सार
0: छाण ले
1: फिर
0: हाँ
1: घर चो जोन परंपरा हुनर चलते रहे
0: हाँ उस स्थिति बोल आगे खूब खराब बोल रहे
1: हाँ
0: उन्हें पढ़ाई बोल कर रुक नहीं सकलू
1: अच्छा
0: 9वीं पढ़ते रहे 9वीं में पढ़ाई बंद हो ले
1: अच्छा तो बल्ले ने दक ये भी तुई तुम चो जोन कला है बोलू बे घर चो जोन कला है उनके आगे तुई बड़ा ऐसी बोलू बे ये बोल गोटोक रोजगार ची
0: हाँ
1: आए कि
0: रोजगार
1: ना
0: है हाँ
1: हाँ तो अलना शंकर बघेल तुझ संगीत लो अच्छा तुझ जोन कलाकृति बना तो गोट बात होली आल खूब खूब जुआर ना
0: जुआ
1: जो
0: जुआ
2: हाँ तो पन को ए
1: हाँ
2: भेट घाट तो हम ही सुन लू ने
1: हाँ
2: मानतर का हो से घड़ी बार तो दख लो ने हम तो जातो समिया बले हो से ने
1: हाँ
2: आले मैं मोड़ा गडरा के शक लेन दे तू फिर विदा धर
1: हाँ तो बस्तर के स्वर
3: कार्यक्रम सुनतो जमाए गांव

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: जुहार पणकू जुहार
1: जुहार मिटकी जुहार आले मरलीस ने
0: हा मरले काय
1: तो क्यों लीलीस
0: ए दे बाटले आसे
1: तो आले आम्ही भेट तो होलू
0: हाँ
1: तो दादा दीदी बोल भेट करूँ
0: हाँ तो एची संगे संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सपाय गांवकारी दादा दीदी और सियान सजन संग जहरिया संगवारी मन के मैं मिटके
1: और मैं पनकू
0: आमी दोनों करूं से जुहार मंतर पनकू
1: हाँ
0: हम तो गांवकारी दादा दीदी सियान सजन मन संग तो हमें भेट घाट हो नहीं
1: हाँ।
0: मंतर का है कि हम के पीला मन बल ठाकुर असोत
1: हाँ हाँ।
0: तो कसन मन के बल भूख खुवायता नहीं तो रेडियो कटा कटा बसलो सपाय नानी नानी पीला मन के बले हमी दोनों चोबाटले खूबे खूबे मया ने
1: हाँ तो देख पीला मन के बल भेट कर लीस
0: हाँ।
1: दादा दीदी बल भेट कर लीस
0: हाँ का
1: तो हुन मन तो हम चो नुआ नुआ गोट मन के सुन तो काजी लासोत
0: हाँ
1: ताकुन रलासोत
0: हाँ का हो चुके कि हम क्या नहीं रोजे समय ही साहब ने हम चो दादा दीदी मन ठाकुर रसोत नहीं तो जैसन कि हम रोजे दिना काई ना काई ज्ञान चो घोट गीत गोविंद के धरू ना मुरगाऊ चिन्हे
1: हाँ, हाँ।
0: तो आले फिर आज तुझे मुंडरा ने बले खूबे गोट मन दिखा दे से आले फिर एक बले मुर कर
1: हाँ तो ये देख आज गांव ने आमी कहन करू से कि गाय पोसू से
0: हाँ
1: और आमी नांगर का जे बैला बल पोसू से भैंसा बल पोसू से
0: हाँ सत्य
1: मानतर आम के नहीं ए धंधा कर तो काजे गाय ले आम के दूध चाहिए
0: हाँ दूध बलो ने गोरस बल तो बीती हुए से नहीं
1: हाँ
0: और जैसन कि हमी तो जोन हम चो पशु जनावर मना थुन मन के हमी पोसो चिने मानतर जोन हम के गोरस दय सो थुन गोरस ले काय हो से हमी खिंड आदक आमदनी बल निकर सकू से नहीं
1: तो काय है गोरस गोरस हम चो कमानी काजी खूब नंगत हो से
0: हाँ और जैसन कि हमी कमा तो काजी हम के उन बाढ़ती काजी हुन हो से ची मातर सबले जरूरी ए आए पन को कि जैसन कि चुचाई गोरस ने दूध दय से बल्ले उन गाय ने गोरस दय से बल्ले ची नहीं हो मातर
1: हाँ,
0: ने
1: सत्य बल
0: मातर का है कि जोन हमें जोन गाय के हमी पोसू से उन गाय के हम के लेख बल करुक लागे से नहीं
1: हाँ, हाँ, कि गाय कसना से
0: हाँ,
1: हम बीमार का नहीं है
0: हाँ,
1: कि उन हम चो गांव दियात ने रुक सके से
0: हाँ जैसन कि हम का हो से हम चो के भी हम चो गांव पर बैठ के भी सीत आए कि पर्स आए कि के भी जेट आए कि काय आए नहीं तो ऐ काज का है कि जैसन कि हमी जैसन पोस्ट तो हमी शुरू करूं से जो गोरस दे तो गाय मन के आए हुन मन के आए सबले पहले हम के आए नहीं कसन गाय के हमी आन ले हुन कितलो अनगर गोरस दे दे और कितलो हुन के हमी हुन चोले गोरस मिरे दे हम के और जैसन कि हुन चो चारा भूसा बल जो हो से हुन हम के कितलो हुन के खुआ तो रहा कितलो काय आए ये सब बल हम के जानुक लाए पड़े से पहले ने
1: हाँ सत्य बल से कसन की आम चो रतो हिसाब ने नहीं कोनी बल गाय आम चो गांव देहात ने रोक लाई सको
0: हाँ
1: हाइब्रिड भी तीमन खिंडी कम रस होत
0: हाँ जब मानतर जैसन कि जो देसी गाय मन आत ने हुन मन का है कि हुन मन के खिंडी नी बावर लेबल हो से
1: हाँ।
0: मानतर जो ने भी जो गाय मन आस हो जो ये भी नया नया नस्ल बल तो बीती आए ने हुन मन के

0: કે ખુલમાં કે કેડિક લેક કરુક લાગે છે.
1: હા સત્ય બલસિત અર કસન આય કે આમ કે નહીં દખુક લાગે છે કે ઉન બીમાર સે માર જબ કે કાઈ નહીં ધરે ઉનકે
0: હાઉ
1: ઉન મચો જગ સાફ સંગક લાગે છે
0: હાઉ જસન કે ઓર હમી જસન કે કહી લે અગર હમી પશુ કે આનુ સે બલે ને ગાય મન કે ઘેરન ભાતી બલે તો ઉન કે હમી પહેલે ઉન કે ધ્યાન દેતો રાય કે હમ કે કસન નસ્લ કે આન લો ને ઉન કે હમી કે ઉન કિતલો गोरज दे दे नहीं और उन कसन चारा खावा है और हम के कितलो चारा उनके खुआ तो रहा है और हम चले हम के कितलो पैसा होता लगाऊ के लागे से और हम ही जो उन गोरज दे दे हम चले हम के कितलो लाभ मिले से.
1: हाँ और असन मैं बल जाने से कि नहीं ए, हुन जो गाय के हमें आनू से नाले नाले और बल पशु जानवर हो सो जो बल आनू से नहीं हमें गोरज दे तो काजे
0: हाँ.
1: तो हम जो थन कितलो नंगता से हुन बल दक्षोत लोग
0: હાઉ કાય કે બલ તો બીતી જોન હોય છે હુન મંચો જો દેહ પાયા હુન મંચો શરીર હુન મંચો જોન આકાર બલ તો બીતી હોય છે ને જોન એબે હમચો પડતો હિસાબ ને બોલું છે જે હામી ને જે ને બેચો સમયા ને જોન ચલે છે એ સબ કે બલે હમ કે કાય કે સપા ચીજ કે હમ કે ધ્યાન દેવું લાગે છે માતર પણ કુ એ તો રેલી આમચો જ્ઞાન છો ગોઠ મન ને અસને આમચો લગે આઉર નંગત ગોઠ મન બલે આશે આલે એક બલે હમચો દાદા દીદી મન કે
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
4: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है. अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं. ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि ₹1,000 से ₹2,499 तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था. ₹2,500 से लेकर ₹7,499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है. इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है. लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे. 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा.
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूताते वेंड मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़.
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
0: हाँ तो पनकु
1: हाँ
0: नगद गोट मन के तो सुन लू ने
1: हाँ
0: असने आम चो लगे आसे गोटो कामचो मोंडरा ने नाटक
1: हल्दी नाटक.
0: हाँ ये नाटक आय गरीब चो गाय आले ए नाटक के हमी सुनो पाचे हमी था कौन कौन आजाद फिर चितामा.
1: हाँ आल ठीक.

0: ए लक्ष्मी लक्ष्मी
1: कहाँ के नहीं बोले से
2: काय आए हो ये ता है तो आसी आले काय आए सांगा
0: ए देरे
2: हाँ
0: मैं विचार करते रहे
2: काय विचार करते रला
0: आमी रोजे दिना ये ता हुता कुली भूती करून खातो लोग कहीं धंधा पानी चो वाट कर लो नो होती नहीं
2: होई काय मानतर असन काय धंधा

0: नि हो इसी जे के आमचो असन गरीब लोग बोले को रुक सकोत
1: हुनक तुम्हें विचार करें से रे काय करो बोलते
0: ए दे सुन लास असन धंधा हो जे बाढ़ते ची जाओ काई घटी होता नी हो सुन लास
1: हो जाले काई नगद विचार करूं चे काई बले करवा काय काजे की बड़े बड़े ज्ञानी मन बले बल्ला से आगे काम करून पाछे पछतातोर नगत नुहाय मने
0: हाव हाव सुनी तो मैं बोलने से खिंडिक आउर बोले कोनी कोनी गांव कारी मन संगे पूछ पचारा करा तेबे तो होय दे
1: हो सत्य बोलीस गांव ने बोले कोनी जानकार माने के पूछुक लागे दे आले सांग काय रानलीस जाले
0: हुने भेंडा झोर तो आए हो चैती दीदी जो बाड़ी ले टूटाओ ना नून रही उनके उखड़ाउन संगाउन दिले से और काय के रांधु आए था
1: आमचो लगे तो बाड़ी खिड़ी बले निहाय रे ठोटिया घरे रतो लोग काय करवाता
0: एदे सुन लास
1: हाँ आले
0: आमचो लगे बले होय दे तुम्ही फिकिर काय काज करे सास आले उठा हाथ धोवा
1: सत्य आय रे आले काय हो जीवना तो नगद चले से चे दुई पैसा खाऊन बले दुई पैसा बचाऊन बले चलू से हाँ काली और काली तू के पैसा देऊ रले उनके बैंक ने जमा कर लीस की नहीं
0: हाँ आज कर ले जानू
1: हाँ
0: जमा मिसाउन कितरो होली पासबुक ने देखो हास आगे भात कहा था पासबुक के देखा
1: आलदेश ये भी पासबुक के देख तो जरूरत नहीं आए ये भी 20,000 मा हो तो राय आए भी आलदेश भी भात साग देश
0: हाँ हाँ ये देख निकराउन दिले से
1: आलान आना आना हाँ।

0: एना सुंदर, कहाँ जासिस ना? राम राम।
1: राम राम, राम राम ना, यही बाटे जाते रहे, तू ही कहाँ जासिस ना?
0: मैं गांव चो मास्टर लगे जाते रहे ना।
1: मास्टर बल्ले पीला मन के पड़ा हुआ है, हुनी गुरुजी लगे
0: होए ना, हुंची लगे तो जाते रहे।
1: हाँ, मंत्र गुरची लगे तू ही काय काजे काय काम पड़ ली ना?
0: असनी खिनिक समय निकराउन केबे केबे जाते रहे से ना। हुन असा ना है, कोनी बले ज्ञानकारी लोग मन लगे दंडिक बसलो ने ज्ञान चो दुई पद सिखुक मीरे से ना, हुनी काजे में जाए से।
1: असन
0: हो
1: उसन चाले, मैं बोले एवं ना मक बल्ले से काय काय गोठे आवास हस जाले, उनके मैं बोले सुनम दखें दे।
0: हाल जानू जाऊं ने?
1: हाल जाऊं।
0: अरे तू बस मोचो साइकिल ले पाट बाटे।
1: हाँ हाँ, अल बस है जाऊं, अल बस ले जाऊं।
0: हाल हाल जाऊं।

0: गुरुजी, ए गुरुजी,
1: ए आओ आओ लेखन, आओ भीतर आओ,
0: आओ ना सुंदर, आओ आओ आओ। राम राम गुरुजी।
1: हाँ राम राम ना, ये आइया। हाँ ये कौन है?
0: ये सुंदर है गुरुजी, पहले पारा ने चुघर आसे।
2: राम राम गुरुजी।
1: हाँ राम राम राम राम, आले या बस आए लगे।
0: हाँ बस नु सुंदर।
1: हाँ
0: तू हुन पाट गुरुजी ने बस। हाँ। मैं ये बाटे बसे से।
2: हाँ ठीक है ठीक।
1: हाँ आले सांगा काय हाल चाल है भी?
0: काय हाल चाल है ता गुरुजी, मैं ये ते रहे हैं बाटे भेट ले सुंदर की। मैं बोले आंदे बोल तो के एक बोले धरू नाल ले से।
1: हाँ अच्छा कर लीस ना, ये लेखन तो कहीं ना कहीं नंगत गोट के रोजे दिन सुनती चिरू है। मान तो आज ही सुंदर बल संगे इलो से।
2: हाँ,
1: आज ही काय गोट के सुनते हो तुम चे विचार सांगू दका।
0: कोनी बोले महापुरुष चे गोट के सांगलो ने नंगत होती गुरुजी ने।
2: हाँ, गुरुजी हाँ होनी तो।
1: उसन जाले सोना। मैं महात्मा गांधी बल्ले ने गांधी बाबा चे गोट के सांगे से ध्यान देऊन सोना।
2: अच्छा
1: कोनी बोले महापुरुष मन के हमें दखुन से जाले हुन मन ले काई ना काई नंगत गोट जानुक और समझुक मीरे से।
2: मीरे से मीरे से मीरे से।
1: गांधी बाबा सत धर्म ने चल तो बीता महापुरुष रला
2: रला।
1: हुन मन खुबे पढ़ा लिखा रला तेबले बले असनी रयत चो गोट के समझते रला। हुन मन सात्विक आहार बल्ल ने नंगत आहार के खाते रला।
2: अच्छा
1: बल्ल ने मांस नहीं खावत मंद नहीं खावत

0: गोरस पिउते रहला।
1: अच्छा,
0: हुन बोले बोकडीचो गोरस।
1: हेते ना गांधी बाबा बोकडीचो गोरस पिउते रहला। मैं तो नहीं जानी,
2: मैं बोले नहीं जानते रहे।
0: हो गांधी बाबा बोकडीचो गोरस के पिउते रहला। आज ही हमके गांधी बाबा चो विचार ने चल तो रहे, बल्ले दख तो रहे कि गांव ने पारा ने लोग बाग मन निसापानी करे सर। हमी हुन मन के ये गोट के समझाऊं कि हमके गांधी बाबा चो विचार के मान तो रहे और फोका निसापानी चो फांदा के छानून दे तो रहे।
1: सत्य गोट के
2: सत्य गोट है का ने मंत्र ये गोट के आजकल कौन समझवाद गुरु जी।
0: देखा ना, पहल गोट तो ये आए कि कोनी समझत कि नहीं समझत, आम के आपन के दखुक लागे से
2: आया है।
0: तुम्ही काय निसा पानी करू आहास, आगे तो तुम्ही आपन चो गारंटी धरा।
2: हुन तो आए काय गुरु जी, मैं केबे जेबे तुम चो लगे ऐसे हुनी बेरा ले निसा पानी के छाणून दिले से।
0: हाँ, ये गोड के तो तुई नंगत कर लीस ना, हुसनी मैं बोले से तुई आपन के सुधरा तो काम कर लीस, हुसने दूसर के बले समझाऊं धकतो रहे। हुन समझो कि नहीं समझो,
1: सत्य आय
0: आमी समझ लू से, ये बड़े गोट है।
2: आय आय सत्य आय दखलीस ना सुंदर, मुके असनी नंगत गोट मन के सुनुक चिकुक मिरु आय। एक आजे तो केबे केबे मैं ये था ये तेरा हुआ आय।
1: हाँ, जाले नहीं लायक हन।
2: हो
1: ये था ये तो मुके बले गोटक बाट मिरली से। मैं खूबे दिन ले विचार करते रहे कि काई नहाले काई धंधा पानी चो वाट करें दे।
2: अच्छा,
1: आज ही मैं गोटोक विचार कर ले से, सुन लीस।
2: हो काई?
0: हाँ, काई विचार कर लीस ना।
1: मैं विचार करे से ये कि गोटोक बोकड़ी घेने दे बोलून। बोकड़ी घेन तो के फिर हुता ले बोकड़ी पीला मन हो दे, फिर हुनी मन धीरे धीरे जान होते जा दे।
2: हो ना लेकिन ये तो तुखी ओए ना सुंदर, ये तो खूबे नगत विचार है ना।
1: हो ना दख, मोके ये सुन तो के कि गांधी बाबा बोकड़ी चो गोरस पीते रहला।
2: हो
1: तेबे मने ये विचार इली मोके।
2: हाँ
1: सुन ली,
0: बोकड़ी पोस्तर तो खूबे अच्छा धंधा है ना बाबू। बोकड़ी ने जो के खर्चा वाल नहीं लागे, बोकड़ी कसनी हो चारा लाटा रुक राई चो पाना पत्तर के खाए से, खाई अलग ले हुन चो काजे धन अपनी कर नहीं लागे।
1: सत्य है गुरुजी।
0: और गोटोक बोकड़ी ले लेवर बल तो बाढ़ते जाए से। मंत्र नहीं गेन तो पहल तु कोनी पशु मोहकमा चो साहब संगे जाऊन भेट घाट कर से। हुन मन तु के कसन भी थी बोकड़ी के घेन तो राय ये गोट के सांग दे।
1: सत्य बल्लास गुरुजी, मैं हुसने करें दे। आज ही मैं लेखन संगे यथा अमर तो के खुब्बे नंगत गोट मन जान ले, भले हो लेखन चो बले और तुम चो बले, जय जय हो।
0: दखना बाबू।
1: हाँ हाँ,
0: काय ना
1: मजो सुंदर।
0: हाँ हाँ, सुंदर
1: सुंदर नाम है।
0: हम के ये मनुक चो जीवना मेरली से नंगत जीव तो काजे, नंगत खातो काजे, नंगत बल तो काजे।
1: हाँ हाँ, सत्य
0: जाले यही गोड के हम के समझ तो राय और नंगत गोड के बल तो बले आए।
1: हाँ हाँ, सत्य
0: सांगा सुना बले होता राय और ये चो काजे हम के बुद्धि विचार बड़े बड़े महापुरुष मन ले मीरे से
1: मीरे से मीरे से मीरे
0: जाले हुन आमचो तो करनी नो है
1: नो है नो है
0: आमी तो हुनी मनचो सांगलो गोट के दूसर के सांगु से
1: सांगु से।
0: यही काजे तुमी आम के नी सहराओ, समझ लेस।
1: आए जानो गुरुजी, जाले मैं विचार कर ले से हुनके करुन दखे दे काय हो दे, जाले
0: काय फिर हो दे, सब फाय नंगत हो दे। नंगत विचार करुन भाती जे माने काई बले काम के करे से जाले भगवान उनके सहा होए से ना
1: होए से होए से
0: होए दे खूब भी अच्छा होए दे तुझो काम।
1: हो जानो गुरुजी हो। आले लेखन जावा।
2: आले
1: काई बसुआस था बसुआस जाले मैं हिंटते बोले जाएं दे।
2: नहीं नहीं नहीं।
1: हाँ,
2: हिंटते फिर काय काजे जावास
1: असन
2: थेब।
1: हाँ,
2: मैं बोले जाए से आले मैं जाऊं से गुरुजी।
1: हो, हो,
2: हो। फेर कोनी दिन फेर है वहां। अले राम राम गुरुजी, राम राम
1: जाऊं से फिराए। राम राम हो, राम राम
0: जोहार जोहार उसने फेरे ते रहा से।
2: हां हां हां, इते रहो इते रहो। आए
3: कई सलाह नहीं, कई सुतूर नहीं है, आपले मन ले कई जाई करते करे सास।
1: दख मैं बिहात ले ये बाड़ी गोरला के बनाए से
3: उनके तो मैं दखे

0: जले कहीं विचार करन चे तो बनाए से होती भगवान बुता बे रहा उन भाती। और सुन सोजे मोचो विचार ने चिनी बनाए कोनी बोले ज्ञानकारी माने के पूछ पछारा करुण भाती बनाए से मैं समझ लीस बुता बेरा ये था हर बार करे से सुन लीस
1: उन तो दखा दे से ची मानतर ये हो तुम्हें काय करे सास ये गोट के तुम के सांगा
0: हूं तो तु सांझ बेरा जान से ए मैं नहीं सांझ गे तू के आले ए काम तो मोचो सरली अबर दख घड़ी कित बजली दख तो
1: 11 बजली से हो
0: 11 बजली
1: काय बिचारा से
0: काई बिचार नहीं है आले भात पेज निकराओ भूख बली लागली। और सुन तू पासबुक के निकरण भाती मोके दे साई पाचे के भात पेज खाउन भाती डंडिक मोके बैंक बाट बोल जातो रासे सुन लीस
1: आले तेबे हाथ पाए धुआ मैं भात पेज निकराए से मांतर दखा हो काई बले गोट के सुतुर ने हिसाब ने करा सुन लास
0: तू ही हुंचो काजे फिकर नी कर मोचो रानी आम चो उवाट नंग थोली जाले मेरे दे आम के बारा बानी समझ लीस
1: छे हो तुम ही बोले मैं जाए से भात निकरा उपलाए

0: ये कितरो सुंदर बोकड़ी आए हो है? काय सुंदर है चो बड़े बड़े कान, बरन बले पंडरी करिया, चित्रा काबरा बाना, खूबे सुंदर आसे हो। ओहो
1: दखलीस हरी खोलीस काय?
0: होय हो,
1: यही काजे पनाय मय नी सांगत रले। और दाख ये बोकड़ी नहीं गाभिना से, काय मंजा तू ये चो दखा रखा कर से, तेबे तो होय दे।
0: हुंचो काजे तुम्ही चिंता नहीं करा हो।
1: हाँ।
0: मय आसे मानतर ये बोकड़ी घेन तो बिचार तुमचो मन ले कहाँ ले ली?
1: नी तो
0: खुब्बे अच्छा कर लास, मोके तो खुब्बे मनी इली हो, खुब्बे मनी।
1: अरे भकवी हुन दिने संज बेरा मैं जाऊं रहे नहीं लेखन संगे गुरजी घरे। हुताय हुन मंचो टोंडे मैं सुन ले। गांधी बाबा बोले बोकड़ी चो गोरस खाओत मने।
0: ये
1: हुतरो ने मोचो मने बिचारी ली। मैं इतरो दिन ले काय कमानी धंधा करें दे बोलून विचार करते रहे। बोकड़ी पोस ले नंगत होती बलते। और ये धंधा खूबे अच्छा आए रे, सुन ली।
0: कसन हिसाब ने खूबे अच्छा आए बोले साज हो?
1: हुन कसन हिसाब ने खूबे अच्छा आए बोले, ये गोट के तुई बोकड़ी के पोसु पोसु चे जानून जासे, तेबले बोले मैं तू के सांगे से सुन।
0: आले सांगा।
1: आले ये दे सुन।
0: हाँ।
1: बोकड़ी पोस तो काजे खूबे खर्चा नहीं लागे।
0: हाँ।
1: मानतर सोजे हुन के लेख करुक लागे से।
0: हाँ।
1: और झपके झपके गोटक ले दुई मुंड, दुई मुंड ले चार मुंड होते जा दे, बाढ़ते जा दे। तू दखते तो जा।
0: ये गोट तो सत्य आए हो?
1: सत्य गोट आए।
0: मानतर दखा पशु के बले पशुधन बोलुआत। और आजी आमचो घरे महालखी चो कृपा ने ये मुरहोली से भगवान महापुरु आम के असनी सहा होत, और आमचो उन्नति बाढ़ती होते रहो।
1: होय दे रे, बिल्कुल होय दे, कसन फिर नहीं होय देता। ये दे सुन, मैं ये बोकड़ी के हुन लग चो हुन काटा बीती गोटो को रुकने नहीं से होता। हाँ। डंडिक चराउन आने दे, पाछे काली के बूता बाटे जाए दे, नहीं होए
0: होए दे होए।
1: हाँ
0: आले जहाँ के भी आए।
1: हाँ।

0: बोकड़ी, ये बोकड़ी भले कहाँ जाए से जाले।
1: कसना सुंदर काय बनासित ना?
2: ये दे ये बोकड़ी मन के चराए से दादा, शंकर दादा, जुआर दादा, राम राम।
1: जुआर राम राम।
2: आजी मैं बूता काम बटनी गेले दादा, ए मन के बले दुखुक लागे से ना, कसन करूँ।

0: कहीं नहीं बोलेंगे।
1: हाँ दादा दीदी मन मोचो घरे मैं गाय नहीं आने बोकड़ी आन ले मानतर उन बोकड़ी रहे गरीब चो गाय समझ लास हुनी मोचो काजे गाय महा परापद दिली मोके फायदा दिली। आजी धीरे धीरे मोचो घरे गोटो कुले दुठान दुठान ले चार ठन चार ठन ले पांच ठन बोकड़ी होते गेला। और पशु मोहक माचो लोग मन बले पाछे मोके संग दिला मोचो कमानी सुतुर के दखून हुन मन खूबे हरी खोला और गांव बाटले मोके श्रेष्ठ पशुपालक चो इनाम मिले से। ये हरिक चो गो उठाए सुनसास ये हरिक चो गो उठाए और ये काम ने मोचो घरो लक्ष्मी खूबे संग दिली से हुन चो संग नी दिले दिलो ने मैं एकला काम के नी करुक सकते।
2: अरे हसन चले बहु के बोले पूरे हाथ दिया ना
1: अलावा सत्य हमी दोनों चो बाटले सब पाए के हमी जुहार करूं से
3: तुचो बाटले तो तू ही गोट बलिश ना सुंदर।
1: हाँ दादा
3: अब बार तुचो थानो नोनी बोले दुई शब्द बोले दे
4: मैं काय के बोले इंता दादा लाज लगवाई तो लोग तो पूरे मैं काय बोलू आए
1: अले काई नहीं होए सब आए के जुहार बोलूं देस
3: अले बोल बनो नी
4: आम के तुमी इतलो मान दिलास सपाए के आमी बोलूं से जुहार
1: जुहार
5: बोली बे बोली बे।

0: कहाँ गेलिस ना ए सुंदर?
1: ए कौन है ना लखन है? ए आओ आओ आओ, आज बड़े बिहान ले कहाँ ली चीज ना लखन?
0: ओए ना ए दे, यही बाटे जाते रहे।
1: हाँ
0: कुनु खिंडी ओलुन दखें दे बोल ले और एत्ते ही ले
1: आले। अच्छा तो होली ये लक्ष्मी ये दे लखनी लो से उन कुर्सी के आन ये दे मैं चियान हूं दे दे कुर्सी के ये बस भाई बस।
0: होय ना बस ऐसे मात्र ये ना सुंदर
1: कसन
0: कुट गोट मोच मने येते रहे।
1: हो आले काय गोठ है ना सांग थेपता ए ए लक्ष्मी ए लक्ष्मी ए दे आओ आओ आले खिंडी चाह चाही तो बनाओ लय खनी लो से। हाँ
0: आले आले आले चाह चाही रो बे ना
1: आले बनाओ उदेश ना खिंडी खिंडी खिंडी पीवा मैं बोल पिए दे काय
0: आले असन जाले जानू
1: हाँ
0: पीवा ते बे ने
1: हाँ बनाओ उदेश बनाओ उदेश। आले सांग तू काय गोट बोल तेरे लिए जाले
0: ये देना
1: कसन
0: बरक पहिल आमे गुरुजी लगे संगे जाऊ रलू
1: जाऊ रहूं जाऊ रहूं
0: तेबे तुई दंड की विचार कर लीस ने बुकड़ पोस्तो काजे।
1: हाँ
0: जाले ये भी मैं बले भूतिकुली तो करे से चीने
1: हाँ
0: जाले काई मैं बले असने काम धंधा कर लो ने नगत नहीं होती ना।
1: ये तो खूबे नगत गोठ है ना जाले तुई काई बले विचार कर ली सीस।
0: हुनी तो बले से ना काई कर लो ने होए दे बलून ये भी तू इतरो नगद गोट के बलून दिलीस गरीब चो गाय छेरी बकड़ी आए बोलून असनी काई काम धंधा पानी हिसाब ने मुके बोले काई सलाह देस नहीं ना।
1: तू ही बोले ना मैं फिर तू की काय सलाह दे देता बोकड़ी पोस तो गोट के बले जसन मैं तुचो पूरे विचार कर ले उसने तुचो मन ने काय ऐसे जाले विचार करून द काय।
2: ये दे चाह पिया ये दे बाबू
1: ये दे लेखन चाह पीऊं दे उनता
0: जब के चाह बन ली बहू
2: बन ली जानू ये बिहाने बिहाने फिर कहाँ जातोर हो इसी बाबू
0: कहाँ नहीं जाए बहू काय मजा चाह बन ली से
1: लक्ष्मी फिर चाह के नगद चे बना हुआ है काय
0: सत्य
2: सत्य काय विचार करलास बाबू तुम्ही

0: मैं काय मन जा सुवाद बीती चाह पीवले
1: हाँ
0: ने
1: सत्य है।
0: ते भी चाह के पीते पीते मोके विचारी ली
1: हाँ
0: हम जो गांव चु चौक ने मुझे भूई बले आसे
1: हाँ आसे
0: और हुता गोटक बले खाजा चरपन चाह काजे होटल नहीं आए
1: नहीं आए नहीं आए नहीं आए।
0: मैं बले हुनी बीती खोलें दे
2: हाँ
1: हो ना पक्की बीती विचार कर ली सीस।
0: और होटल खोलो ने फिर लागलो बेरा गोरस देव वास काय
2: काय काजे फिर नहीं देऊ ता देऊ दे रलो बेरा काय काज नहीं देऊ
0: अच्छा होली ना जसन तुई बारती कर लिस नहीं उसने मैं बले होटल हिसाब ले बारती करें दे
1: देख लीस ना लेखन हुनी दिन चो मोचो मने असनी उद्धापड़े बोकड़ी बीती बिचारे तो के मोके हरिक लागते रहे उसनी तुके बले लागे से होती।
0: ओए ना ताने बाय बाय बाय बाय लागली मोके
2: ये दखा बाबू बोया काई नहीं वास पाछे फेर होटल धंधा कसन करासे बोया होले आई कसन करुन बाती के होटल धंधा करासे
1: दखना
0: तो न बोया गोटलू आए काई
2: तो कसन बोया आए हाई
0: काम कर तो काजे हरिक हो तो बीती
2: बया
0: बीती गोटाए
2: हरिक चो बोया होए सा हरिक चो
1: बोया।

0: हाँ तो पन को
1: हाँ
0: तो ये भी हम सुनते रहो ने हल भी नाटक गरीब जो गाए
1: हाँ
0: एके लिखुरला सुश्री सुषमा कश्यप और एके आमचो लगे अमराउरला बलबीर सिंह कक्ष
1: हाँ
0: और था कौन कौन भाग धर रला चितालीस कसन।
1: हाउ एता भागधरु मनात श्रीमती विजयलक्ष्मी दानी, श्री पीताम्बर दास वैष्णव, श्री शशांक कुमार ठाकुर, श्री मोहन ठाकुर, श्री गोपाल पोयाम।
0: हाँ तो ये तो होली ने आले
1: हाँ
0: फिर हम जाता समय अबल हो ऐसे मैं मोड़ा गड़रा के शक लें दे तू भी दादर।
1: हाँ आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो जमाए गांव करी दादा दादी सियान सजन और संगझोरिया संगवारी मन के मैपन कु
0: आओ मैं मिट की
1: दोनों करूं से जुहार।
0: जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम घलर में आइए सुनते हैं दयो और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत।

ସବୁଠାରୁ ପରେ ଯାଉ ଦୁଆରେ କଦଳୀ ଗଛ ଶୁଆ ଖାଇ।

Sua caída!

लाए ठारी वारी।

की कयलारी गादुरा झुले तुमचो काजे मानालु रे दुआरे कदली गचो सुआ काई गोरा रो

ಜನ ಮದಿಯ ಶೀಲ ರಾಜಿನ.

0: चरकी ना जावे छेदे द्वारे कदली गच सुआ खाई गला रस राम गला रे वनवास
1: नगरी उपरे भगना बिया लगी ना देखू कोई द्वारे कदली गच सुआ खाई

¡Ay, no sale su papá, lo digo! ¡Lo robó aquí!

0: Bos
1: Semua temulah.

0: जुआली
1: ओ जाली
0: गोरे नहीं नहीं कायो जुए जुआली
2: यासला घर बसला पानी घुमरा घर सानु कर जुबे जुबानी हजारी गोरे लोग नहीं कायो जुबानी
0: एना बाटी थाने मोहिलो डिंडा गावे चौटा पिंडा कायरानी चुबे जुबाली हजारी घरे नहीं नहीं कायरानी चुबे जुबाली
2: बेरा उजा बनी बेरती जागे दकलो दकलो लागे कायरानी चुबे जुबाली हजारी घरे लोग नहीं कायरानी चुबे जुबाली
0: आसो बोली वाके आसो तेरोली बाटे बोरो सिला पानी कायरानी चुबे जुबाली।

0: ढोलकी जवाय मन कायरानी चुबे चुबानी अजानी घरे लोग नाही कायरानी चुबे चुबानी
1: असा बोली वाके असा ते झाली घरेले वटी घरी कायरानी चुबे चुबानी अजानी घरे लोग नाही कायरानी चुबे चुबानी
0: तमर दादा डबू अमर नेने ने बुतेल मा घटले खाबु कायरानी चुबे चुबानी हजारी घरे लोग नाही कायरानी चुबे चुबानी
1: हाथ टेकी मुंदी पोलका खाडू जीव गले नाही छाडू कायरानी चुबे चुबानी हजारी घरे नाग नाही कायरानी चुबे चुबानी
0: तमर मा वाटे असले बोलो केरानी कायरानी चुबे चुबानी इंदोत खाई देला कायरानी चुबे चुबानी
1: आम्ही तिनी भयंसी गणे सोनी आमके नी लगा कोणी कायरानी चुबे चुबानी हजारी घरे लागो लाही कायरानी चुबे चुबानी
0: से कदर पुन बांधिया सोन ललकी जवाय मन कायरानी चुबे चुबानी हजारी घरे लोग नाही कायरानी चुबे चुबानी
1: हाथ टेकी मुदी पोलका खाडू ले ओटिया सगी बोली कायरानी चुबे चुबानी हजारी घरे नाग नाही कायरानी चुबे चुबानी।

0: आम्ही तिन्ही भयंकरी आलो लाईट लगा लगा धोको कारणी चुबे चुबाली हजारी घरे नायो नाही कारणी चुबे चुबाली आकुड़ा गाँव रुड़ा गोली गुमड़ा गाँव रोली कारणी चुबे चुबाली हजारी घरे नाई कारणी चुबे चुबाली।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट।

কথা বোনো মানিয়ে শোনো আলো লক্ষ্মী যাওয়াই মনোরে।

ಮಾವೋ ಗ

Pero tiga que da colo, da colo, la guerra.

कार्यक्रम घलर में आप सुन रहे थे दयो और साथियों के स्वर में भर्तरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जयगोठ में अभी हम सुनेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति है तनुश्री मोहंती की।

पिलामन काजे गोट, ये कार्यक्रम सुनते जमाए नानी नानी और बड़े पिलामन के मोचो बाटले मया और लाड। पिलामन ये कार्यक्रम ने रोजे दिना नंगत नंगत गोट बात, नंगत ज्ञान चोगोट और बड़े बड़े महापुरुष समाज सुधारक चोगोट के आमी तून मन के संगतो काजे था एवं सी। असने आज ही में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय चो बारे ने तून मन के सांगे दे। आमचो भारत देश चो बाढ़ती काजे और नुआ बाढ़ दखातो काजे आमचो देश चो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने खूबे मेहनत करला। राजा राम मोहन राय के एवी चो भारत देश चो निर्माता वाले बलसोत।

निर्माता वल्लों ने बना तो भी था। यमन के निर्माता ये काजे बल सोत कि मोहन राय आमचो देश ने उदलदाय चो समाज चो जोन बले कुर प्रथा रली बल्लो ने असन प्रथा जोन समाज के बाढ़ती चो बाट नी ने बल्लो ने बाढ़ती चो बाट की थेवाय से इसी संगे संगे आमचो समाज ने कैक असने कु प्रथा रली जसन बड़े जात नानी जात ये चो भेद बले रहे उनके बले ये गुचातो काजे खूब मेहनत कर ला मनुख जाति चो बाढ़ती चो काम करतो कारण ने भारत हुन मंचो हमेशा कर्जदार रहे थे। राजा राम मोहन राय चो जन्म बंगाल चो राधा नगर ने 22 मई 1772 ने होन रहे। 16 बरख चो उम्र ने राजा राम मोहन राय समाज ने चलतो अंधविश्वास जे कि आमी बोलू से कि जसन बीमारी होली तो आमी बोलू से कोनी पांगुन दिला तो असन गोट जे कि आमी अंधविश्वास बोलू से ये चो बारो ने गोटो निबंध लिखुन रला। राजा राम मोहन राय बाल विवाह बल्लो ने कम उम्र ने होतो बीती ब्याह चो बले खूब भी विरोध कर ला। राजा राम मोहन राय सोजे भारत के जन्म देतो बीता नहीं रला बल्कि हुन मन नुआ भारत के बले बनाला और 100 बरख ले 16 भारत चो लोग मन के चेताला। राजा राम मोहन राय जोन रला ये ग्रीस फ्रीब्रू अंग्रेजी बंगाल संस्कृत फारसी और गुरुमुखी चो यमन के खूबे ज्ञान रली और 1802 ने हुनमन कलेक्टर चो पद ने बले काम करला। राजा राम मोहन राय 1812 ने गोटोक असन संकल्प धरला जे चो बारे ने सोचलो ने आमचो कार्जा दुखुन जाय दे हुन रहे सती प्रथा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा की गुचातो काजे संकल्प करला और क्रिया खादला और यही कारण ने हुनमन चो कोशिश के विलियम बैट्रिक्स बलून गोटोक अंग्रेज साहब रला 1829 ने सती प्रथा के थेबाउन दिला। ये आमचो भारत देशो समाज का जे खूबे बड़े काम होली नहले उदलदाय चो जो समाज रहे नहीं पिलामन हुता ये सती प्रथा बल्लो ने खूबे समाज ने ये फैलून रहे और तुमन मन सोचे सास पिलामन कि सती प्रथा बल्लो ने काय बीतिया है तो मैं तुमन मन के सांगुक चाहें से कि सती प्रथा ने उदलदाय चो समाज ने कोनी बले ब्याह होलो माने मरुन जाते रहे तो हुंचो मरलो पासे हुंचो जोन बायले रहे नहीं जीवता बायले हुनके मोड़ा संगे सोजे जीवता जीवता डसान देते रहला तो इत्रो अर्णाप गोठ उदलदाय चो समाज ने होते रहे जेके गुचातो काजे राजा राम मोहन राय खूबे मेहनत करला और हुंचो समाज चो ये कुप्रथा के गुचाला विलियम बैट्रिक संगे मिशन भाती असने कुप्रथा चो के गुचातो काजे राजा राम मोहन राय असने हिंदू धर्म चो एक ले आगर बिया करतोर बल्लो ने गोटोक बायले रोरोन और ब्याह होतोर और बाल विवाह जसन मैं पनाए तुम्हें मन के सांगले कि नानी उम्र ने ब्याह करतोर और ढोंगा जोन बले रीति नीति रहे ये चो खूबे विरोध करला। हुनमन चाहते रहला कि बेटी मन के बले आप लो बाबा चो धन संपत्ति ने बराबर चो बाटा मिरो। राजा राम मोहन राय शिक्षा चो बाढ़ती काजे बले खूबे काम करला। हुनमन कलकत्ता ने हिंदू कॉलेज चो स्थापना 20 जनवरी 1817 ने करुन रला। हुनी हिंदू कॉलेज के एबे चो समया ने कलकत्ता ने प्रेसिडेंसी कॉलेज चो नाव ले लोग मन जाने सोत। राजा राम मोहन राय आपलो संगवारी केशव चंद्र संगे मिसुन 1828 ने ब्रह्म समाज चो स्थापना करला और असने समाज चो बढ़ती काजे राजा राम मोहन राय कई काम करला। तो पिलामन आम के असने महापुरुष समाज सुधारक और समाज चो बढ़ती काजे जोन बले लोग पूरे उन काम करला से हुनमन चो जीवनाले ज्ञान धरतो राय हुनमन चो सांगलो बाटने आम के जातो राय हुनमन चो सांगलो गोट के आपलो जीवना ने उतरातो राय तेबे आमी आपलो जीवना के आगे बढ़ाओ सकूं दे और सद्धर्म ने चलुक सकूं दे। हाँ तो पिलामन इत्रो नंगत गोट के तो तुमन मन सुने साहसी संगे संगे मैं तुमन मन काजे गोटो गीत के धरनी ले से तो सुनू ये गीत के।

हाँ तो पीलामन, आज ही मैं तुमन मन के सांगले राजा राम मोहन राय समाज सुधारक चो बारे ने हुनमन चो सांगलो बाट ने चलुन भाती आपलो जीवन चो बाढ़ती करा असने रोजे दिना कोनी ना कोनी समाज सुधारक महापुरुष और ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन तुम चो लगे आमी एते रहूं दे तो मोके दियास बिदा जुहार।

बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजी गोट में आप सुन रहे थे राजा राम मोहन राय के विषय में। प्रस्तुति थी तनुश्री मोहंती की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान

0: में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम

0: दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान

0: उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन

0: 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian under-15 boxing championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian weightlifting championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69kg category snatch event by lifting 96kg in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121kg in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217kg. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। कार्यक्रम नजर में लीजिए, सुनिए धनेश्वर दास से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
2: भाई बहन मन सबके सेवा जोहार। जसन की आमी आमचु ये नजर कार्यक्रम ने कई कसन बल्ले ने अनुभव बल्ले जान तो असन बल्ले ने आमचो भाई बहन मन संग गोट बात करुन बाती अपन मन के सुनाव से कसन बल्ले काय की जीवना ने कई कसन बल्ले ने तकलीफ होए से चीपा होए से समस्या होए से ये तो होए से ची मानतर काय की शारीरिक रूप ने बल्ले जसन कई अंग जो है ना आमचो जो तकलीफ होए से चल तो फिर तो गोट बात ने मानतर काय की संघर्ष आरु मेहनत करुन बल्ले ने आप लोग जीवना के कसन आगे बढ़ाते रहे से असने ची में आज ही गोड बात करें से तो सब ले आगे तुचो नाव आरु गांव चुनाव सांग में
3: दादा सबले पहले तो मैं सुन तो भाई बहन के जुआर करे से हर तुम के बोल जुआर करें से
2: जुआर
3: दादा मैं मुझे गांव बोले में ग्राम सोनपुर बकाउंड ब्लॉक चंतर गति हुआ है बकाउंड 7 किलोमीटर दूर से उन्हीं थाने मुझे जन्म बाड़न होली और रही बात पुचापंग ये मुझो जन्म चो 2 महीना चो बाद असन होली जो की पोलियो चो ड्रॉप नहीं पिलाल कारण ने
2: अच्छा
3: हाँ और ये मुच बाबा बोले नाकेदार में रला उन्हीं गांव में बाबा मनसंग में रहते रले
2: अच्छा तो बोले ने ये पीला बेरा लिया है बोले तो चुने
3: हाँ पीला ही बेरा ले
2: अच्छा मतलब पाए ने अपंग आसे भी
3: हाँ
2: अच्छा एक ही टन पाए ने बोले ने
3: एक ही टन पाए ने
2: अच्छा तो दक धनेश्वर दास ये सांग जसन की तु पीला बेरा ले जसन की अपंग होलिस मंतर पढ़ाई लिखाई बोल तो कर लिस होती
3: हाँ पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा तो नहीं पढ़ ले दादा 10वीं तक नहीं पढ़ ले से
2: अच्छा
3: मुझे बाप जो नाइन पढ़ा तो खूब कोशिश कर ला लेकिन थोड़ी परिस्थिति अलग रही मुझे बाबा सर्विस में रहे फॉरेस्टर में रहे तो बाहर बाहर रहते रहे तो मंचो 3-4 पत्नी कारण उन घरे रतर बोलवा बाहर बाहर रहते रहे
2: अच्छा
3: और मैं मुझे माँ छोटे समय ने 2 महीना जब रहे तो छाड़ून पढ़ा ली तो उनके बाद दादा दादी मुख संभाल ला
2: अच्छा
3: दादा दादी सहारा में मैं 6वीं तक गांव में ही पढ़ाई कर ले मिडिल स्कूल में और

0: मिडिल स्कूल पास कर मध्य हाई स्कूल तक तो मैं ये जगदलपुर में ले, मुझे बड़े बाबा बड़े माँ ये मन सब संभालना उन संग्रहालय में। और जश्न में पढ़ाई छाड़ ले, 10वीं तक पढ़ते के आगे पढ़ुक नहीं सक ले, कल पढ़ते लोग लिखते लोग के कहे हर चीज चो सुविधा फैसिलिटी और जो मुझे जरूरत उन पूरा करते करू पड़ू है, तो उस टाइप से थोड़ी कमी रहते रहे। मैं हम बड़े बाबा बड़े मामन संग रहते रहे, कहीं बोलूक नहीं सकते रहे, जितलो मन अपनो बाटले फर्ज बनते रहे उतलो पूरा करते रहला। तेर बल में कुछ कमी रही, अब बाबा पास रोल में कहीं बोलूक होती बोलूक नहीं सकते रहे, तो अब पढ़ाई में कुछ कमजोरी हो तो कारण में मैं पढ़ाई बोले आगे रुक नहीं सक ले छान दिले।
1: अच्छा,
0: जसने में पढ़ाई छाड़ ले तो उसने एक बिजनेस कुछ कर तो भावना मुझे भीतर रही, और पहले बोले मैं काम कर तो इच्छा मुझे ज्यादा रहे कुछ ना कुछ करते रहे, तो मुझे शौक ज्यादा रहे फोटोग्राफी लाइन।
1: अच्छा, फोटोग्राफी।
0: हाँ, तो ये मुझे खूब शौक रही, कैमरा शौकीन रहे और फोटोग्राफी करते, तो उन चीज के मैं कहे अपने शौक पूरा करते कहे कि उनके मांगन बाती में सीख ले। एक जन भाई रो खास जान पहचान रह, तो हम मन लग गोटो कैमरा रही जो कि रील बीती कैमरा रहे, और रील में 36 पोज बनते रहे।
1: अच्छा,
0: 36 पोज में दिन भर में घूम लो 36 पोज सारते रहे, तो सार लो में 360 रुपया बने, अब उनके मुख डबल करते रहे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो उन समय फोटो का है 4:6 बोलो में पोस्ट कार्ड साइज छो, उन साइज छो फोटो में ज्यादातर चलते रहे, रील भी थी कैमरा उन समय चलते रहे, तो उन फोटो मत में कहे 36 72 70 कर लो में मके 720 रुपया कुछ बनते रहे, 720 में रील चो मुके 60 रुपया 160 असन नहीं करते रहे। फिर फोटो वॉशिंग करा तो कहे बोले उन्हीं थान ले मैं अपना मेकअप करते रहे एडजस्ट करते रहे, और जो पैसा बचते रहे 250 रुपया मुझे खर्चा चलते रहे।
1: अच्छा,
0: तो उसने उसने उसने मुझे शौक बढ़ते गेली, नहीं ये चीज ने अच्छा फायदा हुआ बोलते उनके, मैं धीरे धीरे धीरे बढ़ा ले बढ़ाउन बाती। फिर एक दिन अपना स्टूडियो जो सबले पुराना स्टूडियो सपना स्टूडियो उनचो मालकिन रहे, उन संग अच्छा परिचय रहे, परिचय उन खुद अपने कैमरा बोलते हुए जाओ काम लेके आओ बोलते, मैं हर एरिया में जाते रहे कैमरा धर्म बाती, उड़ीसा तक गए थे।
1: अच्छा,
0: उड़ीसा जाऊन बाती काम आने उनके देते रहे, लेकिन उन कहे जैसे कि जहां मैं 150 में काम करते रहे तो 150 जगह में उनमें 200 250 मक धर तो कुछ नहीं बात रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ पूरा पैसा हो नहीं मानने जाते रहे, तो दो चीज जो कमी रही मुझे लगे, एक तो फोटो फ्रेमिंग करते फोटो प्रिंट करते फोटो एडिटिंग जो कमी रहे, मैं दूसरा थान ले काम कराते रहे। अब उन चीज अपने पैसा बचाते काजे कुछ बचत करते काजे मैं खुद धीरे धीरे धीरे धीरे पास सीख ले।
1: अच्छा,
0: हाँ सीखन बाती फिर पाँच मुझे लग खुद जो कैमरा होली कैमरा हो तो फिर पाचे सरकार योजना जो चलते रहे मुद्रा लोन मिलती, हम बाटले अप्लाई करते के सरकार बाटले कुछ मदद मिली 50,000 कुछ, तो उनमें कुछ सामान दिला। लेकिन असन समय फिर ली कि समय ने ये लॉकडाउन लगली।
1: हाँ, लॉकडाउन।
0: हाँ, लॉकडाउन समय ने कोनी बट जाओ नहीं सकले कहीं नहीं, मुझे सामान को दाम मौसी घर संगा होने लगे, पूरा सामान पूरा जाम होने गली, चूहा मन खाद लगात कर बर्बाद होने गली, एक बोलून सामान असनी पड़ ली से जी।
1: अच्छा,
0: तो तेबले बोले मैं अपना जो धंधा है बिजनेस है उनके छाड़ुक नहीं चाहे सर एबले बोले चले से चे मचो।
1: अच्छा, हाँ, तो धनेश्वर दास दक बोले ने गुटुक विचित्र कहानी असना है बोलूबे तो कि पीला बेराले तू चो माए बाप चो कहीं लाड़ प्यार और सहयोग नहीं
0: दादा नहीं
1: आई कि नहीं बोले ने तुझो मेहनत तुझो मसागत और तुझो बल्लेस की बड़े बाबा माए घर रोहन बाती पढ़ा लिखा कर लेस। मंत्र दक तू 10वीं पास करुन बाती फिर ये जो तुझो शौक फेल होली, दसन की तु फिर जो शौक तुझो रहे कैमरा फोटो खींचते भी थी, अरे बोलेस की तुई मतलब उड़ीसा बाटे बोले कैमरा धरून जाते रहे बोले, तो साधन काय नहीं जाते रहे इसने बाटे
0: में? साधन पहले मुझे लगे कुछ साधन नहीं रही, बस उसमें बल जाते रहे, बस में जाऊन बाती उतरून फिर 2-3 दिन में कुछ ठेबुक बल पड़ते रहे।
1: अच्छा,
0: उतरून धीरे धीरे बोले 1-2 किलोमीटर पहले चलते रहे पैदल बोले जाते रहे मैं।
1: अच्छा,
0: पैसा के सहारा में 1-2 किलोमीटर पैदल भी जाते रहे।
1: अच्छा,
0: ये भी तो समाज कल्याण बाटले में कुछ साधन मिलली से।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: का है उन ट्राई साइकिल?
0: हाँ, मोटर राइड साइकिल बोलते, एक नाम से मैडम रला वैशाली मैडम वाल जिनकी महाराष्ट्र रला, एक मंच ट्रांसफर होली नारायणपुर क्षेत्र में, मंच खूब खूब मैं आभारी आसे मंच द्वारा मके रतो का जगह बल मिलू रहे और साइकिल बल दिला ला।
1: अच्छा,
0: हाँ मातर फोटो प्रिंटर जो सामान खराब हो जाए अप्लाई करते उन चीज में पूरा हो नहीं सकली।
1: अच्छा
0: हाँ, उन एक कमी।
1: अच्छा।

0: तो समाज कल्याण बाटले बोलले मोटर जो साइकिल बोलले
1: हाँ।
0: और कहीं ठान घर काय मिलले से काय मिलले
1: नहीं घर देव रे फिर बोलू ता सरकारी चीज हम चुको कुछ अधिकार नहीं खाली करा तो खाली कर दिलो।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ बोले इसने काम कर तो काजे देव रला बोले
1: हाँ देव रला
0: हाँ हाँ हाँ तो बोले ने ये भी बोले ने होने से काम कर सकती है जैसे
1: हाँ फोटो ही काम कर रहे हैं दादा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो बोले ने भी कसन कहाँ तुझ रतो कहाँ हो ऐसे कहीं घर बना
1: रतो मैं ये भी धर्मपुरा पीजी का सामने जहाँ चौकी आ चौकी जो लोकमान्य तिलक वार्ड बुलवा उन था ना से किराए में रहूँ और किराए के रेट थोड़े महंगा पड़े से मके 5,000 पड़ू है फिर बोले आप उनच मेंटेनेंस कर रहे से मैं मुझ परिवार मुझ बाबू आती एक ठन मुझ पत्नी उन तीनों परिवार उन्हीं थान रहा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो जैसन कि तुझ जो पत्नी है बोल कहीं करे से काम वगैरह
1: नहीं कुछ नहीं करा मल बिकलांग है यहाँ कले।
0: अच्छा उन मल बिकलांग है।
1: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ तो दक बोले तू दोनों चो तकलीफ बोले ने शारीरिक रूप ने आसे है कि नहीं तो ये फोटोग्राफी ने बोले ने उतलो तुम चो जीवना चो इतलो तो कि मेरे से जैसन की किराए ने बोले आसे ऐसे था।
1: हाँ तो कोशिश कर लो मीर भाई भले कुछ अप डाउन उतर तले ऊपरे तो होते चीर हुए
0: हाँ हाँ
1: फिर बोले एडजस्ट कर पड़वा
0: अच्छा
1: उन्हीं का जे फिर उन दिन जौन बाती मैं साहब के बोले अप्लाई कर ले बैंक चो साहब के ये भी जो योजना चले से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जुन बाती उन बोले मैं अप्लाई कर ले से तो बैंक मैनेजर साहब से बोले बात होली से हाक दिला से
0: अच्छा
1: अगर उमन बाटले कुछ सपोर्ट मिलो फिर अपना काम के आगे बढ़ा तो मुझे विचार आते।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये भी जैसन की फोटो खींच तो बीती लेमिनेशन बीती ये पूरा मतलब ये भी कसन कर सी तो सामान जैसे
1: सामान मुझे लगे सिर्फ लेमिनेशन आसे लेमिनेटर आसे।
0: अच्छा
1: हाँ फोटो फ्रेम तो हूँ तो मटेरियल है।
0: मटेरियल है।
1: हाँ
0: हाँ
1: प्रिंटर उन खराब हुई से मुझे जो कैमरा रहे वीडियो भी थी उन खराब हुई कैमरा उन खराब हुई कैमरा के साल 2 साल ले ज्यादा चल रहा लेंस क्लियरिटी इतना नहीं हुआ है
0: अच्छा
1: बदलुक पड़ है वारंटी इतना नहीं रहा है उनको तो उन
0: अच्छा
1: सामान भी मुझे लगे नहीं आए।
0: नहीं है तो
1: हाँ
0: ये काम कहाँ लेकर इस पे लेमिनेशन वगैरह ये सब फोटो
1: ये
0: निकलाते
1: लेमिनेशन में खुद करूँगा
0: खुद
1: घर ही
0: कर।
1: करूँगा
0: अच्छा और फोटो प्रिंट निकला तो भी थी।
1: फोटो प्रिंट करते हैं पीजी कॉलेज सामने आते मोहर स्टेशनरी बोलते गोटो।
0: हाँ हाँ
1: हाँ स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी उन थान ले मैं प्रिंट निकलवाती नहीं आती खुद करूँगा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो जैसन की तुझ लोगे भी कहीं असन रोतोट कहीं दुकान असन असन कहीं बोल ठान बोल नहीं आए होती तो असन जाऊन बाती बोले फोटोग्राफ खींचे बस बाहर ही जाऊन जाऊन कहीं
1: हाँ
0: कसा।
1: बाहर ही बाहर जाऊंगा मैं गांव गांव ने।
0: अच्छा गांव गांव ने।
1: हाँ गांव गांव जाऊन बाती खींचना ना जैसे ने भी कुछ फोटो मुझे लगा से।
0: हाँ हाँ तो ये सब के बोले ने गांव गांव ने फिर तू सांग हुआ भुगता जाऊन बाती।
1: हाँ सांग हुआ और जहाँ जहाँ मुझ परिचय मन बनाते गए थे
0: हाँ हाँ
1: उमन बल दख लो मग जानत कि ये
0: अच्छा
1: फोटो बीता है बोलते
0: अच्छा
1: तो मन खुद आप लोग पुराना आसन फोटो मन रलम निकरान मध्य बाबू एक बनाऊन दे
0: हाँ हाँ
1: बोलते तो ऐसनी ऐसनी कई जगह में बुलूंगा
0: अच्छा
1: ये फोटो मन सब बना तो बीती मन।
0: अच्छा हाँ
1: हाँ
0: हाँ तो ये सब फोटो जैसन की खींच सीच लेमिनेशन कर सी चुपल कहीं साइज हिसाब ने उनचो कहीं रेट रहे से
1: हाँ दादा
0: कसन
1: जैसे
0: कसन।
1: कि ये फोटो एक बोला 4:6 जो
0: हाँ
1: पोस्ट कार्ड साइज एक 8-12 जो बोर्ड में हम लेमिनेशन करवाम असन फ्रेम करवाम
0: हाँ हाँ
1: तो उन हिसाब में मैं रेट लगा मैं 250 रुपया।
0: अच्छा
1: हाँ 250 अपना हिसाब में लगा पड़ो है
0: हाँ हाँ
1: और ये सिर्फ कॉपी होलो में 8-12 जगह बोलवाम A4 में तो उन एक कॉपी उन लेमिनेशन कर 150 रुपया दिल में पड़ो है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा एक कापी चुने। हाँ तो दक बोले ने जात्र लेने बोले ने आस पास कौन कौन बोले ज्यादा कौन ब्लॉक वगैरह ने कौन गांव मन बांटे जाए
1: मैं ज्यादा दादा एक बार बनिया गांव 1 महीना तक रह ले मैं केसरपाल बनिया गांव।
0: अच्छा केसरपाल बनिया गांव।
1: हाँ 1 महीना लगातार मुझे चल ली
0: हाँ हाँ
1: और उनके बाद में मैं अलग अलग एरिया जाऊँ।
0: अच्छा
1: हाँ हफ्ता दिन 2 हफ्ता 4 दिन टाइम निकल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा
1: हाँ हफ्ता में रूट बना हुआ है एरिया जाता तो एरिया में 1 हफ्ता इतवार या शनिवार गेलो फिर अगले हफ्ता शनिवार इतवार को जाऊँ
0: अच्छा
1: अलग अलग जगह से मैं अपना रूट बना लूँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बोले जाऊन हम बाटे 1 सप्ताह 2 सप्ताह ठेबुआ सुनी बाटे।
1: नहीं नहीं ठेबे
0: अच्छा
1: मतलब 1 दिन जाऊँ 1-2 दिन काम करूँ वापस ए तो रहे
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: हफ्ता दिन मन टाइम दे रहे रहे
0: हाँ हाँ
1: हफ्ता दिन में पूरा काम अपना कंप्लीट करूँ बाटुक जाता है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ तो बोले नहीं चुका पूरा तुरते तो के जो पैसा वगैरह मेहनत था मेरे से होती ना
1: हाँ हाँ तुरते मेरे दे
0: मेरे से।
1: मेरे से।
0: अच्छा जसन की बाहरी जायसीस तो तू जातर बोले समय तो लागे सी
1: समय लागे दादा
0: है कि नहीं
1: समय लागू
0: तो जसन की तुझ खाना पीना है
1: हाँ
0: रतुआ ये कसन
1: हाँ
0: कर से साले उन माटे।
1: नहीं खाना पीना का

0: एलुक चुका जे अलग ले निकल पूरा नाश्ता पानी या कोई होटल उटल देखल खा दिले या फिर परिचित लोग मिलला तो वहीं मंथन बोले थे पूरा दू चार आना दे तो धर तो लोग धरू पर नहीं धर तो लोग नहीं बोल धरत
1: अच्छा
0: व्यवस्था होनी थान बोले हुआ और एक दो दिन ठेबुक बोल पड़ू है
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ तो धनेश्वर दास तुके आसन जसन की विकलांग बोले आस इतलो मेहनत मशागत कर सी तो बोले ने कहीं मन ने सन कहीं झंझट एकदम कहीं नहीं लागे
0: नहीं दादा ये तो झंझट तो नहीं लागे हालांकि थोड़े परेशानी तकलीफ तो हुआ है जब तक हम परेशानी और तकलीफ की नहीं झेलू तब तक आगे हमके उनचो मतलब सुख जो अनुभव नहीं हुए
1: नहीं हुए
0: सुख मिल तो पहले तकलीफ तो होती है
1: हाँ हूं तो आए थी
0: हाँ
1: हाँ
0: तो ये मुझे पहले ले आदत हूं उनके लिए
1: हाँ
0: मेहनत करते कुछ भी तकलीफ मिल हम झेल तो मैं अपना तकलीफ का के संग हुआ
1: हाँ
0: नहीं
1: तो
0: संग मैं खुद उनके
1: हाँ
0: झेल तो आदत बनल
1: हाँ हाँ बोले ने पीला बेराल तू तु तकलीफ ने ची सहते ही ली साई कि नहीं
0: हाँ दादा काय करूँ
1: हाँ हाँ तू बोले ने दख धनेश्वर ये बोले ने ये जो फोटो बीती ग्राफी बीती आए कि बड़ा तो काजे और विस्तार कर तो काजे संगति बैंकन बोल जाओ नहीं बोल से
0: हाँ
1: और तू चो काय सोच आसे कहीं असन को नहीं लग असन दुकान असन जसन बना से कि कसन कर से काय
0: मुझ सोच तो दादा परमानेंट स्थायी दुकान बना तो बिचार ही आसे कसम बोले ये असन समय है कि स्थायी ये भी कर लो मैं इतना मुझे लगे ये जो मार्केटिंग नहीं बढ़े ये चूका अच्छा पहले सो तो रहा से
1: अच्छा
0: हाँ और जोन जगह मैं आसे हम तन मन में उम्मीद नहीं है इतना बड़े दे बोलते फिर बोले चले दे जहाँ तक हम चु गुजारा खर्चा हाँ ये सब चीज चले दे बाहर गेलो में काम मेरी रुचि है
1: अच्छा बाहर गेले ने
0: हाँ
1: काम मेरे
0: काम
1: से
0: मेरी रुचि
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो ये भी जैसन कि तू ये भी धर्म पूरा किराए ने आसे बोलसेस तू चो जोन रतो तुम चो जोन मूल गांव आए बोले बे बकावन सोनपुर आए बोलसेस
0: हाँ
1: है कि नहीं तू ये बाटे जाऊन रतो असन कहीं तुम चो खर पुर का बेराज कहीं खेती बाड़ी वगैरह
0: हाँ हाँसी दादा हूं था मुझे दोनों दादा दादी जो थोड़े बहुत जगह जमीन आ से जहाँ मुझे बचपन अभी दिल्ली से ज्यादा नहीं है 3 एकड़ असनी खेती हो दे और जो बाड़ी है उन बोले 25-30 डिसमिल असनी हो दे
1: अच्छा
0: घर बाड़ी
1: हाँ
0: हाँ उन थान लेके हम 6 भाई हूँ से
1: अच्छा
0: अलग अलग माचो अलग अलग कहे थे
1: अलग
0: उनसे
1: अलग अच्छा
0: अलग अलग आतो
1: हाँ
0: तो उन बोले हम चु कुछ
1: हाँ
0: मतलब पूर्ति ही नहीं हुई
1: नहीं हुए अच्छा
0: उन्हीं कहा मैं अपना विचार बनाऊ ना अलग रह तो कुछ पहले लेवल कोशिश करते रहे
1: हाँ हाँ
0: कि ये
2: कार्यक्रम नंजर में आप सुन रहे थे धनेश्वर दास से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम खेल पत्रिका में आइए सुनते हैं विजय कश्यप से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।

0: रेडियो सुन तो भाई बहन मन सपाए के सेवा जुहार जसन की अपन मन सुनसास की आमचू खेल पत्रिका कार्यक्रम ने कई कसन खिलाड़ी मन संगे आमी गोड बात करूं से कि खेल ने बलकाय की कई कसन आमचू नौजवान लेका लेकी प्रतिभावान लेका लेकी मन बल्ले ने आमचू जोन बोलुबे गांव ने आए ब्लॉक संभाग राज्य स्तर कई लोग असन देश स्तर ने बल खेल सोत और खेल तो अपन में जाना है कि बल्ले ने आमचू देह पाए के स्वस्थ मजबूत भरसक बना तो काजे खूबे जरूरी है ऐसे और जोन अच्छा खिलाड़ी मन बल्ले ने कहा है कि खेल ने जोन ध्यान दे सोत पढ़ाई संग संगे बल्ले उनमन जोन खेल प्रतिभा ने आगे उनमन कैरियर बल बनन वाती आमचू बल्ले ने प्रदेश देश सुनाम कमाए सोत तो असने ची आज मैं गुटुक बाबू संग गोड बात करें से सब ले आगे तुझ नाव आरु गांव छ नाव सांग।
1: हाँ मोचो नाव है विजय कश्यप, मैं बेड़ा उमर गांव छ है।
0: अच्छा हाँ तो बेड़ा उमर गांव बल्ले कौन बकाउंड की बस्तर ब्लॉक है।
1: बकाउंड ब्लॉक में हुआ है।
0: बकाउंड ब्लॉक। अच्छा विजय कश्यप ये सांग जसन की बल्ले तुचो जो खेल प्रतिभा है बल्ले काय खेलने यहाँ से।
1: मैं खेलू रहे ढासबाल खेलू रहे
0: ढासबाल
1: जी।

0: जिला स्तरीय छोरे आमी मतलब ये मो जो स्कूल लाइन घाट लौंगा रे जोन मैं उताले पढ़ते पढ़ते उतारने ट्रेनिंग करूँ उनके बाद ये बस मतलब जिला स्तरीय खेलने जाऊँ रहे मैं
1: अच्छा कहाँ कहाँ जाओ रिलीज?
0: सबले पहले जाऊँ रहे तिल्ला नेवरा रायपुर ले आ गया से उन उतारे जाऊँ रहे उन जाऊँ रहे मैं 2018 में
1: अच्छा
0: 11वीं पढ़ते बेरा
1: हाँ
0: फिर उनके बाद सेकंड जाऊ रहे हैं जांजगीर चापा में उन 12th पढ़ते बेरा जाऊ रहे हैं 12वीं पढ़ते बेरा उन मतलब 2019 ने जाऊ रहे हैं उन उतर
1: अच्छा हाँ। तो अच्छा ये डाज बाल बल्लन का है कि हम चो गांव चो जोन काजिया बोलो भे इकनिक नवा खेल होए से, तो ये
0: हाँ
1: चो बारे इकनिक सांगू था कि खेल कसन होए से।
0: ये थोड़े नया ही खेल है ये तो मतलब ये नहीं ये खबड़ी ग्राउंड में ये जो ग्राउंड रुआ है लाइन मन खींच रुआ और पाटकुती होता है नेट डालू रुआ जाल डालू रुआ
1: अच्छा
0: उन बाल संगे नहीं उनके उन पार्ट दोनों पार्ट छः छः खिलाड़ी रुआ
1: अच्छा
0: हाँ तो उन तान ले दुई टन बाल रुआ है उन दोनों बाल ने ये पार्ट मतलब मान लो डेबरी पात या बुजनी पार्ट हुआ थे उस रुआ है तो दोनों पार्ट ले मान लो एक बुजनी पार्ट चो लोग जसन खेल सो मान लो तो नहीं उन बाटले दुई टन बॉल के उन मन पका हुआ था उन
1: पका
0: बाटे
1: अच्छा
0: और उन बॉल नहीं उन जाऊन उन बाट चो लेका मन के मान लो प्लेयर खिलाड़ी मन के उनके लगली बोले तो ये बाट चो लोग के एक पॉइंट मिर से
1: अच्छा
0: फिर उन्हीं उन्हीं असन फिर उन बाटले पन उस नीच पका हुआ मान लो उन बाट चो पका लाए बोले उन बाट चो नी लगली बोले बॉल लेका मन के जो प्लेयर मन के है
1: हाँ
0: और नी लगली बल्ले बोल नहीं उन पॉइंट नहीं मिले उनके
1: अच्छा अच्छा
0: उन बॉल लगलन ची पॉइंट मिल
1: पॉइंट
0: गए
1: मेरे
0: उनके
1: से
0: हाँ
1: अच्छा बल्ले ने दोनों पार्ट ने छः छः खिलाड़ी रहे सो।
0: हाँ दोनों
1: अच्छा
0: पार्ट छः छः
1: और
0: खिलाड़ी रहे
1: दुई
0: सो
1: दुई दुई टन बाल पकाए सो।
0: हाँ दुई दुई टन बॉल
1: अच्छा तो जसन की बाल पकाला बल्ले ने कहा है कि जोन बाट पकाए सो उन बाट से जोन खिलाड़ी मनात बोले ने बाट उन बाट गुज तो कोशिश कर सो तू
0: हाँ बस तो कोशिश करता
1: मतलब।
0: रहे का है
1: हाँ हाँ
0: उन दाने
1: अच्छा
0: उन बाल के चिया नहीं पड़ता रहे
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने असन जेके बाल लगली तो उनके असन बाहर ही आउट न हुआ
0: नहीं उन बाल लगली बल्ले उनके बार कर सोत का है
1: बाहर।
0: करवा हाँ
1: अच्छा
0: और पॉइंट पन मिलो है उनके बार पन करवा दूं उनता ने जैसे
1: अच्छा
0: कबड्डी खेलवा नहीं
1: हाँ
0: उसनी चिवली बल्ले उन बार हुआ नहीं
1: हाँ
0: उसनी उन तान पन बॉल चिवली बल्ले उन बार होता रहे
1: अच्छा हाँ। तो बल्ले ने छः छः खिलाड़ी रहे सब
0: हाँ छह खिलाड़ी और पीछे बाल दर्द का जो दुई जन एक्स्ट्रा प्लेयर
1: एक्स्ट्रा प्लेयर रहे सब।
0: हाँ
1: अच्छा हाँ। इसका जसन की ग्राउंड है बोलू वे
0: हाँ
1: असने चारों खुट असन काय
0: हाँ
1: तो रहे से।
0: हाँ 4 फुट रहे से होता है
1: हाँ
0: जैसा ये आम जन कबड्डी खेलवा नहीं सेम उसनी रहे से बीच में एक टन लाइन रहे से और फिर मतलब दोनों पार्ट फिर पासिंग लाइन मन रहे से
1: अच्छा
0: उन लाइन जो बार अपन टच होली बल्ले उन फिर पॉइंट मिल रहा है आगे
1: आगे से भी
0: पे आगे
1: हाँ
0: च बिता के आगे च
1: हाँ
0: टीम लोग के
1: अच्छा
0: मतलब ये लाइन के पन नहीं बचुन चलता रहा है और
1: हाँ
0: बाल के पन है
1: अच्छा हाँ। तो विजय खिने के चो मतलब और खिने के नियम के सांग के चो कसन कसन नियम है से कसन।
0: मतलब ये चो नियम नहीं उन बॉल के दरुन पकाता रहे ठीक है ये तो और उन बस बॉल के बचता रहे
1: अच्छा
0: उतर
1: हाँ
0: और लाइन के टच नहीं होता रहे
1: हाँ
0: दोनों पार्ट चो
1: हाँ
0: जैसे टच उलू बोले उन पॉइंट मिले दे उन पार्ट चो लोग के
1: अच्छा हाँ। बल्ले ने बाल संगे टच ची आए भाई कि ये
0: हाँ
1: खेल तो भी थी।
0: हाँ टच इज खेल तो भी
1: अच्छा
0: थे
1: ये जो बाल कसन वैसे अलग किस्म छो इसके जो फुटबॉल असन वैसे कि दूसरा।
0: ये जो बाल फुटबॉल ले छोटे रुआ है उन वॉलीबॉल जैसन रुआ है उन चलपन पैर छोटे ही रुआ है उन
1: अच्छा
0: हाँ उन बात में अच्छा पकड़ की हुआ है धरु की हुआ है तो उनके धरुन मारते रहे हाँ
1: अच्छा अच्छा सीधा मतलब दुई जान धरुन बाती बोले काकी बोल
0: कोनिक
1: मारता
0: चो
1: रहे।
0: मारते रहे 1 लाख मारते रहे या फिर कोनिक चो मारते रहे
1: अच्छा
0: उन मान लो दोनों बॉल और आदमी के लगली बल्ले पन उन बाटले 2 पॉइंट मिल रहे दाने
1: अच्छा हाँ। और मतलब दोनों बाल दुई जान के लगले 2 पॉइंट।
0: हाँ 2 पॉइंट मिल रहे होता है
1: अच्छा हाँ। तो और ये बलसांग जसन की ये चो कहीं खेल तोर कहीं समय बल निर्धारित रहे जसन।
0: हाँ इतने समय पर रुआ है एता जसन एता नै 15 मिनट

0: या तो फिर 20 मिनट जो कराते रहा,
1: हम्म,
0: फिर 15 मिनट होली बल्ले, फिर टीम चेंज करते रहे, मतलब एक पार्ट ले दूसरा पार्ट जाते
1: दूसरा
0: रहा।
1: पार्ट जाता है। हाँ, जैसे
0: हाँ
1: कबड्डी तन चेंज कर
0: चेंज
1: सकते।
0: का, और जैसे कबड्डी तन चेंज करे बाद उसने आए
1: हाँ,
0: फिर, और दूसरा पारी में मतलब एक बार तो 15 मिनट जो करे बाद, फिर उनके बाद 5 मिनट शुरू हुआ है।
1: अच्छा,
0: आओ
1: एक बार 15, एक बार 5,
0: आओ
1: मैंने 20 मिनट जो खेल रहे से।
0: आओ।
1: अच्छा।
0: और जैसन टाई होली बोले, जैसन दोनों बार चो पारी मतलब पॉइंट बराबर होली बोले नंबर,
1: हाँ,
0: तो उदल दाए फिर और करे बाद, मान लो उदल दाए 2 मिनट चो करे बाद या फिर 3 मिनट चो उसन करे बाद।
1: अच्छा। हाँ, बोले बराबर होले हुंचो बोले खेला तो आसे
0: आओ
1: बोले उन्हें।
0: आओ
1: हाँ, बोले ने ये ता स्कूल ने बोले कसन कहीं सिखा तो लोग कहीं असन एक्टिविटी वगैरह
0: ये
1: डाला है।
0: स्कूल ने आम जो एक जन सर रे, उनचो नाम रे अली सर बोलते रहूँ आमी।
1: हाँ,
0: और एक जन और सर रे, उनचो नाम भूल गए मैं, वो नाम के मतलब स्कूल जो कोच सर रे, मतलब
1: अच्छा।
0: जहन आजकल स्कूल मन ने सर मन रुआ,
1: रह सर।
0: तो उसने उन सिखाते रहे आम के।
1: अच्छा। हाँ, तो ये तो ज़्यादा बस्तर ने बोले ने ज़्यादा स्कूल में नहीं आया सन लागे सर।
0: ये बस्तर ने उतरो नहीं खेल होते खेल के,
1: हाँ,
0: तो उतरो मतलब ये नहीं जिला स्तरीय है तो, और स्कूली तान ले खेला हुआ के, उतरो मतलब गांव वाट चोले का लेके उतरो नहीं जानो होते के ये
1: अच्छा।
0: खेल के,
1: हाँ,
0: ये बाहरी जो मतलब बाहरी खेल हुआ ज्यादातर। पेर पर ने आम जो छत्तीसगढ़ ने नहीं
1: हाँ,
0: ये के खेला सोत आम जो जहन जोन वाइज बस्तर कांकेर धमतरी होली रायपुर होली सन, तो हमें स्कूल बांट ले जाऊ रू तो उसने खेला हुआ देखे।
1: अच्छा। हाँ, बोले ने जुगे ज़्यादा स्कूल मन ने प्रचार प्रसार खेल जो नहीं होली
0: हाँ
1: बोले।
0: हाँ जो के नहीं होली
1: हाँ
0: से
1: हाँ
0: स्कूल मन।
1: तो ये चो बोल कहीं जैसे खेल तो वेरा जैसे प्रतियोगिता वगैरह में तुम जाए सास तो कहीं अलग किस्म चो फिन तो ड्रेस वगैरह बोल रहे से।
0: ये जो मतलब ड्रेस आम के जसन जाऊ रू तो बस्तर बांट ले जाऊ रू तो आम के बस्तर जोन जो ड्रेस मिलू रहे, और नीचे छोटे बितिन छड्डा देव रहो और टी शर्ट देव रहो
1: अच्छा।
0: खेल तो काजे।
1: हाँ, अच्छा। नहीं जैसन कि अपन खाए तो अपन कबड्डी नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह ने बोले जैसन
0: हाँ
1: कि
0: हेलमेट
1: मांडी
0: वेलमेट
1: ने काय काय ने हेलमेट काय लगा तो भी तरह से कहीं
0: नहीं
1: असन बोलना उसे
0: नहीं नहीं रहे
1: नहीं रहे।
0: नहीं रहे।
1: अच्छा।
0: आपला मर्जी ने जोन आजकल मिले से नहीं हाथ नहीं लगा तो बितिन जोन पिंदरुआत नहीं,
1: हाँ,
0: उन अपना मन ने केनुन लगा लगा हुआ,
1: अच्छा
0: और अदरवाइज बाकी लोग नहीं लगा
1: नहीं
0: हुआ।
1: लगा।
0: हाँ
1: अच्छा। हाँ, बोले ने जैसन कि तुम चो जो टीम ने आए बोलू बे कोनी तान जैसन कि बाहरी नेत्र लेने एक ही टीम तो जाए से
0: हाँ
1: एक ही टीम ना तो
0: हाँ
1: होता मतलब कितलो सदस्य बाहरी जाता रहे से।
0: जसन मतलब आम जो टीम ने जसन जात रू बाहर है
1: हाँ
0: जसन
1: हाँ गेले
0: बस्तर।
1: ने एक
0: हाँ
1: टीम का
0: एक
1: कितलो खिलाड़ी जाए सब।
0: उन तान ले फिर मतलब 6 प्लेयर हुन, फिर 2 एक्स्ट्रा उन बाल कजे बाल दर्द कजे, और एक जने प्लेयर और एक्स्ट्रा जरूर होता रहे।
1: अच्छा।
0: मान लो कोनी के पाए वाए ने चोट वोट लगली बल्ले
1: हाँ,
0: उन जगह दूसरा खेल तो कजे।
1: अच्छा। भले ने 6, 2, 8, 2, 9,
0: हाँ
1: हाँ कम से कम 9 खिलाड़ी रहू पड़े से।
0: हाँ
1: अच्छा। हाँ, तो बोले ने एके बोले सीख तो काजे बोले ने काय चीज चो नियम चो पालन करूँ पड़े से ना।
0: एके सीख तो गजे होनी ग्राउंड, और पीछे तो नेट तो लग चुरु है हन जाल, और हन थोड़े बॉल चो पकड़ तोर धर तोर और उस मार तोर उनके जैसा उन बाट चो लोग के शूट कर तोर, उन्हीं थोड़े स्पीड कर रुक पड़वाए नियम, और उन्हीं लाइन मन के दकुन थोड़े छल पड़वाए कबड्डी माँ उसने।
1: अच्छा। तो जसन कि तुम तो तन कोच मन रहे सो बोले
0: हाँ
1: भी ज्यादा कर मतलब ये खेल के पूरा खेल के मान लो जीत तो हिसाब ने खेला तो काजे बोले तुम के ट्रेनिंग पूरा दे सोचे बोलना
0: हाँ
1: काय काय सिखाए सो थे ताने।
0: इतना हम के उन्हीं जीतो का जे तो उन ट्रेनिंग दे चाह, फिर जसन और दूसरा टाइम थोड़े एक्सरसाइज हम ये लोग चो बॉडी का जे थोड़े
1: करते
0: फिटनेस
1: रहो।
0: करता और
1: हाँ,
0: उन घर हुआ तो फिर, और सुन बल्ले तो उन बाग दौड़ तो चलते ही रहा है उन प्लेयर मन जो।
1: अच्छा। और कहीं जैसे नियम वगैरह कहीं है चो।
0: ये जो नियम तो नहीं खेल तो नियम है, बाकी तो उन ज्यादा नियम नहीं है।
1: अच्छा।

0: नहीं, और जैसन कि देह पाए के कहीं असन क्षति असन कहीं डर जैसन कबड्डी ओगरा ने
1: नहीं
0: दौड़न
1: नहीं
0: असन
1: नहीं उस तो नु है,
0: असन
1: उतरो
0: नुआ
1: छत्ती पहुंच तो नु है,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: छोट वोट नहीं लगे उतरो,
0: नहीं लगे
1: बस उन भाली च लगु है,
0: हाँ हाँ बाकी कहीं डर नहीं है।
1: बाकी कहीं डर नहीं है।
0: अच्छा तो जैसन की तु दो तीन जगह चो नाम सांगलिस खेलुक जाओ रू बोलते
1: हाँ
0: तो बोले नेवता खेल तो बोले तुम चुकाए पोजीशन रोली हारा जीता हिसाब ने कसन।
1: हम जो फर्स्ट यू रूम का दोनों ताने,
0: अच्छा दोनों तान फर्स्ट इलाज
1: हाँ बस्तर जोन का जे दोनों तान फर्स्ट यू रूम, तिलदा नेवरान पन फर्स्ट यू रूम, जांजगीर चापा पन उता पन फर्स्ट यू रूम।
0: अच्छा
1: ये आमी अंडर 19, मतलब ये आमी 19 वर्ष ने खेलते रहूँ,
0: अच्छा हाँ हाँ
1: और उन चल पन छोटे टीम रहे, मैं उन 18 वर्ष लोग जो रहे, अठारह
0: अच्छा
1: वर्ष मतलब से 18 17 उन रहे।
0: तो विजय और ये संग जैसे कि तुम्हें राज्य जिला स्तर तो जाओ लाज भी तो ये चल फिर आगे ये चो कहीं स्कोप नहीं है आगे और रोल खेल तो भी थी प्रतिभा
1: नहीं
0: का
1: ये
0: जाकर।
1: चो इसको पास है
0: हाँ
1: जिला स्तर चो बाजुन के बाद जैसा स्टेज स्टेट
0: हाँ
1: मतलब राज्य स्तर चो
0: हाँ
1: उन पन हुआ है, ये चो खेल
0: अच्छा
1: नेशनल पन हुआ है
0: हाँ
1: ये
0: तो
1: चो।
0: ये बार तुम चो नंबर नहीं लगली।
1: ना ये चो बाद मैं पढ़ाई बाढ़ गेली उनके बाद
0: अच्छा
1: पढ़ाई लाइन धर रहे।
0: पढ़ाई लाने चली
1: हाँ
0: अच्छा और ये संग संग और कहीं दूसर खेल चो रुचि नहीं है तुझे।
1: हाँ और ये चो संग संग ये दूसर खेल चो रुचि तो नहीं है,
0: हाँ
1: बस तैयार करते हैं रनिंग चो।
0: अच्छा हाँ। बल्ले ने पढ़ाई बल्ले ने का है मतलब पढ़ से जाले।
1: ये भी मुझे यही 2024 में BSc निकाले।
0: अच्छा हाँ बोले नहींता ने
1: हाँ ये बस्तर यूनिवर्सिटी में।
0: अच्छा तो ये भी जैसन की पढ़ाई तो चो ये भी काय बिचारा खेल वगैरह आगे और कहीं दूसरा तान भाग दर से कि मतलब पढ़ाई चो लाइन के दर से जा लेना।
1: ये भी खेल चो लाइन तो शायद ही आए,
0: अच्छा
1: तो ये भी तो आजकल जॉब पन इतना नहीं मिले से, तो आजकल तो पढ़ाई करुक पड़वाए,
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: मेहनत करुक पड़वाए थोड़ी तैयारी।
0: हाँ हाँ नहीं हाँ उन तो आई छी मतलब का है कि तू जिला स्तर ने बोले बाहरी के लिस्ट ए बोल गोटक तुझ का जो उपलब्धि आए बोलू वे
1: हाँ
0: आए कि नहीं
1: हाँ
0: तो जैसन कि ये जोन डाजबाल आए नवा खेल आए ये खेल चो जैसन कि तुमके प्रमाण पत्र वगैरह बोल मिल ली होती
1: हाँ
0: आए कि नहीं
1: प्रमाण
0: तो
1: पत्र तो मिल ली
0: मिल
1: उन
0: ली।
1: तान ले, मैंने दोनों
0: हाँ
1: तान ले।
0: अच्छा ये चो कहीं तुम चो कहीं चीज ने तुम चो भविष्य का जो कहीं ये चो माना से प्रमाण पत्र चो।
1: हाँ प्रमाण पत्र जो माना चे जैसन आजकल फॉरेस्ट होला CG पुलिस होला, और जितरो पने पोस्ट निकलते रुआ है आजकल स्पोर्ट कोच टाने आजकल भर्ती करा सोत,
0: हाँ
1: तो उन ताने खेल लोग के प्राथमिकता दे सोत।
0: अच्छा हाँ हाँ भले न कहीं काम तो ऐसे
1: हाँ
0: जी कसन बल्ले का है कि इनोवा खेल हो ऐसे
1: हाँ
0: हैं कोई गांव चो लोग बोले डाच बाल बोले ने काय सी जाए कि नहीं जानो
1: हाँ
0: कबड्डी आए क्रिकेट आए फुटबॉल है वॉलीबॉल एक जान हो तो ये नवा खेल आए ये तो बोले अच्छा खेल है आम चो और बस्तर ने और कोनी टन स्कूल ने चो बोले आ से गए खेल तो भी थी।
1: ये जो खेल तो भी थी आसे, लेकिन मैं उतरो नहीं जाने।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा हाँ तुम असन बस्तर संभाग ने कोनी ताने असन स्कूल संगे स्कूल मन संग असन
1: स्कूल संग तो नहीं करा
0: नहीं
1: रहो,
0: होले
1: तो बस उन्हीं बस जिला हिसाब ने नहीं
0: जिला
1: रहो।
0: जिला हिसाब नहीं नहीं हो
1: हाँ
0: हाँ। तो दक विजय कश्यप तो इतना अच्छा तू जो ये जन नोआ बीती खेल डाज बाल बल्ले ने जो पूरा बोले सांगलिस कई लोग नहीं जानत रहला आरो तुम बोले जसन की जिला स्तर ने दुई तीन जगह जौन बाती बोले ने प्रथम इनाम बोले खेल ने फर्स्ट जिलास ये बोले तुम चुका गोटो उपलब्धि आए ताल खूब खूब जुआर ना जुआ
1: जुआर।
0: ठीक है यार।
2: साप्ताहिक

आप सुन रहे थे विजय कश्यप से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

दादा दीदी मन, परातो के दकुन गुंडाधूर, चेगालो धनु ने कांड, गोटो कांकी ने सोर्याउन, झाड़ूक धरलो अंग्रेज बाटे कांड, तो कायदा के से कांड सररररररर जाऊन बाती सीधा मूड चो सोर ने रली और अंग्रेज चो टोपी हिटून पड़ली असन कांड मारलो। और हुताय ले मूर होय से आमचो ये भूमकाल चो कैनी और लड़ानी जुजानी, दूसर कांड पंती ने चेगालो कि ये चलो पूरे अंग्रेज उठून बाती डर का जी आप लोग घोड़ा ने चेगुन बाती परालो और ये तायले होए से भूमकाल चो मूर सुना।

दादा दीदी मन, अंग्रेज चो टोपी मुंडले हिटून पड़तोर मामूली गोट नो आय। अंग्रेज मन चो खेमा ने हड़कम मचली, हुन कौन आय नेता नारचो जोन अंग्रेज ऊपरे हाथ उठा तो हिम्मत कर लो। हुन हिम्मत के दबा तोर अंग्रेज मन काजे जरूरी होली। और पुलिस नेता नार ने अमरून छानबीन करुक धरली। लोक लाटा ने बूटा ने डोंगरी ने करपन ने लुकुक धरला। गुंडा धुर बोले कोलंग डोंगरी के पार करून एलंग नार चो रान ने डरा धरलो। और भेट होली डेबरी धूर संगे। डेबरी धूर और संगवारी मन गांव गांव बुलून बाती बिरली नासोत। आले सुना बादरी।

लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति है संपत राम नाग की। संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोनिन लोगरस के सुनतो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो फोनिन लोगरस।
2: नमस्कार दादा, मैं चिमनी कुरासिया काजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में इंद्रवान सिंह बोलत हूँ।
1: हाँ, और इंद्रवान दादा आजकल कसन ना काय काय काम पता चले से?
2: यही ड्यूटी पे हूँ दादा, नौकरी में हूँ और छुट्टी के टाइम हो गई से और रात का कार्यक्रम में जुड़े हूँ, फोन करत हूँ। बातचीत होते बढ़िया लगत है, मौसम यहाँ एकदम उमस गर्मी हवे, छाया में खड़ा हूँ, ठंडा ठंडा हवा चलत
1: है।
2: तो आज मैं दिशा मोड़त हुए अपन पसंद के गीत ला बतात हूँ और गाना हवे बेरी बेरी ला। और सबसे पहले गीत ये आपला और केंद्र निर्देशक साहब के जगदलपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई मल्ला, उद्घोषक भाई मल्ला, श्रोता भाई मल्ला, छत्तीसगढ़ के श्रोता मल्ला, सभी श्रोता मल्ला, भारत के सभी श्रोता मल्ला, डीडीएच के रत्न कर प्रसारण शुक्रवार के 10 बजे और शनिवार के दोपहर 12 बजे हुए जरूर सुना दी है दादा।
1: ठीक है दादा, तुम जो मन कर लो गीत सुनाते हुए ना।
2: जी दादा, राम राम।
1: राम राम जुआर।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: हाँ जोहार भैया।
0: जोहार ना आगे ना संगास नहीं, कौन बोला सास?
1: हाँ नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला बालोले कैलाश यादव बोला था दादा।
0: हाँ कैलाश दादा, काय काय काम बता चल ना गांव बाटे?
1: हाँ बढ़िया है, गांव में भी धान की लुवाई चलत है।
0: हाँ हाँ
1: धान गर्मी धान की लुवाई चलत है, वे घाम घलोक अच्छा चलत है बढ़िया।
0: हाँ हाँ धान कसना से ना गर्मी बिरा चो।
1: हाँ धान लुवाई चलत है बढ़िया गाँव रहने भी।
0: हाँ हाँ हाँ हर संगा आज कौन गीत के सुन तो कैसे फोन लगा ला सास?
1: तो जिसे हम ममता चंद्रा करके सुना दे।
0: हाँ हाँ ठीक है कैलाश दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए ना।

0: हेलो
1: कौन बोला सर? दादा गिनास संगस नहीं ना?
0: ईश्वर लाल निषाद बोल रहे दादा।
1: कौन गांव ले दादा?
0: ये कोंडा गांव जिला बड़े बेंद्री।
1: और निषाद दादा संगा ना है, गांव कसन है ना?
0: ये बस में गाड़ी चला है इसका है ना, रायपुर बता से।
1: अच्छा रायपुर बट कितलो गर्मी आ जाल ना?
0: खूब गर्मी आए ना, गाड़ी भीतर बस ही नहीं हो, ये बात गच में आई ना कहीं आए। पार्किंग सीमेंट भर गए बलौदा बाजार लगे, कूलर वूलर लग ली से उतार जाओ
1: लगातार।

0: हेलो, फोन इन लोगरास।
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो सर।
0: हाँ फोन इन लोगरास।
1: हाँ सर, मैं जयलाल मरकाम बोल रहा हूँ, कोंडा गाँव।
0: हाँ हाँ, मरकाम दादा सांगा ना, ब्याह करी आशा सका ने बे ने
1: है
0: ये बे ब्याह करी आशा सका नु बोले से।
1: ब्याह करे
0: हाँ ये वर्ड बोल तो सुनू कोई से।
1: हाँ, राम तो भूता में दिल सतका है तो निभाओ पड़े से।
0: हाँ, नहीं उन तो निभाते रहे ना, गांव चो काम बूता चलू है, नहीं उनकी सफाई कर, सफाई मिलन मिशन कर तो रहे ने। और जयराम दादा सांगा ना, यो गांव कसन है जाले।
1: गांव अभी तो छेके से काली जी पानी गिर ली का है।
0: हाँ, कितलो मार ली ना पानी है।
1: पानी काली जी के गिर ली, ज्यादा नहीं गिरे, आज नहीं गिरो पलू से का है आज ये।
0: आज पे पार्टी आए बे।
1: रिसेप्शन बीच पार्टी आए।
0: और जयराम दादा सांगा आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सस ना।
1: कौन ही गला गीत सुनाऊं दे।
0: हाँ, कल ठीक है, मर काम दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से, ना सुनाते हुए।

0: हेलो।
1: हेलो पोनी लोगराज।
0: हाँ जोहार दादी,
1: जोहार।
0: दिनेश पकमा दादी।
1: हाँ ना संपत राम नाग पकमन दादा, ये मेरा है दादा, सीधे पकार ना।
0: हाँ हाँ जय राम कर सके मैं दादा। उधर
1: हाँ
0: मैं निकले
1: हाँ
0: आंदले वेतले तेल फोन लगा लगा चिंता ने नाई के आगे इन्हें तेरे कुछ दिन तेल लगा चिंता ने मंत्र फोन इन लोग रस्ती कार्यक्रम
1: हाँ
0: की
1: जयराम दादा, अल्प आर उपलब्ध दादा।
0: आन चंदर गेड़े ते नाई
1: हाँ
0: संपत दादा
1: अच्छा सांदर गए थे। हाँ
0: चंदर गेड़े ले आए।
1: और बकर दादा आजकल नाथ नाथ भूतल चाहे अमर जले। हाँ
0: हाँ क्या करना था पूछे दादा। ये जो सूट के लेर मो नई काम सेटिंग काम इसी काम गेर मो हम
1: हाँ
0: एक जूता को चिल्ला गा
1: हाँ
0: मेल को हमको लोग को ये नीर नीर वाक बना इसी लगी इधु पासल पाता मा उसी पासल पाता मा बरसा हुआ देखता
1: हाँ बरसा हुआ देखता है।
0: हो ये पेपर वहां जीवन जमें ताकि वाह इन जेत नाक मा मैक्सिंग लिखी दे
1: हो जितना आता नो आईडी को समय आए चिला।
0: हो ये देखे इपटे दाता देखे मुट मुट बली डूरा दे
1: हो
0: इपटने दिले ताकि वाया मोकन जेत नाक मोम
1: हाँ पकन जयराम दादा पकेरी ने आर पाटा पाए वेंदन नु फोन चार्ज अपना।
0: हाँ आनी कलवती अरसेंगे लोग इना आ रहे हैं सब पाटा वेल पिक्चे दुर्वा पाटा
1: ओ
0: अरे फिर
1: अल्टी अल्टी का दा तो पाटन हम वेंटिक मो वेनर थे बेरे।
0: हो दादा जोहार
1: हाँ
0: तेरे
1: जुआर।

0: हेलो पुनीन लोकराज।
1: हेलो लोकरस।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा आगे ना संगस
1: हाँ
0: नहीं ना।
1: हाँ जय राम जय जोहार।
0: जय राम जय जोहार। आगे ना संगस नहीं दादा तुम छो।
1: हाँ मैं डोमेंद्र नेता बोला तो ग्राम मुंडा टोला विकास खंड नोल्डी लोहारा जिला बारो छत्तीसगढ़ से दादा।
0: हाँ नेता दादा सांगा ना गर्मी कसन आ जाले तुम छो बाटे।
1: यार गर्मी तो बहुत खूब है पूरा।
0: हाँ
1: हाँ हाँ भारी गर्मी है।
0: हाँ
1: कूलर कूलर ऐसी काम नहीं करते। हाँ हाँ गर्मी जोर से पड़ा थे।
0: हाँ।
1: हाँ हाँ
0: ये बाट बोले गर्मी खूब आए ना। अभी तो
1: खूब आए।
0: सपाई बाट
1: आओ
0: गर्मी आए इसी ने। हाँ
1: आओ।
0: नेता हम दादा सांग आजी कौन गीत के सुनते काज फोन लगा ला सासना।
1: हाँ वो तो विदुषी ममता चंदा कर गाय एक गीत रही से भैया
0: हाँ
1: सुना दे तो दादा।
0: हाँ ठीक हाँ, ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते।
1: हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दादा।
0: हाँ धन्यवाद ना।

0: पंडित लोग रस।
1: हाँ पुलिंग दादा
0: जोर ना आगे ना संगास नहीं कौन बोला सर दादा।
1: अच्छा सोमाराम ने ताम बोले से दादा
0: कहाँ ले दादा
1: ये मोहपाल ले।
0: और सोमा दादा सांगा ना कसन है गर्मी आसे जाले आजकल
1: आसे दादा हालांकि पानी गिरे से दादा ये जी के जी।
0: अच्छा पानी मारे से
1: पानी मारे से काली परम दिन ज्यादा गिर ली जान।
0: हाँ जाले बेड़ा उन जोप तो लायक देखा है कसन
1: हाँ होली दादा आधा बाग जोप लू से
0: जोपला सास।
1: हाँ
0: खूब नहीं आयो
1: हो सुबह थोड़े लागे से जान दादा।
0: हाँ
1: आज फिर घामे आसे तबे का लेकिन पानी गिर लो देखो ठंडा लागे से।
0: हाँ गर्मी बेरा का नहीं लगा ला सर दादा तुम्हें।
1: हाँ आसे दादा जोंद्रा आसे।
0: अच्छा जोंद्रा पाक ली बेन टूटा लाज बेना ना जो
1: ना जो नहीं जी पाके से का
0: नेताम दादा सांगा जी कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सर जल ना
1: ये। हाँ दादा ये दे सुखराम सलाम चो गोंडी गीत सुना उन्दे है दादा।
0: सुखराम सलाम चो।
1: हाँ
0: ठीक है दादा तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते।
1: हाँ दादा ले जोहार ना
0: अल जोहार ना।

0: हेलो पोनिन लोगराज, हेलो पोनिन लोगराज।
1: हेलो।
0: हाँ कौन बोला सर? दादा
1: हाँ जुआर दादा भाई,
0: जुआर ना, कौन
1: कामेश्वर कोराम बोले से, अंगवा
0: कहाँ ले दादा?
1: ले जिला कोंडागांव है।
0: और तामेश्वर दादा सांगा ना कसना सा तुम्ही?
1: नंगा ते आसम दादा,
0: हाँ गाम कसना है ने हो?
1: ये आजकल बिया मन खूब हो ऐसे, बिया घर बैठा सो
0: अच्छा बिया घर बैठा सर,
1: तो
0: बिया करने वाले जाते रह जान
1: आई कर आज
0: ना।
1: 20 साल तो खूब हो ऐसे बिया का
0: हाँ
1: तो योगेश्वर दादा चो गाँव लोग गीत की सुना हो ऐसे। हाँ
0: योगेश्वर पुजारी चो कौन गीत दादा?
1: कोनी बीती बोले। हाँ
0: अच्छा कोनी बोले, हल ठीक है तामेश्वर दादा, तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: हाँ जोहार दादा।
0: हाँ जुआर ना।

0: हेलो
1: हेलो संगवारी मोर माया भरे राम राम
0: राम राम। और दादा
1: नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी।
0: हाँ संगवारी सांगा ना कसना सा दादा तुम्ही
1: संगवारी।
0: हाँ कसना सास बोले से।
1: हाँ बने बने हम संगवारी। ये देखना बने घाम गर्मी पड़त हवा।
0: हाँ
1: वो दे बोरे बासी खात आवन संगवारी।
0: कसन करू आज तो गांव बेरा तो कहूक पड़ू आए बोरा बासी बोल का तो रहा है बासी पेज बोल का तो रहा है ने तो नहीं तो बढ़िया ठंडा करू आए ना शरीर के।
1: हाँ संगवारी वही आप लोग मैं कहा था बोरे बासी खात हम संगवारी। अवे दे अवे थोड़कन सांझ हुई तन खेत डहर जावन जी कांटा खोटी दीने भर।
0: हाँ
1: संगवारी अब का है वही दे अभी तो टाइम है संगवारी तो खेत के काम में घलो लगे हवन कुछ मेड़ पार के देखभाल करत हवन और कुछ अपन जैसे खेत में दिलवा होते संगवारी वोला खन कोर के मेड़ बनावत हवन। यही काम चलत हवा संगवारी। अब आप मन के देख मीठ मीठ गोठ लसून के

0: तो हमारा भी एकदम ऐसे लगते कि जैसे एकदम बोरे बासी मामन
1: आए जन गांव ने रतवितान फिर वसनी आए जन ने और नारायण दादा संगा यूं गांव कसन आ जाले गर्मी।
0: हाँ संगवारी आप देखो ना हमारा आपके माया ऐसे हवा संगवारी तो दोनों को माया भरे बढ़िया से गीत सुनवा दे वा।
1: संगवारी चल ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
0: हाँ संगवारी राम राम
1: राम राम।

आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की, संयोजक थी चंद्रशी ठाकुर। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत समस्याओं के समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakha. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reforms and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed